0: लोग योगा, प्राणायाम, वॉकिंग और एक्सरसाइज, इसको अपने जो डेली रूटीन में इंकॉर्पोरेट नहीं कर पाते हैं व्यस्तता के कारण या किसी और मोटिवेशन की कमी के कारण, तो ये भी इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के लिए। और कुछ लोग हैं जो नशे में इंडल्ज होते हैं, किसी तरह के नशे का सेवन, खास करके स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन, ये स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर को बढ़ा देता है।
1: जी, किसी व्यक्ति को स्ट्रोक हो जाता है और वो नज़दीकी चिकित्सालय जाकर अपना इलाज शुरू करवा देता है, तो जो रोगी है वो कितना प्रतिशत तक ठीक हो जाता है?
0: एक मैं इम्पॉर्टेंट बात
1: जी
0: बताना चाहूँगा, जो इसमें जो मैंने पहले बताया कि स्ट्रोक दो तरह के होते हैं, तो उसमें जो इस्कीमिक स्ट्रोक है, जिसमें कि खून की नली में क्लॉट हो जाता है और उसमें जो रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है, उस स्ट्रोक में एक मेडिसिन है जो हम लोग अगर गोल्डन आवर में दें, जो 4.5 घंटे का होता है,
1: जी
0: अगर मरीज उसके अंदर अस्पताल पहुंचता है और हम लोग वो मेडिसिन उनको दे पाएँ, तो वो जो क्लॉट है वो डिजॉल्व हो सकता है और रक्त का प्रवाह पुनः स्थापित हो सकता है। तो जो इसको रीपरफ्यूजन थेरेपी, थ्रोम्बोलाइसिस थेरेपी कहते हैं। तो अगर हम ये मरीज़ को दे पाएँ विदिन अ पर्टिकुलर पीरियड, जो जिसे
1: तीन से
0: वो
1: चार घंटे के
0: गोल्डन,
1: अंदर में।
0: हाँ 3.5 से 4.5 घंटे के अंदर,
1: जी
0: तो मरीज़ को बहुत फ़ायदा हो सकता है। हो सकता है कि उस पूरी तरह ठीक हो सकता है या फिर जो सीवियरिटी है वो कम हो सकती है। अगर उसके बाद मरीज़ पहुँचते हैं फिर भी उसमें स्ट्रोक होने के बाद और भी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं, स्वेलिंग बढ़ती है ब्रेन में और ब्रेन में जो प्रेशर है वो बढ़ता है, तो उन सब चीज़ों को सही समय पे, उन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट स्टार्ट होना इम्पोर्टेंट है। तो वो अगर उपचार सही समय पे हम जल्दी स्टार्ट कर पाएँ तो मरीज़ की जान बच सकती है और हो सकता है कि मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाए। कितना ठीक होगा ये बहुत सारे और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन जल्दी उपचार मिलने से उनकी डिजेबिलिटी कम होगी, जान बचाई जा सकती है और सुधार होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। अब हेमरेजिक स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक में जिसमें मैंने बताया कि खून की नली फट जाती है,
1: जी
0: उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन को नियंत्रित रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जब मरीज़ पहुँचते हैं तो उनका रक्तचाप बहुत ही ज़्यादा होता है उस समय, तो इमिडिएटली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितना जल्दी हम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर पाएंगे, रक्त का जो प्रवाह है, जो रप्चर हो के फैल रहा है, उसको हम रोक पाएंगे, और साथ में अगेन जो ब्रेन में और भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उसके चलते जो स्वेलिंग बढ़ रही है वो हम उसको
1: कम कर सकते
0: कम
1: हैं।
0: कर सकते हैं इलाज के द्वारा। कुछ पेशेंट्स इसमें सर्जिकल कैंडिडेट्स होते हैं जिनमें प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खून का थक्का बहुत फैल जाता है, उनमें फिर हम लोग न्यूरोसर्जन को कॉल करते हैं। न्यूरोसर्जरी एक एक एक एक टीम वर्क होता है, ये न्यूरोलॉजिस्ट का, न्यूरोसर्जरी का और आईसीयू की टीम होती है। तो फिर हम लोग उसमें उनकी सर्जरी के द्वारा उस क्लॉट को निकालते हैं और प्रेशर को कम करते हैं। तो ये सब चीज़ें जितनी जल्दी हम लोग इसको स्टार्ट करें और डिसाइड करके मरीज़ को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें उतना ही मरीज़ के लिए बेहतर होता
1: जी,
0: है।
1: मरीज जितनी जल्दी अस्पताल पहुंच जाए, जितनी जल्दी वह अस्पताल पहुंच जाता है उसकी ठीक होने की चांसेस उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, इस तरह की बीमारी नहीं हो, आजकल हमारे युवा वर्ग भी इस बीमारी के चपेट में आ रहे हैं। अपनी जीवन शैली को, तनाव को, ब्लड प्रेशर को, अपने डायबिटिक को किस प्रकार कम करें और कैसे अपने एक अच्छी जीवन शैली हम गुजारें ताकि हम स्वस्थ रहें, बीमार नहीं हों।
0: ये बहुत ही अच्छा आपने बात कही है कि सबसे पहले स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर का के बारे में
1: जी
0: अवेयरनेस होना, उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। फिर आप देखें कि आप में क्या क्या रिस्क फैक्टर है जो आप में मौजूद है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपके फैमिली में किसी को पहले स्ट्रोक हुआ है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। तो अगर ऐसे मेंबर्स रहे हैं आपके फैमिली में तो आपको और सजग होने की ज़रूरत है। और अगर आपको साथ में डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो उसको सही समय पे उसके उसको नियमित रूप से उसको मॉनिटरिंग करें और उसका ठीक से इलाज करें, और अपने जो जो भी फिजिशियन है और जो भी डॉक्टर हैं उनसे आप रेगुलर उनके फॉलोअप में रहें और उनसे ट्रीटमेंट लें अच्छे से, तो ये एक चीज़ है। दूसरा है कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो उसका ठीक तरह से ट्रीटमेंट कराएं, और जो जीवन शैली है जैसे लाइक कि हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन जो आपको तनाव से आपको दूर रखता है, और अच्छी नींद का लेना, और किसी भी तरह के नशे से दूर रहना, ये इम्पॉर्टेंट है। तो अपने जीन्स को पहचानें कि आपके क्या फैमिली में कभी किसी को स्ट्रोक हुआ है, तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। आपके

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की और सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। भारत और मोरक्को के बीच आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण तथा बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि यह पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों तथा हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी और 9 अन्य घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागे से खेलेंगे। महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, Prime Minister said the country's achievements over the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
1: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है, और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी दो तीन दिन पहले जी समिट से लौटा हूं, और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है.
2: Highlighting the government's 12 years in office, Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building. Mr. Modi said nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle class and boosting economic activity. He stressed that empowering the poor and middle class remained a key priority, citing a affordable housing initiatives, tax reforms, healthcare schemes, and improved urban infrastructure. Taking swift action after the tragic fire incident in Lucknow, which claimed the lives of 15 students, the police registered a case against six individuals and arrested four of them last night. Four officials from the Lucknow Development Authority, Fire Department and Electricity Department have also been suspended following directives from Chief Minister Yogi Adityanath. In connection with the fire incident in Lucknow, Aliganj police have registered an FIR under relevant sections of the BNS and the Uttar Pradesh Fire Service Act against six named accused and other responsible persons. Meanwhile, the state government has ordered a high-level inquiry into the fire incident. A special investigation team, SIT, was formed to investigate the incident, and its members will submit their report within 7 days. At least 15 people, mostly students aged 16 to 25, died in the tragic fire yesterday afternoon. President Draupadi Murmu will confer the Padma Awards 2026 during the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. The President will confer 65 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 7 Padma Bhushan and 56 Padma Shri. Tennis legend Vijay Amritraj, actor Mammootty, playback singer Alka Yagnik and cricketer Rohit Sharma are among 65 prominent personalities who will receive the coveted Padma Awards from the President. Jammu and Kashmir Police has issued a comprehensive traffic and travel advisory ahead of the annual Sri Amarnath Ji Yatra SANJY 2026 scheduled to be held from July 3rd to August 28. The advisory urges that pilgrims, tourists and commuters to follow designated traffic regulations for a safe and smooth journey. According to the advisory, restrictions have been imposed on the movement of civilian traffic through the Navyug Tunnel during specific hours throughout the Yatra period to facilitate the movement of pilgrimage convoys. Vehicles travelling from Kashmir towards Jammu will not be allowed to cross the Navyug Tunnel before 11:30 a.m., while vehicles moving from Jammu towards Kashmir will not be permitted to enter the tunnel after 3 p.m. each day. Indian Embassy in Doha has announced that Qatari authorities have confirmed the deaths of 12 Indian nationals in Ras Laffan incident Sunday night. In a social media post, the embassy extended its condolences to the bereaved families and offered prayers for the departed souls. It also stated that Qatari authorities confirmed all those injured in the incident are in stable condition and receiving appropriate medical treatment. The embassy is working in close contact with Qatari authorities to provide all possible help to the Indian nationals and their families affected by this incident. And that is the end of this news bulletin.

ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत, अंग्रेजी व हिंदी समाचार। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं आगे का कार्यक्रम विवरण। दोस्तों, अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 7:15 पर हम सुनेंगे शास्त्रीय संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम राग रंग। हम सुनेंगे उस्ताद इमारत खान से सितार वादन। वो हमें सुनाएंगे बसंत मुखारी वो सरस्वती राग पर आधारित वादन। इसके बाद दोस्तों, सुबह 7:45 पर हमारा कार्यक्रम रहेगा स्वर सरिता, जो सुगम संगीत पर आधारित होगा, और आज हम इसके तहत सुनेंगे स्वाति नाटेकर को। दोस्तों, सुबह 8 का समय होगा दिल्ली केंद्र से जुड़ने का, जहां से हम सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 पे दिल्ली केंद्र से जुड़कर मॉर्निंग न्यूज सुनने के बाद 8:30 पर रुख करेंगे रांची की ओर और सुनेंगे रांची केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार। 8:45 का समय होगा फिर से एक बार वापस आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से जुड़ने का, जहां से हम सुनेंगे पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। दोस्तों, सुबह 9 का समय होगा जोहार पलामू कार्यक्रम से जुड़ने का और 9:30 पे हम सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। उमंग का भाग 1312 की आज प्रस्तुति होगी। इसके बाद सुबह 10 हम जुड़ जाएंगे दिल्ली केंद्र से और 10:05 तक हम सुनेंगे कार्यक्रम समाचार। इसके बाद 10:10 पे मुंबई केंद्र से जुड़कर हम सुनेंगे विविध भारती की प्रस्तुति सेहतनामा। 11:00 रंग तरंग, 12:00 यादों की महफिल। इसी तरह से दोस्तों, शाम 5:30 तक हम बारी बारी से अपने दिल्ली, रांची व मुंबई केंद्र से जुड़ते रहेंगे, जहां से हम सुनेंगे हिंदी समाचार, अंग्रेजी समाचार, प्रादेशिक समाचार और विविध भारती द्वारा प्रस्तुत सुरीला सफ़र, दोपहर सभा, सदाबहार नगमे, सखी सहेली, सेलुलाइड के सितारे और छाया गीत जैसे कार्यक्रमों को।

दोस्तों ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त सायका चटर्जी। आप सुन रहे हैं प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। दोस्तों इन कार्यक्रमों को सुनने के बाद शाम 5:30 पर हम फिर से एक बार मुंबई केंद्र से जुड़ जाएंगे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, जहां से हम सुनेंगे हमारे रेडियो साथी से सायंकालीन सभा में प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, प्रारंभ होता है शास्त्रीय संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम राग रंग। दोस्तों, राग रंग के तहत आज हम सबसे पहले सुनेंगे उस्ताद इमारत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं शास्त्रीय संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम राग रंग। राग रंग कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे हैं उस्ताद इमारत खान को जो सितार वादन कर रहे हैं। सबसे पहले आपने सुना बसंत मुखारी राग पर आधारित सितार वादन। यह है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र FM के 103 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों आइए अब सुनते हैं राग रंग के तहत फिर से एक बार इमारत खान का सितार वादन। इस बार हम सुनेंगे राग सरस्वती।

दोस्तों, आप राग रंग कार्यक्रम के तहत सुना उस्ताद इमारत खान का सितार वादन। आइए दोस्तों, अब जुड़ते हैं सुगम संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम स्वर सरिता से। स्वर सरिता के आज के हमारे कलाकार हैं स्वाति नाटेकर।

दोस्तों स्वर सरिता की आखिरी कड़ी में आइए फिर से एक बार सुनते हैं स्वाति नाटेकर की आवाज़ में एक खूबसूरत सा सुगम संगीत।

दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वर सरिता। स्वर सरिता के तहत आपने सुना स्वाति नाटेकर को। आइए दोस्तों अब जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं दिल्ली केंद्र से रिले समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और फिर रांची केंद्र से जुड़कर 8:30 से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश

0: सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में चार अधिकारियों को निलंबित किया, चार और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे चार जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान एलएनजी विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी। हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे, और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज

0: अभिनेता में मूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैं रैप का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
5: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
6: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता, बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया, बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले 6ठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए SIT गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अधिकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हुरमुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Varma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says principle of nation first has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan.

0: राज्यों के साथ करेंगे ऑनलाइन बैठक। झारखंड में 1 जून से अब तक सामान्य से 60% कम बारिश। रांची में एसआईआर को लेकर बीएलओ को मिला विशेष प्रशिक्षण। 30 जून से घर घर जाकर होगा मतदाता सूची का सत्यापन। प्रशासन ने जनता से की सहयोग की अपील। दुमका वन प्रमंडल के मसानजोर इको कॉटेज प्रोजेक्ट को मिला प्रतिष्ठित नेशनल स्कॉच अवार्ड। नई दिल्ली में दिया गया सम्मान। और झारखंड T20 क्रिकेट लीग का फाइनल आज रांची के जेएससी स्टेडियम में छोटानागपुर रॉयल्स और जमशेदपुर स्टीलर्स के बीच होगा खिताबी मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में देश के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस भव्य समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। झारखंड आंदोलन के प्रमुख शिल्पकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक दिवंगत नेता तिशोम गुरु शिवू सोरेन को मरणोपरांत प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान से नवाजा जाएगा। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के अनुसार शिवू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन यह पुरस्कार ग्रहण करेंगी। इस विशेष अवसर पर उनकी बहू कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेंगी। इस बीच पार्टी नेता और राज्य के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने केंद्र सरकार से शिवू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग की है।
1: चिंता भी है कि जिनके उनके कदकाठी के अनुरूप दिली इच्छा थी पूरे राज्यवासियों की उनको भारत रत्न मिले, हम आगे भी केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे कि उनके कदकाठी के अनुरूप, उनके कार्यशैलियों के अनुरूप, उनकी जो त्याग बलिदान है उसके अनुरूप उनको भारत रत्न मिले।
0: अलनीनो और कम बारिश को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह 10 बजे सभी राज्यों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक करेंगे। झारखंड में 1 जून से अब तक सामान्य से 60% कम बारिश हुई है। राज्य के कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि विभाग सुखाड़ से निपटने और वैकल्पिक खेती के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: हम लोग हर एक जिला के लिए कंटिजेंट एक्शन प्लान तैयार कराया है, स्टेट लेवल पे भी एक्शन प्लान तैयार कराया गया है। जिस जिला में जो आइटम सूटेबल हो सकता है उस हिसाब से हम लोग एक कंटिजेंट प्लान तैयार किया गया है ताकि इनकेस पानी का शॉर्टेज पड़ जाने पर हमारा किसान का खेत खाली नहीं रहे। साथ ही साथ हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के साथ भी लाइन अप कर रहे हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री भी इसका समीक्षा कर रहे हैं तो हम लोग हर लेवल पर इसको अलर्ट करके रखा हुआ।
0: रांची जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर सभी विधानसभा क्षेत्रों के बीएलओ और सुपरवाइजरों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इसके तहत 30 जून से 29 जुलाई तक घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण और सत्यापन किया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने मतदाताओं से बीएलओ को सहयोग करने की अपील की है। दुमका के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मसानजोर के चर्चित इको कॉटेज प्रोजेक्ट को इस वर्ष के प्रतिष्ठित नेशनल स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दुमका के वन प्रमंडल पदाधिकारी सात्विक ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में यह राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण किया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल एट AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल एट AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
3: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निकल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है।

0: बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
2: प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यसभा चुनाव के बाद महागठबंधन में मचे घमासान पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की कार्यशैली और चुनावी नतीजों से खुश नहीं है तो उसे सरकार से अपना समर्थन तुरंत वापस ले लेना चाहिए।
3: कांग्रेस पार्टी को अपने बारे में चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। आखिर कांग्रेस पार्टी की बातों को आगे नहीं मान रहा है। लोग कांग्रेस को छोड़ करके लोग दूसरे तरफ जा रहे हैं, उसको उसके बारे में विचार करना। वोट हमें नहीं दिया तो सरकार से उनको समर्थन ही विड्रॉ कर लेनी चाहिए।
2: धनबाद में आजसू पार्टी के स्थापना दिवस पर सरकार के खिलाफ विशाल आक्रोश रैली निकाली गई। इसमें पार्टी प्रमुख सुदेश महतो और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार और अधिकारियों अपराधियों के गठजोड़ के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी।
4: जब एक सरकार एक आंदोलन को खत्म करने के लिए आर्थिक शोषण करने के जो लगातार बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रही थी, सरकार का अस्तित्व उनके अधिकारियों से, उनके अधिकारियों की जो दशा है, जो व्यवस्था में बनी हुई है, सरकारी दफ्तरों का ऐसा पूरे देश के किसी दफ्तर में ना होगा। हर झारखंडी अपने आप को ठगा महसूस पा रहा है। अधिकारियों ने जो परंपरा बना दी, जिस तरह से सरकारी संसाधन को अपना अधिकार समझ कर दोहन कर रहे हैं, झारखंड की भावना, झारखंडी भावना अस्वीकार करती है।
2: केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की टीम ने रामगढ़ जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने बरका सयाल क्षेत्र के सौंदर स्थित रीजनल स्टोर में छापेमारी कर सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के चीफ स्टोर कीपर अरुण सिन्हा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई सुरक्षा कार्य के बदले घूस मांगने की शिकायत पर की गई है। झारखंड T20 क्रिकेट लीग के फाइनल मुकाबले में आज छोटानागपुर रॉयल्स और जमशेदपुर स्टीलर्स के बीच भिड़ंत होगी। रांची के JRCS नेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में दोनों टीमों के बीच इस पहले संस्करण का खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले सेमीफाइनल में जमशेदपुर स्टीलर्स ने कोयलांचल सुपर किंग्स को 79 रन से हराकर बड़ा उलटफेर किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पद्मभूषण गुरुजी, पत्नी रूपी सोरेन आज राष्ट्रपति के हाथों लेंगी सम्मान। प्रभात खबर लिखता है, कॉपियों की ऑनलाइन जांच में कई जवाब स्पष्ट नहीं दिखने से उनके अंक ही नहीं मिले, दोबारा मूल्यांकन में 6% तक बढ़े अंक। हिंदुस्तान ने लिखा है, नीट झारखंड की 2 छात्र समेत 30 लोग गिरफ्तार। दैनिक जागरण के शब्द हैं, नॉन इंटरलॉकिंग के कारण कई ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में प्रदान करेंगी देश के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार। झारखंड आंदोलन के प्रणेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत मिलेगा पद्म भूषण। केंद्रीय कृषि मंत्री अलनीनो और कम बारिश को लेकर आज सभी राज्यों के साथ करेंगे ऑनलाइन बैठक। झारखंड में 1 जून से अब तक सामान्य से 60% कम बारिश। रांची में SIR को लेकर BLO को मिला विशेष प्रशिक्षण। 30 जून से घर घर जाकर होगा मतदाता सूची का सत्यापन। प्रशासन ने जनता से की सहयोग की अपील। दुमका वन प्रमंडल के मसानजोर इको कॉटेज प्रोजेक्ट को मिला प्रतिष्ठित नेशनल स्कॉच अवार्ड। नई दिल्ली में दिया गया सम्मान। और झारखंड T20 क्रिकेट लीग का फाइनल आज रांची के JRCS स्टेडियम में छोटानागपुर रॉयल्स और जमशेदपुर स्टीलर्स के बीच होगा खिताबी मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र में एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम गीत गुंजन और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त, रेडियो साथी, आज के कार्यक्रम का होस्ट सैकत चैटर्जी। दोस्तों आइए गीत गुंजन की पहली पादान पे हम चलते हैं 1977 के दौर में, जब रिलीज हुई थी धर्मपाजी और जिनतमान अभिनीत फिल्म धर्मवीर। दोस्तों जिस गीत को हम सुनाने जा रहे हैं उस गीत को आवाज से संवारा है मोहम्मद रफ़ी ने, जबकि लिखा है आनंद बख्शी और धुन बनाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की अमर जोड़ी।

दोस्तों गीत गुंजन की आज की दूसरी पादान पे मैंने उस फिल्म से गीत को लिया है जिसमें अभिनय किया था शाहरुख खान और सुष्मिता सेन। जी आप सही पकड़े हैं, फिल्म का नाम है मैं हूं ना। तो आइए दोस्तों मैं हूं ना फिल्म से सुनते हैं अभिजीत और श्रेया के गाए उस गीत को जिसे लिखा है जावेद अख्तर और धुन बनाया है अन्नू मलिक।

दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता हम पहुंच चुके हैं गीत गुंजन के तीसरे पादान पे, जहां हमारा इंतजार कर रहे हैं मिस्टर नटवर लाल। जी हाँ दोस्तों, 1989 में आई अमिताभ रेखा की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी और इसके गीते भी काफी उम्दा बन पड़ी थी। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में उस गीत को, जिसे लिखा है आनंद बख्शी और संगीत दिया है राजेश रोशन।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गुंजन। आपने सुना पुराने फिल्म गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त सैकत चटर्जी और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए दोस्तों अब जुड़ते हैं कार्यक्रम जोहार पलामू से।
1: जोहार पलामू।

दोस्तों आज है 23 जून और आज की बात करें तो ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 23 जून वर्ष का 174वां दिन होता है, यानी कि साल में अभी और 191 दिन शेष बचे हैं। हाँ, जब वर्ष लीप वर्ष में आती है तो आज का दिन 175वां दिन हो जाता है, लेकिन इस बार 174वां दिन है। दोस्तों जोहार पलामू कार्यक्रम में हम बात करते हैं जानकारियों की, हम बात करते हैं मनोरंजन की, लेकिन आइए आज सबसे पहले बात करेंगे 23 जून की महत्वपूर्ण घटनाओं की। जी हाँ दोस्तों, 23 जून एक ऐसा दिन जिस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो विश्व इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गई। दोस्तों 1994 के 23 जून संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता को मंजूर किया और उत्तरी कोरिया द्वारा परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की घोषणा की। 1995 के 23 जून संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 50 वर्ष के इतिहास में 100वां प्रस्ताव लाया, जिसे साइप्रस में शांति सैनिकों की अवधि बढ़ाने के संबंध में दर्ज किया गया, इसे पारित भी किया गया। 2008 के 23 जून को प्रसिद्ध बंगला फिल्म के अभिनेता सौमित्र चटर्जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने के लिए चयन समिति ने सिफारिश की। टायर बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनी जेके टायर इंडिया लिमिटेड ने मेस्किको की टायर कंपनी टोर्नल व उसकी सहायक कंपनियों सहित $270 करोड़ का अधिग्रहण किया, जो उस समय के लिए काफ़ी बड़ी बात थी। 2008 के ही 23 जून को नेपाल की मौजूदा सरकार ने संयुक्त राष्ट्र मिशन की अवधि बढ़ाने की मंजूरी दी। 2014 की 23 जून को गुजरात का रानी की बाव

और हिमाचल का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 2017 के 23 जून को मोहम्मद बिन नायफ के बाद मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के नए उत्तराधिकारी नियुक्त हुए। आइए दोस्तों, जानकारी की इन बातों के बाद हम चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं यह खूबसूरत सा फिल्मी गीत।

दोस्तों आपने सुना अंताक्षरी। जी हाँ, इस अंताक्षरी को हमने लिया था मशहूर फिल्म मैंने प्यार किया से। दोस्तों मैंने प्यार किया फिल्म में कई गीत थे जो काफ़ी सुपरहिट साबित हुए थे, लेकिन इस अंताक्षरी की बात ही कुछ और थी और उस समय ये लोगों के जुबान पे चढ़ी थी, चर्चे में भी थी। इसे बहुत खूबसूरत ढंग से फिल्माया भी गया था जिस वजह से ये काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। आइए दोस्तों, मनोरंजन के बाद फिर से

लोग एक बार चलते हैं जानकारी की दुनिया में। तो दोस्तों बताते चले कि 23 जून को देश विदेश के कई प्रख्यात व्यक्तियों का जन्म हुआ है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ संजीव कुमार बालियान का जन्म 23 जून 1972 है। पूर्व भारतीय फुटबॉलर सैयद शाहिद हाकिम का जन्म भी 23 जून 1939 है। भारतीय राजनीतिज्ञ जिनका संबंध तेलुगु देशम पार्टी से है, उनका जन्म यानी कि एन भास्कर राव का जन्म 23 जून 1936 को है। भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर में से एक ओलंपियन प्रदीप कुमार बनर्जी का जन्म 23 जून 1936 को हुआ था। गांधीवादी विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म 23 जून 1934 को है। इसी दिन यानी कि 23 जून 1934 को ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का भी जन्मदिन है। भारत के अमर शहीद प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जन्म भी 23 जून 1901 को है, जबकि 23 जून 1912 को अंग्रेज गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एलेन ट्यूरिंग का भी जन्मदिन है। दोस्तों इस जानकारी की बात के बाद आइए फिर से एक बार चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को।

0: दोस्तों, ये जो गीत आपने सुना, इस गीत को हमने लिया है फिल्म मेरे सनम से। मेरे सनम फिल्म 1965 में आई थी और अपने समय की हिट फिल्मों में शुमार थी। दोस्तों, इस गीत को जो आपने सुना, इसे फिल्माया गया था आशा पारीख और विश्वजीत पर। इसे आवाज़ दिया था आशा भोसले ने, जबकि गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी और धुन बनाई थी ओपी नैयर ने। दोस्तों, हमने जानकारी के तहत बातें करी 23 जून के इतिहास के बारे में। हमने बातें की 23 जून के जन्म व्यक्तियों के बारे में। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं 23 जून को हुए प्रमुख व्यक्तियों के निधन के बारे में। तो सबसे पहले बताते चले दोस्तों कि 23 जून 2015 को मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ की प्रमुख निर्मला जोशी का निधन हो गया था। महान मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव का निधन 23 जून 1761 को हुआ था। महान शिक्षाविद, चिंतक और साथ ही भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन 23 जून 1853 को हो गया था। राजनेता तथा समाज सुधारक गंगा प्रसाद वर्मा का निधन 23 जून 1914 को हुआ था। गुजराती भाषा के लेखक और महान शिक्षक शास्त्री गिजू भाई बधेका का निधन 23 जून 1939 को हुआ था। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और पाकिस्तान में भारत के प्रथम उच्चायुक्त श्री प्रकाश का निधन 23 जून 1971 को हुआ था। भारतीय नेता एवं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी का निधन एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 23 जून 1980 को हुई थी। भारत के चौथे राष्ट्रपति वी गिरी का निधन भी 23 जून 1980 को ही हुई थी। आइए दोस्तों, इस जानकारी के बातों के बाद फिर से एक बार रुख करते हैं मनोरंजन की तरफ और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
1: कहीं न ऐसी

आइए दोस्तों, इस जोहार पलामू कार्यक्रम के बाद हम जुड़ते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग के साथ और सुनते हैं उमंग का भाग संख्या 1312।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया।
2: जी।
3: योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
3: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा
3: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज

0: अरदीन, सुहान, अरजान और अवान अब्बासी।
1: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
0: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
1: अजीत जी, सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
0: जी, मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
1: अजीत जी, आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
0: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
1: जी श्रोताओ, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
0: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
1: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
0: विमलेश जी, आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा
1: जी,
0: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
1: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
0: विमलेश जी, एक और बेहद रोचक बात मैंने इन फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
1: जी बिल्कुल सही। और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं, आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
1: जी
0: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
1: इस समय शहरों, गाँवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
0: इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
1: जी,
0: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
1: जी, दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं
0: जी,
1: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
0: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
1: जी,
0: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
1: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही है, इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसकी पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
0: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं
1: जी।
0: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं, कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
1: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है
0: जी।
1: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
0: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
1: जी,
0: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
1: जी बिल्कुल। तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं।
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
1: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम।
0: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू। सिंगिंग द पोएम श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
2: Children, have you ever visited a zoo?
3: A zoo?
2: Yes, a zoo.
3: Oh yes.
2: All right. So tell me, what do you see in a zoo?
3: Tiger.
4: Lion.
2: Yes.
4: Monkey. Birds of different kind.
2: Very nice.
4: Camel. Giraffe. And so on.
2: Oh wow. So, here is a child like you who wants to go to a zoo. Now, let's recite this poem and you all repeat after me. Ready?
3: Ready!
2: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
3: We are going to the zoo to see a kangaroo.
2: And a lion too.
3: And a lion too.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The monkeys swing and climb.
3: The monkeys swing and climb.
2: They know it's feeding time.
3: They know it's feeding time.
2: The polar bear and seals.
3: The polar bear and seals.
2: Enjoy their fishy meals.
3: Enjoy their fishy meals.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The snakes all slide along.
3: The snakes all slide along.
2: The skunk just makes a pong.
3: The skunk just makes a pong.
2: The tiger gives a roar.
3: The tiger gives a roar.
2: He wants to eat some more.
3: He wants to eat some more.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: So children, you all have listened to this poem just now. Hope you have enjoyed, isn't it?
3: Yes!
2: All right. So now, what will we do?
5: We will hum and we will sing along.
2: Yes, we will hum and sing along.
3: Yay!

0: Dear friends, you have just heard the sounds of different animals in this song. Now, listen to the sounds again and try to identify them by yourself. This was elephant. This was monkey. And this was tiger. This was polar bear. And this was skunk. And this was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
3: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
4: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
5: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है।
6: बिल्कुल।

0: आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
1: वीर जोरावर की
2: जय।
1: वीर जोरावर की
2: जय।
1: जय जेरापुर जय भारत।
2: जय जेरापुर जय भारत।
3: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
4: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
3: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
4: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया, ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
5: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा, ताकि इन अंग्रेजों को मनमाने का कोई मौका ही ना मिले।
0: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
5: जी।
0: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
5: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
0: बिल्कुल,
5: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
0: जी मंत्री जी।
5: जी महाराज।
3: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
1: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
6: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह,
7: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है, तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
0: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
7: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
0: देखिए निजाम साहब।
7: जी फरमाइए।
0: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
7: जी।
0: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा, ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाएं।
7: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
0: जी।
7: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
8: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
3: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहां के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर,

0: जाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
1: जी हाँ, जीरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
2: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
3: बिल्कुल।
2: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
4: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
2: लेकिन जरा होशियारी से।
4: जो हुकुम सरकार।

0: काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
1: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
0: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
2: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
1: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
3: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम।
5: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आपने सुना उमंग का भाग संख्या 1312। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र FM के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए दोस्तों, अब बारी बारी से जुड़ते हैं दिल्ली, रांची व मुंबई केंद्रों से, जहां से हम सुनेंगे समाचार व विविध भारती से प्रस्तुत विभिन्न कार्यक्रमों को। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे। पहले हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, ठीक उसके बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचा का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कल हुई इस बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने

की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज पिछले सप्ताह होर्मुज जल डमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाड़ा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल है। फीफा विश्व कप 2026 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप आई के मुकाबले में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया। इसके साथ ही फ्रांस के नॉकआउट चरण में पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि आप अमेरिका में रहे बहुत साल, तो किस तरह की पढ़ाई वहाँ पर थी आपकी?
1: तो बेसिक MBBS मैंने यहाँ से की, बॉम्बे से की। फिर वहाँ पे मेरे फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली वहाँ रहती थी, तो मैं वहाँ जाके पहले अपना बेसिक MD मेडिसिन की, हमने वहाँ पे तीन तीन
0: जी
1: साल का कोर्स होता है वहाँ पे, जो MD मेडिसिन MBBS के बाद करते हैं। फिर उस टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि वहाँ पे लिवर के लिए पढ़ाई करूँ एक्स्ट्रा, जो स्पेशल फेलोशिप होती है
0: जी
1: हेपेटोलॉजी की, जब हम लिवर और लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सीखते हैं हाउ टू डू इट, तो मैंने 1 साल का कोर्स किया। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि क्यों मैंने ये फील्ड चूज़ की थी, मैं बताऊंगा आपको आगे। और सब्सिक्वेंटली पूरी ट्रेनिंग ख़त्म करने के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो करते हैं
0: जी
1: हम,
0: जी
1: एंडोस्कोपी वो की, एंड फाइनली मैंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जाके एडवांस एंडोस्कोपी सीखी, जो स्पेशलाइज एंडोस्कोपीज होती है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड ERCP
0: जी
1: करके टेस्ट होते हैं, जो हम हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट्स पे
0: जी
1: भी करते हैं, वो सीखी। तो ओवरऑल 8 से 9 साल लगे वहाँ पे पढ़ने
0: जी
1: को, फिर
0: जी
1: 4-5 साल उधर काम किया, फिर 14 साल बाद आई डिसाइडेड कि वापस आना चाहिए अपने देश। तो जैसे मेरी माँ कहती है ना, वनवास करके आ गया
0: अरे
1: वापस।
0: क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई, और हमारे बहुत सारे युवा श्रोता सुनते हैं प्रोग्राम, तो कितनी अच्छी बात है कि अपने देश की प्रतिभा को वापस अपने देश में आपने दिया। और अपने श्रोताओं को ये बताते हुए हमें अच्छा लग रहा है कि हम निजी तौर पर भी डॉक्टर साहब को जानते हैं, और बड़े अनुभव का खजाना है हमें पता था, लेकिन इतनी सारी नॉलेज का भी खजाना है ये हमें आज पता चला। डॉक्टर साहब, आज फैटी लिवर पे हम पहले बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बहुत सारी पेट की बीमारियों पर भी चर्चा करेंगे। हमें बताइए कि दवाइयों से क्या फैटी लिवर का इलाज संभव हो सकता है, या कोई ऑपरेशन या परहेज कुछ करना पड़ता है?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, वो पेशेंट की एक्सपेक्टेशन देती है कि हम एक दवाई लिख के दें।
0: जी
1: तो फैटी लिवर ऐसी बीमारी है जो अगर जल्दी पकड़े जाए तो इसके लिए दवाई की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने बॉडी का 5 to 10% भी वज़न कम कर पाए, किस तरह भी, चाहे आप डाइट करो, एक्सरसाइज करो, अगर 5 से 10% आपने वेट कम कर लिया, तो बीमारी पूरी तरह से मिट जाती है मोस्ट पेशेंट्स में। पर ये करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है। तो मोस्ट पेशेंट्स को कोई ना कोई दवाई की ज़रूरत पड़ती है। पहले हम विटामिन ई देते थे, एक
0: जी
1: गोली आती थी वो देते थे उसके लिए। उसके बाद और नई दवाइयाँ, एक इंडियन दवाई आई है जो हम देते हैं, जिससे फैटी लिवर भी कम होता है और लिवर का डैमेज भी थोड़ा थोड़ा कम होता है। अमेरिका में 2 और दवाइयाँ अभी अप्रूव हुई हैं, एक साल पहले हुई थी, फिर कभी 6 महीने पहले हुई है। आजकल जो सबसे ज्यादा दवाई हम यूज़ करते हैं इसके लिए, वो है सेमाग्लूटाइड, एक तरह का इंजेक्शन होता है जिससे वेट लॉस होता है, जो
0: जी
1: आजकल
0: जी
1: काफ़ी फेमस हो चुका है फॉर गुड एंड बैड रीजंस। तो देर आर मेडिसिन अवेलेबल हैं दवाइयाँ, मगर ये डॉक्टर के देख के डॉक्टर है डिसाइड कि कौन सी दवाई आपके लिए सही है। मेरा मानना होता है कि पेशेंट्स खुद, जैसे आपने कहा, गूगल करके दवाई ले लेते हैं। स्पेशली ये जो हर्बल मेडिसिन होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए, क्योंकि उनमें कभी कभी भस्म होता है, उसमें लिवर को डैमेज करने का और चांस होता है।
0: ओ
1: तो ये दवाइयाँ थोड़ा ध्यान से लेनी चाहिए। अगेन, बिना दवाई के हो सकता है। मेरे हर एक पेशेंट को पहले मैं 3 से 6 हफ्ते का चांस देता हूँ कि वेट लॉस करो। अगर वे वज़न नहीं कम कर पा रहे और नहीं हो रहा है आपका फैटी लिवर रिवर्स, फिर हम दवाई शुरू करते हैं।
0: जी तो डॉक्टर साहब, आजकल ये समस्या युवाओं में भी बढ़ रही है, उसका कारण स्ट्रेस है, पढ़ाई का बोझ है, और अगर वो कंपनीज में काम कर रहे हैं तो उसका बोझ है, तो क्या तनाव भी एक कारण है? एक बात ये बताइए, और साथ में हमें ये भी बताइए कि लिवर के, इस फैटी लिवर के कारण और कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं?
1: हाँ, मैं बहुत सही कहा आपने, फैटी लिवर स्ट्रेस गो हैंड इन हैंड। आजकल मैं देखता हूँ मेरे जो पेशेंट्स आते हैं और फैमिली मेंबर्स भी,
0: जी
1: उन्होंने 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, चौदह
0: जी
1: घंटे
0: पढ़ाई
1: काम
0: कर
1: कर रहे हैं,
0: रहे हैं वो
1: स्पेशली
0: तो।
1: पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे रहते हैं। मैं अपने लड़के के बारे में बोलूँ, बैठे रहेंगे, वज़न बढ़ेगा,
0: जी जी
1: एंड फिर उस टाइम पे कुछ सूझता नहीं है, जो हाथ में आया खा लिया, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है,
0: जंक फूड।
1: जंक फूड खा लिया, और डाइट इज बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट है अभी। तो आई थिंक स्ट्रेस, स्ट्रेस ऑफ वर्क, स्ट्रेस ऑफ स्टडीज, स्ट्रेस ऑफ जॉब, ट्रैवल, वो सब से भी अपने बॉडी के हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, जिसमें वेट गेन होना बहुत रैपिडली होता है। फिर वो स्ट्रेस को कम करने के लिए हम खाना खाते हैं, जो बोलते हैं स्ट्रेस ईटिंग। हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, प्रोटीन कम खाएंगे, प्रोसेस्ड फूड्स खाएंगे,
0: जी
1: स्विगी
0: जी
1: ऑर्डर कर लिया, इंस्टा ऑर्डर कर
0: यस
1: लिया, 5 मिनट में घर पे आ गया, खा लिया और
0: हाँ
1: काम खत्म। तो ऑल दीज कैन देन लीड टू फैटी लिवर, एंड देन वंस फैटी लिवर हो गया देन फैटी लिवर अगेन इज नॉट द प्रॉब्लम. फैटी लिवर अगर आपको है तो कह रहा है कि आपको बॉडी में और प्रॉब्लम होने के चांसेस है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, ये सब वेट से रिलेटेड है, सब फैट से रिलेटेड है. तो लिवर तो बेचारा एक ऑर्गन है जो सब स्टोर कर रहा है, बट उसकी इफेक्ट सारे ऑर्गन्स पे हो सकती हैं.
0: जी जी तो ये फैटी लिवर के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, तो हमारे बहुत सारे श्रोता जो विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने कुछ सवाल भी भेजे हैं, तो फैटी लिवर के बारे में बताया है लेकिन सवाल उन्हें नहीं सूझा, तो मैं ही सब पूछ रही हूँ अपनी तरफ से उन श्रोताओं की ओर से भी कि फैटी लिवर पर अगर ध्यान नहीं दिया गया थोड़ी बहुत लापरवाही या असावधानी की वजह से तो क्या लिवर सोरायसिस या लिवर कैंसर जैसी बीमारियां भी पनप सकती हैं क्या?
1: बिल्कुल, अगर 100 पेशेंट्स को लें, आप 100 लोगों को लें जिनको फैटी लिवर है और उनको और कोई और बीमारी नहीं है, तो इनमें से 2-3% लोगों को आगे जाके लिवर सिरोसिस होगा. ये बहुत बड़ा नंबर है. आई मीन ये मैं डायबिटीज वालों को नहीं बोल रहा, मैं रेगुलर पेशेंट्स को बोल रहा हूँ. अगर आप देखें हमारी इंडियन पॉपुलेशन इज क्लोज टू 250 करोड़, उसमें अगर आप 3% लोगों को भी लिवर सिरोसिस दे दें, दैट्स अ वेरी बिग नंबर. बहुत लोगों को लिवर सिरोसिस होता है. एक बार लिवर सिरोसिस हो जाए वो परमानेंट है, तो लिवर सिरोसिस पेशेंट को फिर लिवर कैंसर होने की संभावना 20-30 गुना ज्यादा होती है. तो लिवर फैटी लिवर से सिरोसिस होता है, सिरोसिस के साथ आगे कैंसर होने के चांसेस कही जाते हैं.
0: जी जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनाएं अपने श्रोताओं को.
1: दूसरा गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं एक्सरसाइज के टाइम कभी कभी सुनता हूँ, लाइक थोड़ी बीट सोनी चाहिए, भाग मिल्खा भाग वाला गाना.
0: क्या बात है,
1: मुझे पसंद है.
0: सुनते हैं, फरहान अख्तर पर्दे पर हैं और अच्छी एक्टिंग करते हैं और भाग रहे हैं सचमुच, तो बेहतरीन गाना चुना है. सुनते हैं यही गाना और ये भाग मिल्खा भाग फिल्म का गाना सुनते हुए अपने श्रोताओं से ये भी कहना जरूरी है कि बस भागना जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि बैठे बैठे आप बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, तो कसरत कीजिए और भागिए.

0: अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपने जो लिवर सोराइसिस के बारे में जानकारी दी, तो इसके क्या लक्षण हैं और किस तरह इसका ट्रीटमेंट हो सकता है?
1: जब लिवर सिरोसिस होता है तो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, उनको तकलीफें शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ा सिम्टम होता है फिटीग, थकान रहना, पूरे दिन थका हुआ रहता है आदमी। कभी कभी फैमिली मेंबर नोटिस करता है कि आंखें पीली हो रही है, येलो हो रही हैं। कभी कभी पेट फूलना शुरू हो जाता है, वजन कम होता है मगर पेट फूल रहा है, पेट में पानी जमना शुरू हो जाता है। रेयरली कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, उसमें कभी कभी खून की उल्टी भी हो सकती है क्योंकि सिरोसिस के कारण खाने के पाइप में कोई नसें फट जाती हैं। तो ये सारे लक्षण जब आते हैं तो वो कह रहा है आपको कि लिवर काफ़ी हद तक खराब हो गया है, और तभी नॉर्मली पेशेंट डॉक्टर को मिलने आता है।
0: जी, तो इसका इलाज संभव है पूरी तरह या ये एक लाइलाज बीमारी है, हमेशा दवा खानी पड़ती है?
1: नहीं, दवाई तो हमेशा खानी पड़ती है, इट इज इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है अगर हमको कोई और कारण पकड़ में आ जाए। कभी कभी सिरोसिस के साथ हेपेटाइटिस होता है जो इंडिया में कॉमन है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसको हम अगर ट्रीट कर दें तो खराब लिवर को भी बचा सकते हैं और जिंदगी कट सकती है। फैटी लिवर मगर ऐसी बीमारी है जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर आपको सिरोसिस हो जाए तो आगे जाके धीरे धीरे बढ़ती है। हम बेसिकली उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे खून की उल्टी होना, पेट में पानी बनना, थकान होना, हीमोग्लोबिन कम होना, उसको ठीक कर सकते हैं, पर एक बार सिरोसिस सेट हो गया है तो वो इरिवर्सिबल बीमारी है, और फिर आगे जाके हमको मोस्ट पेशेंट्स का लिवर बदलना पड़ता है, लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं।
0: डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि फैटी लिवर से डायबिटीज का क्या संबंध है? क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि मतलब फैटी लिवर हो गया तो डायबिटीज होना जरूरी है या क्या
1: हाँ,
0: है?
1: ये अच्छा सवाल है क्योंकि अगर आप इंडिया में देखा जाए तो अगर आप देखें जिनको फैटी लिवर है
0: जी
1: उनका हम अगर डायबिटीज का चेकअप करें तो काफी लोगों को प्री डायबिटीज होता है,
0: जी
1: मतलब
0: जी
1: डायबिटीज शुरुआत होने की चांसेस है। HbA1c जो बोलते हैं वो 5.7 5.8 होता है। मोस्ट प्लेसेस में अगर आप देखें अब्रॉड, अगर आपका HbA1c 5.6 5.7 है, आपको प्री डायबिटीज है, आपको 10 या 12 साल बाद डायबिटीज शुरू होनी होनी है। इंडिया में फॉर सम रीजन, ये हमारा जेनेटिक्स है या कुछ है, कि अगर हमको फैटी लिवर है और हमारा HbA1c प्री डायबिटिक रेंज में है, 3 से 4 साल में या 5 साल में आपको डायबिटीज हो सकती है। तो अगर आपको फैटी लिवर है, ये कह रहा है कि आपको आगे जाके डायबिटीज हो सकती है। नाउ उल्टा सवाल, अगर आपको डायबिटीज है तो रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज वेरी हाई। नॉट ओनली रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज हाई, रिस्क ऑफ फैटी लिवर विद कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो डैमेज फाइब्रोसिस बोलते हैं, वो काफी हाई होती है। तो अगर आप देखें आजकल के जो डायबिटीज के दवाई शुरू हुई है, जो न्यू दे रहे हैं, जो वेट लॉस ड्रग जो डायबिटीज के लिए एक्चुअली अप्रूव्ड है, वो फैटी लिवर को भी हेल्प करती है। सो इट वर्क्स बोथ फेज।
0: अच्छा, तो इसके लिए क्या अवेयरनेस क्या होनी चाहिए कि इन बीमारियों से मरीज मतलब उसके चपेट में ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए
1: ना,
0: पहले?
1: अवेयरनेस यही है कि जैसे हमने कहा है खाने पे ध्यान दो।
0: हाँ
1: हमारा जो इंडियन डाइट है वो
0: जी,
1: काफ़ी पुअर है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन इंटेक, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है,
0: ओके
1: प्रोटीन बहुत कम है। तो अगर हम प्रोटीन बढ़ाएं डाइट में, कार्बोहाइड्रेट कम करें, तो अपने आप थोड़ा वेट लॉस होगा, मसल मास बढ़ेगा, रिस्क ऑफ डायबिटीज कम हो जाएगा। एक्सरसाइज करो, जो मैंने गाना थोड़ी देर पहले बजाया था, भाग मिल्खा भाग, उसका यही है कि भागो, एक्सरसाइज करो। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम सबको पूछता हूँ, मेरा पहला सवाल यही होता है कि एक्सरसाइज कर रहे हो, और सबका सवाल सब आधे लोग बोलते हैं हाँ वॉक करते हैं। तो वॉक इज नॉट गुड। अगर आप जो भी डेटा देखें तो 150 से 200 मिनट की एक्सरसाइज हफ्ते की जरूरी है अगर आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, जिसमें इट इंक्लूड्स कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, जिसमें आप वॉकिंग करते हैं, और आपकी सांस फूलनी चाहिए, पसीना आना चाहिए। आप
0: ओके
1: खाली वॉक करो, काम पे जाओ, स्टेशन तक जाओ, वापस आ जाओ, दैट इज नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सांस फूलनी चाहिए, हार्ट रेट बढ़ना चाहिए एज अप्रोप्रिएट, और
0: जी
1: थोड़ी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। हफ्ते में 2 दिन थोड़े वेट्स करने चाहिए जिससे आपका मसल बढ़े। अगर आपका मसल का साइज बढ़ेगा, आपका वेट लॉस जल्दी होगा, डायबिटीज नहीं होगी या कंट्रोल में आएगी, बॉडी का फैट निकलेगा क्योंकि मसल ज्यादा बर्न करेगा एनर्जी को। तो अगेन चेकअप कराते रहिए, बेसिक ब्लड टेस्टिंग का, एक्सरसाइज कर कीजिए 150 मिनट्स मिनिमम अ वीक, खाने में ध्यान दीजिए, प्रोटीन बढ़ाए अपने खाने में, और रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहिए।
0: जी, कई बार लोग ये भी भ्रांति है, मतलब गलतफहमी है लोगों में कि प्रोटीन खाने से पाचन की समस्या बढ़ती है, एक उम्र के बाद प्रोटीन लोगों को कम कर देना चाहिए, तो दाल कम कर देते हैं लोग, चने खाना, तो इसके बारे में थोड़ा
1: हाँ,
0: बताइए।
1: ये अच्छा सवाल है बहुत, क्योंकि जब भी मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको फैटी लिवर है, तो उनके
0: जी
1: दो जवाब होते हैं सबके, कि हम तो अल्कोहल पीते नहीं है, क्योंकि सबके मन में भ्रम है कि अल्कोहल से फैटी लिवर
0: जी
1: होता है,
0: जी
1: और दूसरा होता है कि हम तो शाकाहारी है, हम तो कांदा लहसुन भी नहीं खाते। मेरा मानना है कि इन इंडिया बींग अ वेजिटेरियन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर लिवर डिजीज, बिकॉज वेजिटेरियंस में हम ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। अगर हमारी डाइट देखे 70-80% कार्ब्स है, 10% फैट होगा, 10-15% प्रोटीन है, और ये वेस्टर्नाइज डाइट देखो तो 30% तक प्रोटीन होता है डाइट में। तो प्रोटीन डाइजेस्ट करना इजी है, इनफैक्ट हमारे जो दालें हैं वो ज़्यादा इजी है डाइजेस्ट करना देन अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, जैसे अपने एग्स हो गए, मीट्स हो गए। तो हम शाकाहारी तो हम नहीं खा सकते, तो ये भ्रम है कि आगे जाके नहीं खाते हम,
0: जी
1: इनफैक्ट बढ़ाना चाहिए थोड़ा। उससे
0: बिल्कुल
1: आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, आपकी मसल स्ट्रांग रहेगी, बोन स्ट्रांग रहेंगे, फ्रैक्चर्स होने के चांस कम हो जाते हैं।
0: जी, तो अभी जो भी श्रोता सुन रहे हैं तो अपने डायटिशियन से संपर्क करें या ये खोजें कि कहाँ कहाँ प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में है, और आज से प्रोटीन की डाइट शुरू करें। इसमें हम भी शामिल हैं, हम अपने को भी शामिल करते हैं इसमें। और अब एक गाना सुने डॉक्टर साहब।
1: बिल्कुल, तो एक और गाना जो मुझे बहुत पसंद है, स्कूल डेज में हमने सुना था जब मेरे 10th खत्म हुई थी, जो जीता वो सिकंदर का गाना, यहाँ के हम सिकंदर।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है, और सभी हमारी बातचीत से मेल खा रहे हैं। अगर अपनी सेहत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो जाहिर सी बात है हम अपने क्षेत्र में सिकंदर बने रहेंगे। सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, ये जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गाना था, और इस गाने के साथ खुद को सिकंदर बनाए रखने के लिए अपनी सेहत को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अपने श्रोताओं को बता दें, विविध भारती से ये है कार्यक्रम सेहतनामा, और आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट से संबंधित अन्य बीमारियों के बारे में। हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में है मुंबई के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से कुछ सवाल आए हैं। ये कार्यक्रम विविध भारती के फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है, तो वहां से कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है। मतलब कई श्रोताओं ने लिखा है, किसी ने लिखा है कि हमारी माँ को है, किसी ने लिखा है मुझे, किसी ने लिखा है मेरी बहन को है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है, IBS, और कैसा होना चाहिए खान पान इसके लिए?
1: तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम प्रॉबेबली फैटी लीवर के बाद सबसे कॉमन, अगर पेट की बीमारी देखें तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसमें पेशेंट को लगता है कि पेट फूल जाता है, कभी कभी पेट दर्द करता है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी कब्जियत हो जाती है, कभी आगे पीछे होते रहता है। और इन पेशेंट्स को हम सारी जांच पड़ताल कर ले, हमको कुछ नहीं मिलता, सारा कुछ नॉर्मल मिलता है। तो लॉट ऑफ टाइम ये स्ट्रेस रिलेटेड रहता है या सिचुएशन रिलेटेड रहता है।
0: जी
1: जैसे
0: जी
1: बच्चे हों, उनको अगर एग्जाम देने जा रहा हूँ तो बोलते पेट दर्द कर रहा है,
0: जी
1: या
0: जी
1: वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, या लूज मोशन शुरू हो जाते हैं स्ट्रेस में, तो इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। इसमें इधर आपको डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट फूलता है, और अगर पेट साफ हो जाए तो अच्छा लगता है। तो इसकी ट्रीटमेंट बेसिकली होती है, यू नीड टू फाइंड आउट द स्ट्रेस, ट्रीट द स्ट्रेसर, और डाइट के थोड़ा ध्यान दो। अगर अगर कॉन्स्टिपेशन है तो डाइट में फाइबर ज़्यादा लो, फल फ्रूट ज़्यादा लो। अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो कच्चा खाना मत खाओ, पका हुआ खाना खाओ, थोड़ा ब्रेड्स खाओ, राइस खाओ, जिससे पेट थोड़ा बन जाए।
0: ये है। और बाकी नॉर्मल किस तरह की तकलीफ होती है, वोमिटिंग और जो एसिडिटी की समस्या भी होती है इससे?
1: इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अलग बीमारी है, एसिडिटी अलग बीमारी है। एसिडिटी होता है जब हमको खाने के पाइप में या पेट में या छाती में जलन होनी थी है, वो खाने के बाद हो सकती है, खाली पेट हो सकती है, सोने के बाद होती है, खाना हम लेट खाएं और लेट जाएं और छाती में जलन होती, तो उसको एसिडिटी या गर्ड बोलते हैं। एक बात आपने सही की कि ये IBS गर्ड पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो सबकी एक हमको एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म। एसिडिटी मतलब जलना, पेट के ऊपर के हिस्से में जलना, छाती में जलना, कभी कभी उसे खांसी भी हो सकती है, कभी कभी खाना अटकता है गले में, ऐसे लग रहा है, तो उसको एसिडिटी बोलते हैं। IBS होता है पेट फूलना, छाती के नीचे का प्रॉब्लम है वो, पेट फूलना, लूज मोशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना। तो ये जानना बहुत जरूरी है, इसके लिए जब पेशेंट हमारे पास आते हैं हमको काफी सवाल पूछने पड़ते हैं कि एक्चुअली बीमारी क्या है, क्योंकि इंडिया में सॉर्ट ऑफ हो गया कि सब बीमारी इज एसिडिटी। हर एक बीमारी को अगर लूज मोशन को एसिडिटी बोल देते हैं, कॉन्स्टिपेशन को एसिडिटी बोल देते हैं, पर एसिडिटी इज अ सेपरेट प्रॉब्लम।
0: जी।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हम जानना चाहते हैं कि दरअसल डॉक्टर साहब, कुछ मरीज को ये समस्या भी होती है कि उन्हें जलन नहीं महसूस होती है, एसिडिटी फील नहीं होता है, लेकिन फिर उनको ऐसा लगता है ऊपर ऊपर कुछ आ रहा है और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, कई कई वॉमिटिंग, तो ये क्या?
1: हाँ, तो ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ एसिडिटी ओनली। इसमें बेसिकली खाना ऊपर चढ़ के आ रहा है
0: जी,
1: तो जो हमारे खाने का पाइप होती है, इसोफेगस जिसको बोलते हैं, और पेट होता है, उसके बीच में एक वाल्व होता है। किसी किसी का ये वाल्व लूज हो जाता है विद टाइम, उसके कई कारण होते हैं। उसके बाद अगर हम हैवी खाना खा लें तो वो खाना ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, वो शायद ना जले मगर ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, मुंह में आएगा, कभी कभी मुंह में खट्टा पानी आ

0: जाता है। कभी लेट खाना खाओ, लेट जाओ तो रात को उठना पड़ता है क्योंकि खट्टा पानी ऊपर आ गया है और खांसी शुरू हो गई है, तो इसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं। मतलब जो पेट का खाना है, जो पेट के नीचे जाना चाहिए, वो
1: ऊपर
0: अभी
1: आ
0: वापस खाने के पाइप में आ गया है।
1: जी, तो इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है?
0: तो इसका बेसिक ट्रीटमेंट तो हम वही करते हैं कि खाना टाइम पे खाओ, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लो। सबसे इंपॉर्टेंट है खाने में और सोने में 3 घंटे का गैप रखिए। खाने के बाद टहलिए थोड़ा, 10-15 मिनट तक खाना नीचे चले जाए। दूसरी चीज़ कहूँगा, जो चीज़ आपको लग रहा है आपको तकलीफ दे रही हो, तो किसी किसी को स्पाइसी फूड तकलीफ देता है, तला हुआ तकलीफ देता है, या ज़्यादा पानी नहीं पीना खाने के साथ। जैसे बहुत लोग आजकल कोका कोला पीते हैं या एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं खाने के साथ, तो वो फिर गैस ऊपर चढ़ के आती है और खाना भी उसके साथ चढ़ के आता है।
1: ओ
0: तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, लेट नाइट मील्स मत खाओ, जो चीज़ आपको तकलीफ देती है वो मत लो। दैट शुड हेल्प योर सिम्टम्स। अगर इसके बावजूद नहीं ठीक हुआ, फिर हम दवाई शुरू करते हैं।
1: जी, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मैंने तो हर किसी को सुना है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो इसकी जांच की कोई व्यवस्था है कि कैसे पता चले कि एसिडिटी है? क्या वजह, कारण क्या है, असली कारण क्या है?
0: हाँ, तो ये भी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मोस्ट टाइम्स हम देखते हैं पेशेंट फार्मेसी के पास जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, एक दवाई ले ली, वो लेते रहते हैं लेते
1: लेते
0: रहते
1: रहते
0: हैं।
1: हैं।
0: हाँ, लेते रहते हैं, बट ये दवाई भी लंबे देर तक लेना नहीं चाहिए। दूसरा, थोड़े सवाल हम पूछते हैं पेशेंट्स
1: जी
0: को,
1: जी
0: जैसे अगर खाना अटके, जब खाओ खाना अटके तो वो सही नहीं है। मतलब आपको एसिडिटी इतनी होगी कि खाने की पाइप छोटी होगी, तब हमको एंडोस्कोपी से देखना पड़ता है।
1: जी
0: खाना अटकना लगे, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाए, वजन कम हो, या आफ्टर द एज ऑफ 40-50 थोड़ा एज हो गई हो और फिर सडनली न्यू सिम्टम शुरू हो जाए, या खांसी हो रही हो रात भर, तब उस टाइम पे दीज आर व्हाट वी कॉल अलार्म सिम्टम्स। अलार्म सिम्टम्स मतलब ये जब पेशेंट हमको बोलना शुरू करता है, तब हमारे सॉर्ट ऑफ एंटीना ऊपर चढ़ जाते हैं कि ये भी देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। तब हम एक एंडोस्कोपी करके देखते हैं खाने के पाइप में और पेट में कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है।
1: और डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कुछ मरीज को हमने ये भी सुना है कहते हुए कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मैंने सारे टेस्ट करवा लिए और सारे ट्रीटमेंट कर लिए, सारी दवाएं खा ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और मैं तो अभी योगा एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, मतलब ये अमूमन लोग कहते हैं, तो फिर क्या होता है? और कई लोगों ने तो ये भी कुछ एक वायरस, एच पायलोरी नाम का वायरस होता, उसकी भी जाँच नॉर्मल है, फिर क्या?
0: हाँ, तो एक्चुअली एच पायलोरी एक कॉमन इन्फेक्शन है जो पेट के लाइनिंग में रहता है, पर एक्चुअली जिसको एच पायलोरी होता है उसको छाती की एसिडिटी कम होती है, क्योंकि ये जो ऐसा बैक्टीरिया है जो एसिड बनने नहीं देता है। इनफैक्ट अगर हम एंडोस्कोपी एसिडिटी के लिए कर रहे हैं, गर्ड के लिए जिसको बोलते हैं रिफ्लक्स डिजीज, तब हम एच पायलोरी को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। अगर पेट में जलन हो रही है, मतलब छाती में नहीं बोल रहा, खाली पेट में दुख रहा है या पेट में जलन हो रही है, तब हम एंडोस्कोपी करके या कोई स्टूल टेस्ट करके या ब्रेड टेस्ट करके एच पायलोरी को ढूंढते हैं। अगर एच पायलोरी मिले, उसको ट्रीट करें, तो काफी लोगों के पेट के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। बट जस्ट बिकॉज हमको एच पायलोरी मिला डज नॉट मीन के दैट इज द फाइनल प्रॉब्लम। बहुत बार पेशेंट को अगेन सिम्टम्स होते हैं, पेट में जलना, अच्छा नहीं लगना, दर्द करना, पर हमने एंडोस्कोपी कर ली, ब्लड टेस्ट कर लिए, सारा कुछ नॉर्मल है, तो ये बीमारी को हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं। जैसे IBS बोला मैंने पहले, सब टेस्ट कर लिए कुछ नहीं मिला, ये ऊपर के पेट की बीमारी डिस्पेप्सिया। मतलब आपको दर्द हो रहा है, सिम्टम्स हो रहे हैं, मगर सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो उसको हम सिम्टोमेटिकली मैनेज करते हैं। जो तकलीफ है उसकी दवाई दे दो।
1: जी, तो इसका कुछ मतलब, इसका फिर इलाज संभव होता है? इसकी दवा
0: ऑफकोर्स
1: दे
0: इसकी
1: सकते
0: दवा
1: हैं?
0: होती है, तो मोस्ट टाइम्स हम एसिडिटी की दवाइयों से ही शुरू करते हैं। अगर एसिडिटी की दवाई ना हो तो हम सॉर्ट ऑफ पेशेंट को पूछ के ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कोई फूड ट्रिगर होता है, कभी कभी फूड एलर्जीज होती हैं, जैसे एक एक तरह की गेहूं की एलर्जी इंडिया में अभी ज्यादा आ रही है, सीलिएक डिजीज बोलते हैं, जो ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ये स्ट्रेस रिलेटेड भी रहती है, तो वन ऑफ द मेडिसिन वी गिव पेशेंट्स इज स्ट्रेस कम करने की, एंग्जाइटी कम करने की मेडिसिन देते हो, वो लॉन्ग टर्म ले सकते हो। उससे माइंड काम होता है तो पेट काम होता है। माइंड एंड स्टमक आर कनेक्टेड, उसको गट ब्रेन एक्सेस बोलते हैं। अगर पेट ठीक नहीं होगा तो मन ठीक नहीं होता, इसी तरह अगर मन ठीक नहीं हुआ तो पेट ठीक नहीं होगा।
1: दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और
0: करेक्ट।
1: वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब बहुत सारे मन को ठीक करने के लिए कई बार हम संगीत का दामन थाम लेते हैं, तो एक गाना सुनते हैं और यहाँ पर अपने सारे श्रोताओं के मन को ठीक किया जाए।
0: तो एक गाना मुझे बहुत पसंद है, अगेन शाहरुख खान का ही गाना है, छैया छैया।
1: चल छैया छैया। सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, ये बात जो चल रही थी एसिडिटी की, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। मैंने देखा है कि महानगरों में ये समस्या ज़्यादा होती है, छोटे शहरों में जब जाते हैं तो लोगों को हम कम सुनते हैं ऐसा कहते हुए। तो एक तो ये बात बताइए कि ये जो समस्या है एसिडिटी की, कि सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, तो क्या इन बीमारियों के लिए जो दवाएं खाई जाती हैं एसिडिटी की, लोग गोली खा लिए, कुछ लोग तो ये भी ट्राई करते हैं कि 2 दिन के गैप के बाद खा लो ठीक रहेगा, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, ठीक है या नहीं करना चाहिए?
1: हाँ, तो बेसिकली कभी भी हम ये दवाई दें ना, तो हमेशा एंड पॉइंट होना चाहिए कि कब ये दवाई बंद करें। तो मोस्ट टाइम्स हम पेशेंट्स को ये दवाई बंद करने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये समस्या है कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट है वो रेगुलेटेड नहीं है। आप जाके दवाई मांगो, आपको दे देंगे दवाई। तो ये बाहर के मुल्कों में संभव नहीं है, बिकॉज ये दवाइयाँ के साइड इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसिडिटी की दवाई अगर ज़्यादा देर तक लेते रहो तो बोन लॉस होता है, किसी किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। पेट में थोड़ा एसिड तो चाहिए डाइजेशन के लिए, तो कभी कभी पेट के इन्फेक्शन होने के रिस्क भी ज़्यादा रहते हैं। विटामिन, न्यूट्रिएंट्स जो पेट से अब्जॉर्ब होते हैं पेट के आगे से, वो नहीं होंगे, जैसे B12 डेफिशिएंसी हो जाए। कभी कभी आयरन भी कम हो जाता है दवाई लंबे देर तक लेने के लिए। तो रेयरली ये किडनी को भी इफेक्ट करता है। तो ये दवाइयाँ जरूरी हैं। है हमारे काफ़ी ऐसे पेशेंट जो सालों साल लेते हैं, मगर वी हैव टू फाइंड अ वैलिड रीजन कि इनको क्यों चाहिए ये दवाई। जितना हो सके हमको दवाई बंद करनी चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे अपने कहा दवाई दूसरे दिन तीसरे दिन ले लेते हैं, उसको ऑन डिमांड मेडिसिन बोलते हैं, विच इज़ अ प्रॉब्ली अ गुड वे टू डू। कि अगर आपको हमेशा ज़रूरत नहीं तो क्यों लोगे। मैं कई पेशेंट्स को कहता हूँ कि एक बार आपका कोर्स ख़त्म हो जाए, सपोज आपने रात को खाना खाने जाना है, शादी पे जाना है, खाना लेट होने वाला, आपको पता है आपको रात को तकलीफ होगी, तो शादी के जाने के पहले एक गोली लेते हो जाओ।
0: जी।
1: सो दैट इज़ कॉल्ड ऑन डिमांड मेडिसिन, विच इज़ प्रॉब्ली बेटर देन टेकिंग अ मेडिसिन रोज।
0: जी, लेकिन वो आदत न डाल लें, ये गड़बड़
1: करेक्ट,
0: है। और ये एक जो समस्या उल्टी के बारे में, उल्टियाँ होती हैं कुछ मरीज को, फिर रुकती नहीं है उल्टियाँ, तो क्या वो भी इसी वजह से होती हैं? ये किस तरह की बीमारी का द्योतक है?
1: हाँ। अगर कंटिन्यूसली पेशेंट्स को उल्टी होता रहे तो दैट इज अ इंडिकेशन कि हमको एक बार एंडोस्कोपी करके देखना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या
0: जी
1: है।
0: जी
1: इसके कई कारण हो सकते हैं, अगेन माइंड से लेके पेट से लेके। आजकल हम ज़्यादा देखते हैं डायबिटीज़ पेशेंट्स को, जैसे डायबिटीज़ पेशेंट्स को अगर डायबिटीज़ बहुत देर तक हो जाए तो जो मेन नसें होती हैं जो पेट को स्टिमुलेट करती हैं, जब हम खाना खाते हैं तो पेट हिलना शुरू करता है, तो
0: जी
1: डायबिटीज़ पेशेंट को पेट हिलता नहीं है इतना, तो उसको गैस्ट्रोपरीसिस बोलते हैं कि पेट जो खाना खाया है वो पेट में ही रहता है और थोड़ी देर के बाद वॉमिट हो जाती है। अगेन स्ट्रेस से भी हो सकती है, एंग्जाइटी से वॉमिटिंग, किसी किसी को पेट में अल्सर हो सकता है जिसके कारण पेट की जो एंड पॉइंट है जहाँ से खाना इंटेस्टाइन में जाता है वो छोटा हो जाता है, तो खाना उधर अटक के वॉमिट हो जाता है। एंड रेयरली अगर वॉमिटिंग जारी रहे तो वी हैव टू थिंक अबाउट अदर प्रॉब्लम लाइक कैंसर्स ऑफ द इंटेस्टाइन ऑल्सो।
0: तो मतलब किसी भी बीमारी को, मतलब पेट से संबंधित ये जो एसिडिटी की समस्या है, छोटी समस्या लगती है, लेकिन इग्नोर न करें, डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर क्या कहते हैं
1: बिल्कुल।
0: वैसा करें।
2: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक बेटी की यादों में उसके पिता
3: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
2: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
3: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
3: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, यह है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है।

0: कार्यक्रम का पहला गीत आवाज नरेंद्र चंचल की थी। फिल्म का नाम था बॉबी। इस गीत को लिखा था राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में संत मीराबाई का भजन। इसे संगीत में ढाला है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

0: ये स्वर था लता मंगेशकर का और रचना संत मीराबाई की थी।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: बेगम अख्तर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं एक शास्त्रीय रचना। आप सुन रहे हैं इनकी गाई ये कजरी।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं जानी बाबू गव्वाल की आवाज में ये गव्वाली। इसे लिखा है सबा अफगानी ने।
4: ये हुस्न वाले भी कैसा कम...

0: जानी बाबू कव्वाल और उनके हमनवा की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे ये कव्वाली।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं चित्रा सिंह की आवाज में फिल्म साथ साथ की ये गजल। जावेद अख्तर ने इसे लिखा है और धुन बनाई है कुलदीप सिंह ने।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

अभी आप सुन रहे थे शंकर शंभू कव्वाल की आवाज में अमीर खुसरो की ये रचना। और ये आवाज है विशाल मिश्रा की, आप सुन रहे हैं इनका गाया ये गैर फिल्मी गीत।

0: उनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: दिव्या कुमार और अदिति सिंह शर्मा की आवाज में ये पारंपरिक गीत।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब सुनते हैं उस्ताद मेहदी हसन की आवाज में ये राजस्थानी मांड।

केसरिया बालम पधारो मारे देश, राजस्थान की जबान है ये। केसरिया महबूब से मुखातिब है।

सूरज से मैंने समाज होने के सूरज तुम्हें मैं पूजूंगी, भर मोती रहो थाल, मोतियों का थाल भर के मैं पूजूंगी। किस लिए?

0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीक, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और साइबर खतरे तेजी से डिजिटल होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष की नागरिकों की प्रतिबद्धता से उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात

0: उत्पाद बढ़ेगा। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय कथित शिक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 254 अंक गिरकर 76,840 पर, जबकि निफ्टी 90 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज अभिनेता राज बब्बर साहब का जन्मदिन है। हम विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें देते हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और आज इस कार्यक्रम में, यानी यादों की महफिल कार्यक्रम में, हमने राज बब्बर की फिल्मों से ही कुछ गीत आपके लिए चुने हैं।

महेंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाजों में अभी आपने फिल्म निकाह का ये गीत सुना। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज, फिल्म का नाम याराना, गीत रचना रानी मलिक की और धुन अनु मलिक की है।

0: कविता कृष्णमूर्ति की आवाज थी और फिल्म का नाम था याराना।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और आइए अब सुनते हैं जगजीत सिंह के संगीत निर्देशन में इंदिवर का लिखा गीत, युगल स्वर सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की, फिल्म का नाम है प्रेम गीत।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं वर्मा मलिक के बोल, उत्तम जगदीश का संगीत, फिल्म का नाम है वारिस और गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह।

0: नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना, तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: महेंद्र कपूर की आवाज, फिल्म का नाम आज की आवाज, गीतकार हसन कमाल, संगीतकार हैं रवि।

0: वाह प्रभात, वाह
1: बहुत बड़ी तालियां उनके लिए,
0: मजा आ गया, कमाल कर दिया,
2: थैंक यू। यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सुनिए निदा फाजली की रचना, मनहर उदास की आवाज, उषा खन्ना का संगीत और फिल्म का नाम आप तू ऐसे ना थे।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जुगल किशोर तिलक राज की संगीत निर्देशन में लीजिए हम आपको सुनवाते हैं एमजी हशमत का लिखा गीत, युगल स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के। ये फिल्म है भीगी पलकें।

0: जाने माने लेखक हरिशंकर राठी आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ निफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निफेड किसानों की सेवा कर रहा है।
1: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स डॉट इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
2: They all constitute an important threat for us.
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को एसआईटी का गठन किया था।

0: manipulation case. The ED said the action is based on an FIR registered by the Central Crime Branch in the year 2017. It added that the police had filed a charge sheet in the case in 2021. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% lower in afternoon trade today. The Sensex lost 525 points to 76,570, while the Nifty shed 172 points to 23,931 when reports last came in. Sectorally, metal, IT and banking stocks led the declines, while pharma and healthcare stocks witnessed buying interest. In football, FIFA World Cup, Algeria thrashed debutants Jordan 2-1 in a Group J encounter in Santa Clara, USA today. In another match, Norway defeated Senegal 3-2 in their Group I clash today at the New York Stadium and sealed their progress into the round of 32. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पटना में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से की मुलाकात, दोनों राज्यों के वित्त प्रबंधन पर हुई चर्चा। पश्चिमी सिंहभूम के एफसीआई गोदाम में लाखों का नमक बर्बाद होने पर मंत्री दीपक बिरुआ सख्त, उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश। भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने के लिए रांची में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट की राज्य स्तरीय बैठक, अब अधिकतम दो ही केंद्रों पर सेवा दे सकेंगे अल्ट्रासाउंड डॉक्टर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर झारखंड समेत पूरा देश कर रहा है नमन, केंद्रीय मंत्रियों अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। और रांची में विश्व ओलंपिक दिवस पर खेलोत्सव का आयोजन, एशिया कप हॉकी में मेडल जीतने वाली झारखंड की चार बेटियां सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज दो पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आज झारखंड के लिए गौरव का क्षण है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और दिग्गज आदिवासी नेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन को आज नई दिल्ली में मरणोपरांत देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यह सम्मान प्रदान करेंगी। शिबू सोरेन की ओर से उनकी पत्नी रूपी सोरेन इस सर्वोच्च पुरस्कार को ग्रहण करेंगी। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पटना में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर हुई इस बैठक में दोनों राज्यों के वित्तीय प्रबंधन और विकास पर चर्चा हुई। बैठक में बिहार के विभाजन के बाद के बजटीय अनुभवों पर भी सकारात्मक बातचीत हुई। झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति ने धनबाद सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। समिति के सभापति सरयू राय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया। सभापति ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से आम लोगों तक पहुंचाया जाए।
3: प्रशासन का जो काम हो रहा है वो नियम के अनुसार हो रहा है या नियम का उल्लंघन करके हो रहा है, तो इस बारे में हम लोगों ने जनहित के

0: नियम है, जैसे सेवा की गारंटी का अधिकार अधिनियम है, शिक्षा अधिनियम है, जन सूचना अधिकार अधिनियम है, इसके बारे में उन्होंने बात किया।
1: पश्चिमी सिंहभूम जिले में भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के गोदाम में लापरवाही के कारण लाखों रुपए मूल्य का नमक बर्बाद होने का गंभीर मामला सामने आया है। राज्य के कैबिनेट मंत्री दीपक बिरुआ ने इस पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि सरकारी संपत्ति की बर्बादी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। राज्य में बेटियों को बचाने और अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने के लिए रांची में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत राज्य स्तरीय बैठक हुई। इसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों और डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया गया। नए निर्देशों के तहत कोई भी चिकित्सक अब अधिकतम दो ही अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर अपनी सेवाएं दे सकेंगे। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार, एक सैंडल, एटीआईआर न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल एटीआईआर न्यूज अंडरस्कोर रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और महान शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आज देश उन्हें नमन कर रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सीआईपी रांची ने खूंटी जिले में मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या जोखिम प्रबंधन पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। आईसीएसएसआर वित्त पोषित इस परियोजना का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों के स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता बढ़ाना है, ताकि वे शुरुआती स्तर पर आत्महत्या के जोखिम की पहचान कर सकें। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ श्रावणी मेला महोत्सव में इस वर्ष श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक विशेष तकनीक का उपयोग किया जाएगा। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों द्वारा विकसित एक ई एम्बुलेंस मेले में बीमार और घायल कांवरियों का सहारा बनेगी। दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने छात्रों के इस उपयोगी नवाचार की सराहना की है।
2: दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में एक सेंटर फॉर ईवी व्हीकल्स, उसका यहाँ पे बच्चों के प्रोजेक्ट्स और बच्चों के जो अच्छे इनोवेशन था उसका एक कलेक्शन के साथ इसकी आज शुरुआत की गई और बहुत अच्छा देख के लगा कि कुछ अच्छे इनोवेशन का शुरुआत की गई।
1: रांची पुलिस के एसआईटी ने हिंदपीढ़ी, सुखदेव नगर और कोतवाली क्षेत्रों में छापेमारी कर ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री में शामिल 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि इनके पास से लगभग 28 ग्राम ब्राउन शुगर, नकदी और वाहन जब्त किए गए हैं।
3: रांची पुलिस की टीम के द्वारा लगातार अभियान भी चलाया गया है। इसी क्रम में अलग अलग 3 जगह से ब्राउन शुगर रेड्स की गई हैं। उस टोटल 5 लोगों को रांची पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। हिंदपीढ़ी थाना अंतर्गत इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र से 1 व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। लगभग 18 ग्राम जो है ब्राउन शुगर रिकवर किया गया।
1: आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के मुख्य इंडेक्स में थोड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 254 अंक गिरकर 76,840 पर आ गया, जबकि निफ्टी 90 अंक गिरकर 24,013 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,42,000 रुपये प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। राज्य में मॉनसून की सक्रियता बढ़ने से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। तेज हवाओं की चेतावनी को देखते हुए विभाग ने पलामू प्रमंडल सहित 14 जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। राजधानी रांची में विश्व ओलंपिक दिवस पर खेल उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजित मैराथन दौड़ में पुरुष वर्ग से भारतीय सेना के गुरुलाल सिंह और महिला वर्ग से ममता कुमारी विजेता बनी। मुख्य अतिथि और पूर्व ओलंपियन मनोहर टोपनो ने ओमान में अंडर

0: रेटिंग एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीतकर लौटी झारखंड की चार प्रतिभावान खिलाड़ियों नीलम टपनो, खोली कुमारी, सुगम सांगा, श्रुति कुमारी और उनकी कोच करुणा पूर्ति को विशेष रूप से सम्मानित किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पटना में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से की मुलाकात, दोनों राज्यों के वित्तीय प्रबंधन पर हुई चर्चा। पश्चिमी सिंहभूम के एफसीआई गोदाम में लाखों का नमक बर्बाद होने पर मंत्री दीपक बिरुआ सख्त, उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश। भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने के लिए रांची में पीसीएनपीएनडीटी एक्ट की राज्य स्तरीय बैठक, अब अधिकतम दो ही केंद्रों पर सेवा दे सकेंगे अल्ट्रासाउंड डॉक्टर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके पुण्यतिथि पर झारखंड समेत पूरा देश कर रहा है नमन, केंद्रीय मंत्रियों अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। और रांची में विश्व ओलंपिक दिवस पर खेलोत्सव का आयोजन, एशिया कप हॉकी में मेडल जीतने वाली झारखंड की चार बेटियां सम्मानित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: साथ थे छतरी के साथ और चाय की टपरी आई और आप अचानक रुक गए और चाय पीने लगे। ऐसे किस्से भी आपकी जिंदगी में होंगे बहुत सारे, तो उन किस्सों को हमारे साथ साझा कीजिए ना। और हाँ, आपने किन किन गानों में छतरी को देखा है बताइएगा। कहीं भी जरूरी नहीं है कि वहां बारिश ही हो रही हो, लेकिन छतरी को दर्शाया गया है उन गानों में। चाहे थोड़ा सा कहीं एक कोने में आपने देखा होगा कि दूर बहुत सारी लड़कियां छतरियां लेती हुई जा रही हैं, इस तरह के भी दृश्य फिल्मों में दिखाए जाते हैं और आगे नायक नायिका अपनी बात कह रहे होते हैं। तो कोई भी गाना जो आपको याद हो कम से कम शब्दों में हमें लिख भेजिए जहां छतरी का इस्तेमाल किया गया है। हम तो सुनाई नहीं, वैसे एक खुशी की बात यह है कि जैसे ही हमने आपको छतरी का क्लू दिया आपने सभी गाने लिख दिए धड़ाधड़ धड़ाधड़। और हमारे एक श्रोता के गाने तो हमारे से बहुत ज्यादा मिल भी रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं कि आपकी और हमारी पसंद, आपकी और हमारी प्लेलिस्ट मिलने लगी है थोड़ा थोड़ा। आगे बढ़ते हैं सुनीले सफर में, वही देखते हैं आगे मौसम कैसा है। गीता दत्त और मोहम्मद रफी साहब हैं काला बाजार में, शैलेंद्र की रचना है और सचिन देव बर्मन की धुन है।

हमारे श्रोता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस वर्ष बारिश कम होने के आसार हैं और यदि होगी भी तो जलते तवे रूपी धरती पर पानी के छींटों के समान होगी। वैसे भी इस वर्ष पहले के वर्षों की अपेक्षा कुछ बारिश कम होने की भविष्यवाणी भी की गई है। नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, आशा रखिए, विश्वास रखिए, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप निराशा के बादल अपने आसपास मंडरा ले। आपको आशा रखनी है और निराशा बिल्कुल नहीं रखनी है। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर हर साल नई छतरी खरीदनी पड़ती है, कहीं भी जाते हैं तो भूल जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म श्री 420 का जो गीत आपने सुनवाया, इस फिल्म का राज कपूर और नरगिस जी का छाता लिए पोस्टर बहुत ही प्रचलित हुआ था और ये पोस्टर हमने अपनी दुकान में लगवा लिया था। क्या बात है।

एक श्रोता ने लिखा है कि राज कपूर और नरगिस की वो आइकॉनिक छत्री प्यार हुआ इकरार हुआ वाले गीत की आज भी हर उस दिल की धड़कन है जो पहली बार मोहब्बत के दरिया में उतरता है। वो छत्री धूप छांव से बचाने का कवच नहीं बल्कि दुनिया की नजरों से दूर अपना एक छोटा सा मुकम्मल संसार बसाने का जरिया बन जाती है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर के सभी श्रोता प्रेमियों को नमस्कार है और उत्तर भारत तो अभी तक तप रहा है यद्यपि मानसून ने दस्तक दे दी है छिटपुट बारिश करके और आज के गीत भी बारिश वाले ही होंगे तो बरसात से भीगने से बचने के लिए छतरी जरूरी है। बिल्कुल आपने कुछ गीतों का जिक्र भी किया है और यकीनन आपकी कुछ गीत हमारे गीतों से हमारी पसंद के गीतों से मिलते हैं। शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश में नायक नायिका छतरी पकड़कर गाते हुए प्यार का इजहार करते हुए सुंदर दृश्य ऐसे गीत आज सुरीला सफर में है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश रोमांस और छाती के संगम को दर्शाती आज की छोटी सुंदर सी इबारत है। फिल्मों में बारिश हमेशा से प्रेम और भावनाओं का खूबसूरत प्रतीक रही है। रिमझिम फुहारों के बीच फिल्माई दृश्यों में छाता केवल बारिश से बचने का साधन नहीं बल्कि दो दिलों को करीब लाने वाला एक प्यारा सा माध्यम बना है और बारिश में छाती के साथ फिल्माए गए अनेकों रोमांटिक फिल्मी गाने हैं। प्यार हुआ इकरार हुआ जैसा कि आपने बताया और बहुत सारी गीतों का जिक्र आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि नित नई प्रायोगिक प्रयास में प्रयासरत जोशी साहिबा अच्छा मैं की नई अन्वेषण छतरी वाला गीत संगीत हम श्रोताओं को एक नई ऊर्जा और दिशा दे रहा है। बारिश की फुहार हो या प्रेमी दिल शांत बैठे संभव नहीं, यहाँ उल्लेखनीय विषय होती है छतरी एक और प्रेमी युगल और दोनों एक दूसरे को भीगने से रक्षा की दिखावे की कोशिश करते हैं परंतु दोनों के दिल से एक ही आवाज निकलती है चलो इस प्रेम रस में सराबोर हो भीग लिया जाए। मौसम अनुकूल विषय वस्तु पर आधारित इस सफर में हम श्रोता भी संगीत रस में भीगने की तमन्ना रखते हैं। बहुत सुंदर लिखा है आपने, शुक्रिया। आइए आगे चलते हैं, थोड़ा और भीगते हैं, छतरी रख लीजिएगा इस सफर में, ध्यान रखिएगा। हाँ, SD बर्मन का संगीत है इस बार, साहिर लुधियानवी के बोल हैं, गीता दत्त और साथियों की आवाजें, फिल्म का नाम है बाजी। हाँ, ये गाना भी आपकी प्लेलिस्ट में शामिल था, है ना, शामिल है ना।

टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप, कितना प्यारा गीत है ना। और हमारे मन का जो आंगन है उसमें भी बरसात हो जाती है इस तरह के गीत सुनने के बाद। तो मैंने आपसे पूछा था कि आपके शहर में बरसात हो रही है या नहीं, या आसपास हुई या नहीं, या कोई आसार नजर आ रहे हैं कि नहीं, आप बताइए ना। अपने शहर का नाम भी लिखिए ताकि हमें पता चले कि आपके शहर कौन सा है और कहाँ बारिश हो रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि खंडवा शहर में कल शाम को आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई है, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है लेकिन शहर में कई जगह पेड़ गिर गए हैं। अच्छा, इतनी तेज बारिश हुई थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे गांव कल रात बरसात के दूसरे नक्षत्र के पहले दिन रात भर बारिश हुई। इधर गोंदिया में बेटी के यहां 10-15 मिनट बारिश हुई और अब धूप है। अच्छा, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि राजा महाराजाओं और संभ्रांत लोगों को धूप से बचाने के लिए कुछ विशेष रंग बिरंगी छतरियां लेकर लोग साथ चलते हैं। बिल्कुल सही कहा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहां तो अभी बारिश थोड़ी सी बूंदे आई हैं, देखते हैं हमारे शहर में कब कब भीगता है इस तेज बारिश में। बिल्कुल भीगेगा, थोड़ा सा उम्मीद रखिए और बताइए अपने शहर के बारे में कि आप कौन से शहर से लिख रहे हैं और वहाँ बारिश हुई कि नहीं। और छतरी से जुड़ी कुछ यादें आपको लिखनी है कि आपके जीवन में छतरी का क्या योगदान रहा है और कौन से गीत हैं वो जो आपको पसंद है उनके बारे में हमें बताइए, अच्छा लगेगा। एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश और प्रणय का मोहक रिश्ता सदियों से चला आया है। महाकवि कालिदास के मेघदूत इस खंड काव्य में भी ये नाता दिखाई देता है। क्या बात है, हिंदी फिल्मों में भी बरसात और अनुराग भरा श्रृंगार हमेशा दिखाई देता है जो युवा दिलों को बेसुध बना देता है और आत्मिक आनंद देता है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि छाता और प्यार का नाता दिखाने वाले बहुत सारे गीत हैं। बिल्कुल, हमने आपके गीत पढ़े देखे हैं और बहुत सारे गीत हमारे गीतों से मिल रहे हैं, बधाइयां आपको बहुत बहुत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप ही हैं जो बिना इबारत के सुरीला सफर प्रस्तुत कर रही हैं जबकि बाकी लोग अभी भी इबारत का सहारा ले रहे हैं, जबकि बिना इबारत के कार्यक्रम का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। क्या आज छतरी वाले गाने ढूंढने में श्रोताओं की भागीदारी नहीं रहेगी बल्कि और भी बढ़ जाएगी और उनके और आपके बजाए हुए गीत ज्यादा मेल खाएंगे। आपको कुछ बातें कुछ गीत की वापसी कराने की बधाई। देखिए, हम आपको एक बात कहना चाहेंगे, आपने जो बात लिखी है पिछली बार भी आपने यही कुछ लिखा था, जो बात मैंने लिखी है चार लाइनों में वो इबारत ही है। इबारत का कोई फिक्स तरीका नहीं है कि ये इसी तरह से सेट डिजाइन नहीं है कि इसी तरह का लिखा हुआ इबारत होता है। जो बात मैंने लिखी कि भई दशकों तक मुख्यधारा के हिंदी फिल्मों में गीतों के माध्यम से बारिश के साथ रोमांस किया गया है, तो ये एक इबारत ही है जो मैंने अपने तरीके से लिखी ताकि श्रोताओं को ज्यादा से ज्यादा इबारत समझ आए और वो गीतों से जुड़े। तो ये कार्यक्रम सुरीला सफर ही है और हमारा उद्देश्य इस वक्त आपका मनोरंजन करना सुरीला सफर के माध्यम से है। तो आप इसी इबारत को पढ़िए और समझिए कि इबारत के कई रूप हो सकते हैं। एक ही तरह की सेट पैटर्न पर कोई इबारत नहीं लिखी जा सकती। हाँ, रही बात शब्दों की, तो मैंने आपको क्लू दे दिया कि हमने आज छतरी मैं ये भी लिख सकती थी कि बे आज कुछ ऐसे गीत है जहां इस इबारत से आप समझिए, लेकिन मैंने आपकी बात को थोड़ा सा सरल बना दिया ताकि आप गीतों को अच्छे ढंग से ढूंढ पाएं और आपको भी खुशी हो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में बारिश हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती थी, अब बड़े हो गए हैं लेकिन अब इतना अच्छा नहीं लगता। अरे एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश, एक छतरी और रोमांस, ये तो अपने आप में ही एक मुकम्मल कविता है। सच में जब आसमान से रिमझिम फुहारें बरस रही हों और एक छोटी सी छतरी के नीचे दो लोग सिमट कर चल रहे हों तो उस पल का जादू कुछ अलग होता है। वो हल्की सी नजदीकी, एक ही छतरी में खुद को बारिश से बचाने की कोशिश दो अनजाने लोगों को एक दूसरे के करीब ले आती है। इसी खूबसूरत मंजर को फिल्मों में रूमानी परिकल्पना के साथ परिभाषित किया जाता है जिसमें आज सुरीला सफर में हमें ये गाने सुनने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, चलिए अगला गीत सुनते हैं। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, कमर जलालाबादी के बोल हैं, आवाज मुकेश की और फिल्म का नाम है छलिया।

जी एक श्रोता लिखते हैं कि भगवान महावीर की जन्मस्थली और भगवान बुद्ध की कर्मस्थली वैशाली बिहार में प्रचंड गर्मी है, दूर दूर तक काले काले बादलों का कोई अता पता नहीं है दीदी। चलिए तो सुरीले सफर के इस सफर में आ जाइए ना हमारे साथ, थोड़ा बहुत तो आपको आनंद आएगा ही इन बारिश इन फुहारों का, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब से विविध भारती उद्घोषकों ने, जिसमें आप भी हैं, बारिश के गाने सुनाने शुरू किए हैं, बादल मजबूर होकर मेरे शहर इंदौर में बरसने लगे हैं, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे जिले

ले सागर मध्य प्रदेश की में इस रैली में इस सीजन की पहली बारिश परसों हुई थी। इस समय तो तेज धूप निकली है, चलिए बारिश की शुरुआत तो हुई। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर अजमेर में अभी तेज धूप है, तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है, कुछ दिन पहले बारिश हुई थी। अच्छा, वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे भोपाल शहर में रिमझिम बारिश हो रही है, पर हमने आज गीत तो एक भी नहीं लिखा, जबकि गीतों से प्यार तो हमें ज्यादा है। पता है क्यों नहीं लिखे गीत? क्योंकि आज हम आपकी पसंद के गीत सुनने वाले हैं। बहुत सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे डूंगरपुर में भी बारिश बहुत कम हुई है, और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ग्रेटर नोएडा में बरखा रानी की प्रतीक्षा है, अभी भी लू चल रही है। बहुत सुंदर। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके शहर में जल्द ही बारिश आए, लेकिन हाँ, अगर आप अभी गर्मी से परेशान हैं तो सुरीले सफर में निकल जाइए ना हमारे साथ। हम तो आपसे पूछ ही रहे कि सुरीले सफर में आप हमारे साथ हैं कि नहीं, छतरी को साथ। छतरी भी होनी चाहिए। चलिए तो सुरीले सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओपी नैयर का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, गीता दत्त और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेज 55।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बारिश के गानों से हम सभी बोर हो रहे हैं। फिर आपने लिखा है बहुत बढ़िया जी, बात समझ में नहीं आई कि जब बोर हो रहे हैं तो फिर बढ़िया क्या लगा आपको, और हमने तो कहा ही नहीं कि बारिश के गाने हैं, हमने तो आज उन गानों को इस कार्यक्रम में शामिल किया है जिनमें छतरी का इस्तेमाल किया गया है। हो सकता है कुछ गीत ऐसे भी हों इसमें जहाँ बारिश नहीं हो रही थी लेकिन छतरी थी। अभी अगला गीत आप सुनने वाले हैं उसमें कहीं आपको बारिश नजर नहीं आएगी, ना उन बोलों में गीतों के और ना कहीं उस परिदृश्य में, लेकिन हाँ जो गायिका या जो नायिका उस गीत को फिल्मा रही हैं, गा रही हैं, वहां पर छतरियों का इस्तेमाल किया गया है। चलिए तो आपके विचारों को हम क्या माने, आप बोर हो रहे हैं और बढ़िया क्या लग रहा है थोड़ा स्पष्ट लिखें। एक श्रोता लिखते हैं कि आज मेरी कविता की दो पंक्तियां बोल दीजिए आप प्लीज। क्या लिखा है आपने, सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूँ। अच्छा, तो आप थोड़ी लंबी कविता लिखिए, वैसे तो आपने बहुत गहरी बात लिख दी है। अगर आप लिखते हैं तो हमारे कार्यक्रम से जुड़ी कुछ पंक्तियां लिखिए ताकि हम उसको शामिल कर सकें। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये वर्ष अलनीनो से प्रभावित है, ये एक मानसून से जुड़ा वैज्ञानिक शब्द है जो विश्वव्यापी वातावरण के संदर्भ में है। जब वातावरण इसके प्रभाव में रहता है तब उस वर्ष वर्षा बहुत कम होती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, हमारे एक श्रोता और भी आगे लिख रहे हैं इसी बात को कि ग्लोबल वार्मिंग के दंश को ये आशा और विश्वास ही तो झेलने की शक्ति प्रदान करता है। इसके जिम्मेदार बहुत हद तक हम इंसान भी तो हैं जिन्होंने प्रकृति का दोहन किया है, तो हमें अपने अंदर भी झांकना होगा कि आज समय पर बारिश क्यों नहीं हो रही है, या समय पर सर्दी क्यों नहीं आती है, समय पर गर्मी क्यों नहीं होती है। इसका कारण हम इंसान बहुत बड़ा एक कारण है जिन्होंने प्रकृति का नाजायज फायदा उठाया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गुजरात में मेरे शहर बड़ोदरा में बारिश को लेकर अभी तक मुंबई जैसा ही हाल है, मैं कल ही मुंबई आई हूं। अच्छा, एक श्रोता का लिखना है कि हमारे यहाँ सूरत में कल सुबह हल्की सी बारिश हुई, उसके बाद लग रहा है कि लंबी छुट्टी पर चली गई, वो आए न आए सुरीले सफर में बरसाती गीतों की फुहारों में हम भीग रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल बारिश आएगी आपके शहर में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं अब तक कई छाते कहीं रखकर भूल आया हूं और वो कहीं मिले नहीं, इसलिए अब कहीं भी छाता लेकर नहीं जाता। अरे तो बारिश आएगी, भीग जाएंगे, याद रखिए, अपनी याददाश्त को थोड़ा बनाए रखिए भाई। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम जब छोटे थे तब मेरे पापा हम सब भाई बहन के छाते पर ऑयल पेंट से अपने यानी हमारे नाम लिख देते थे ताकि स्कूल में उसे बदला ना जाए, तार के ज्वाइंट में ऑयलिंग तो खुद ही कर देते थे। हाँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बच्चे लोग अक्सर स्कूलों में जो अपनी मैट है, अपने छाते हैं या अपनी पानी की बोतल है, टिफिन है, भूल जाते हैं तो माता पिता परेशान हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में अक्सर ऐसा होता था जब पापा जी ने हमें वर्षा ऋतु में विद्यालय पहुंचाने या विद्यालय से लेने आए थे और छाता खोलते ही वो उल्टा हो जाता था, तेज हवा में हवा की विपरीत दिशा में चलने के कारण हम भीगते थे और पापा जी भी हंसते थे। बिल्कुल यही जिंदगी है, और इसी तरह हमारी जिंदगी में भी होता है कि हम बहुत कुछ अपने साथ लेकर चलते हैं और इस उम्मीद के साथ कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन अचानक कुछ उल्टा हो जाता है, लेकिन उसमें भी हमें आनंद ढूंढ लेना चाहिए। अगला गीत ऐसा ही है जहां बारिश नहीं हो रही है और इन बोलों में भी बारिश नहीं है लेकिन छतरियों का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म का नाम है समाधि, लता मंगेशकर और अमीर बाई कर्नाटकी की आवाजें हैं, राजेंद्र कृष्ण की रचना, सी रामचंद्र का संगीत।

जी हमारे श्रोता लगातार अपनी बात लिख रहे हैं। एक श्रोता का कहना है कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और हम सभी संगीत रस से भीगते हुए शानदार सफर कर रहे हैं। बिल्कुल यही हम चाहते थे कि आप इस सफर में मेरे साथ हैं कि नहीं। हालांकि आप लोगों ने लिखा है कि नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप इस सफर में मेरे साथ आए हैं कि नहीं लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस सफर में मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर धार MP में हल्की फुहारों के साथ बारिश हो रही है और छतरी से याद आया कि पिछले वर्ष हमारी छतरी ले गया था और आज ही नहीं लानी पड़ेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि छत्रपति संभाजी नगर से पुणे रेड बस ट्रेवल्स में ट्रेवल कर रहा था। पुणे आने पर मैंने केवल अपनी बैग उठाई और स्टॉप पर उतर गया। घर आने पर याद आया कि छतरी बस में ही भूल गया हूँ। भाई क्या बात है, ऐसे क्यों करते हैं, छतरी भूल जाते हैं। वही एक श्रोता ने लिखा है कि सोलापुर महाराष्ट्र से जैसे ही विविध भारती पर सुरीला सफर प्रोग्राम चालू हुआ तुरंत बरसात की बूंदें गिरने लगी। अच्छा, और एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो ही पूछा कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है तो आसमान में बादलों ने दिवाकर को अपनी हिरासत में ले लिया आग बरसाने के जुर्म में। क्या बात है, क्या बात है, जुर्म इतना बड़ा था सूर्य देवता का कि बादलों ने उन्हें अपनी ओट में ले ही लिया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई। ये गाना देवानंद और आशा पारिक के साथ फिल्माया गया है। बारिश नहीं है गाने में लेकिन बहुत सारी सहेलियां रंग बिरंगी छतरियां लेकर गाती हैं। पार्श्व में कल्याण जी आनंद जी का मधुर संगीत और मेरा पसंदीदा गाना है। तो चलिए आपका पसंदीदा गाना हम आपको सुनवाते हैं फिल्म महल से। किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में, आनंद बख्शी की रचना, कल्याण जी आनंद जी की धुन।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज आप आई हैं, रिमझिम बारिश हमारे यहाँ चल रही है। ये कल तो गजब की बारिश हुई थी, बहुत ज्यादा तेज हवा, आंधी और बादल गरजे थे और बिजली भी खूब चमकी थी। इतनी तेज बरसात 2 घंटे हुई खंडवा शहर में और ठंडक हो गई, मजा आ गया, बहुत बहुत बधाई आपको। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ तो मई के मध्य से लेकर 22 जून तक तकरीबन 20 बार हल्की से मध्यम बारिश हो चुकी है। अभी 20 जून को भी हमारे यहाँ 1.5 घंटे तक लगातार तेज बारिश हुई, यानी राजस्थान हमीरगढ़ बात आप कर रहे हैं। बहुत सुंदर, अच्छी बात है ना कि राजस्थान में बारिश हो रही है कहीं कहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में छतरी लेकर हम साथ चल रहे हैं, पर बारिश नहीं धूप से बचकर, क्योंकि हमारे यहाँ चटक धूप है। अच्छा, एक श्रोता लिखते हैं कि नहीं मंदाकिनी जी, छतरी लेकर तो हम साथ नहीं आए, हाँ संदेशों के साथ जरूर आए हैं, बातों और संदेशों के साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले गर्मियां शुरू होते ही छतरी बनाने वाले मोहल्ले में छतरी की रिपेयरिंग के लिए आते थे, पर अब वो दिखाई नहीं देते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अगर अचानक छतरी नहीं हो और भीगने का मजा खूब आ जाता है। वहीं एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि खूब पेड़ लगाइए, ये बारिश भी आएगी और धूप भी छाते की तरह सुरक्षा देगी, मतलब पेड़ आपको सुरक्षा देंगे, इसलिए खूब ज्यादा पेड़ लगाइए, ठंडी छाव मिलेगी, बहुत सुंदर। वहीं लास्ट में अंत में एक श्रोता लिखते हैं कि आपके साथ छाते में चलते चलते हर्ष उत्साह की छींटे झेलते झेलते सुरीला सफर कैसे संपन्न हुआ पता ही नहीं चला, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गीत अंतिम गीत के रूप में आपके साथ। Thank you.

ये गजल थी और सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से पहले मिड डे न्यूज, उसके बाद दोपहर समाचार।

0: Enforcement Directorate conducts searches at 18 places in Tamil Nadu in connection with alleged teacher recruitment exam manipulation case. Lionel Messi becomes the highest goal scorer in FIFA World Cup history, leads Argentina into knockout stage, and in hockey, India to face Pakistan in opening match of FIH Pro League in London today. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी, पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी

0: कार्यक्रम आज एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
2: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
0: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
2: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
2: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
4: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं, और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे।

0: सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा हैं।
1: दे ऑल कंस्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट थ्रेट्स फॉर अस।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: घटनास्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
4: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। फौजी भाइयों को समर्पित कार्यक्रम जय भारती हम लेकर आ रहे हैं बस थोड़ी ही देर में।
6: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा।
7: प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है।

गली न दबा छुपने वाले सामने आ चुप चुप के मेरा जी न जला सूरज से किरण बादल से पवन सब तलक छुपेगी ये तो बता छुप

0: है तो बता, छुपने वाले सामने आ।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने फिल्म तुमसा नहीं देखा का गीत सुना। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे ओपी नैयर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: आशा भोसले और साथियों को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था सती परीक्षा। गीतकार थे नजामी और धुन बनाई थी सम्मुख बाबू ने।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम में अब सुनिए चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की बोल, युगल स्वर लता मंगेशकर और मन्ना डे की। फिल्म का नाम साक्षी गोपाल।

इस गीत के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया फिल्म रानी रूपमती का गीत। बोल पंडित भरत व्यास के हैं और संगीत SN त्रिपाठी का है।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में लीजिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए, स्वर लता मंगेशकर का, और ये फिल्म है पेइंग गेस्ट।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म नया दौर से हमने लिया है। इसे आवाज दी है आशा भोंसले ने, गीतकार साहिर लुधियानवी हैं और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

0: प्रादेशिक समाचार नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को आज नई दिल्ली में मरणोपरांत देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। राष्ट्रपति ने शिबू सोरेन की ओर से उनकी पत्नी रूपी सोरेन इस सर्वोच्च पुरस्कार को ग्रहण करेंगी। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वोटर मैपिंग का दूसरा और अंतिम सत्र 30 जून से शुरू होगा। इस सिलसिले में बीएलओ और बीएलओ प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज देवघर के मधुपुर में प्रशिक्षण का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बताया। श्री कुमार ने एसआईआर के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की और कहा कि कोई भी पात्र न छूटे और कोई अपात्र मतदाता सूची में शामिल न हो, इस पर आयोग का जोर है। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद राज्य में 7 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। नई दिल्ली स्थित अटल अक्षय ऊर्जा भवन में आज नाफेड के नीलामी पोर्टल nefex.in का शुभारंभ हुआ। इस दौरान केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। श्री शाह ने बताया कि हाल के वर्षों में नाफेड का मुनाफा बढ़ा है। श्री शाह ने कहा कि सरकार का प्रयास खेत से किसान के खाते तक सभी व्यवस्थाओं को डिजिटल करने की ओर है। उन्होंने बिचौलियों पर अंकुश लगाने पर बल देते हुए दलहन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर जोर दिया
1: कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: भारतीय जनसंघ के संस्थापक और महान शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आज देश उन्हें नमन कर रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई राजनेताओं ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इधर राजधानी रांची में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू समेत अन्य नेताओं ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को याद किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने झारखंड के 11 विशिष्ट उत्पादों को जीआई टैग की मंजूरी दी है। हजारीबाग के सोहराय कला के बाद अब डोकरा आर्ट को भी जीआई टैग मिला है। डोकरा आर्ट के पर्यवेक्षक शिशुपाल चंदेलिया ने इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है।
2: लाभ तो आर्टिजन को होना ही होना है, जाहिर सी बात है कि जब जीआई टैग मिल गया तो देश विदेशों तक हमारे इस क्राफ्ट की पहचान जाएगी। आर्टिजन को लग रहा है कि नहीं, हाँ अब जीआई टैग मिल गया है तो अब प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, हमारा डिमांड आएगी तो न और हमें ज्यादा आई होगी इसकी, डोकरा क्राफ्ट और ऊपर जाएगा।
0: सरायकेला खरसावां जिले के कांडरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी लंबे समय से एक डकैती मामले में फरार चल रहा था। थाना प्रभारी विनोद मुर्मू ने बताया कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। देवघर पुलिस ने सारठ थाना क्षेत्र से एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर के पास से करीब 1.5 किलोग्राम गांजा, दोपहिया वाहन और मोबाइल बरामद किया गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले रोशन थापा को लोक भवन में सम्मानित किया। रोशन थापा ने इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में परंपरागत व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश और राज्य का मान बढ़ाया था। लोक भवन

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान
2: सखी सहेली।

0: सखी सहेली
1: हाँ, तो अब आज हमारे सामने बैठी हैं मंजरी जी। तो मंजरी जी, आपको मेरा नमस्कार और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
2: आरती, तुम्हें और सुनने वाली सभी सखियों और सगा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ आरती है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और देखो बहुत सारी बातें भी हैं। तो हमारी जो आज के विषय है वो पहले बता देते हैं आरती, कि हल्की फुल्की बातें, घर में आंगन क्यों था जरूरी।
1: बिल्कुल, आज हम घर आंगन को लेकर आए हैं
2: जी, और सखी सहेली के आंगन में लेकर आए हैं। तो सब लोग, हमारे साथी लोग, सखिया लोग जुट गए हैं। तो अगला विषय क्या है आरती?
1: बिल्कुल, अगला विषय है हमारा सखी विशेष के अंतर्गत हम लेकर आए हैं आज अश्विनी अशोकन जी को, जो कि सह संस्थापक हैं मैड स्ट्रीट डेन की जी। और साथ ही हम बात करेंगे मुहावरों की दुनिया में क्या होता है, वो जो बहुत ज्यादा गलत काम होता है जी, वो है आग में घी डालना।
2: घी डालना, तो इस पर सब लोग अपने अपने विचार डालें और कैसा अनुभव रहा है उसके बारे में बताएं,
1: और इस मुहावरे का उनके लिए क्या अर्थ है वो बताएं हमें, और साथ ही आंगन के विषय में बताएं उनका आंगन घर का कैसा था,
2: कैसा था,
1: कैसे खेलते थे वो अपने आंगन में।
2: और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जरूरी एप्लीकेशन, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यानी बड़े प्यारे से विषय है आरती लेकर आई हो तुम, तो हम लोग इन पर बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले गीत
1: सुन लेते हैं।

0: तो आरती देखो कितना प्यारा सा गीत तुमने सुनाया, बड़ा अच्छा लगा। काली पलक पिया तोरी वाला
1: बिल्कुल,
0: भी।
1: और चोरी ना हो और हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो
0: जी जी
1: अच्छे तरीके से रह सकें, इसके लिए हम कुछ नया लेकर आए हैं।
0: हाँ
1: वो
0: बताइए।
1: लेकर आए हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ ज़रूरी एप्लीकेशंस कौन सी हैं जिनके ज़रिए वो अपने आप को अच्छे से अपने सुरक्षा भी अपनी कर सकते हैं और अपनी बहुत सी ज़रूरतें भी पूरी कर सकते हैं।
0: तो बताइए।
1: तो आज के जो डिजिटल युग है उसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ ज़रूरी एप्लीकेशन उनके जीवन को और अधिक सुरक्षित बनाती हैं और सुविधाजनक बना सकती हैं, जैसे कि वो बैंकिंग से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी योजनाओं से लेकर मनोरंजन तक हर सुविधा मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से हम उनको उपलब्ध करा सकते हैं, उपलब्ध करते हैं। ऐसे में वरिष्ठ नागरिक अगर कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस का उपयोग करना सीख लें तो उनका जीवन बहुत अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन सकता है। जैसे कि हम सभी लोग ये सब चीज़ें उपयोग करते ही हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट होता है जिसकी वेबसाइट है abha.abdm.gov.in। ये एक डिजिटल हेल्थ आईडी है जिसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसमें डॉक्टर की पर्चियां हैं, जांच रिपोर्ट है, इलाज का विवरण है, एक ही स्थान पर उपलब्ध रहता है जिससे मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रहते हैं और अस्पताल में बार बार कागजात ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और आपातकाल में डॉक्टर को स्वास्थ्य इतिहास बताने में आसानी होती है।
0: बिल्कुल आरती। और इसके अलावा ऑनलाइन SBI.SBI जो भारतीय स्टेट बैंक की डिजिटल बैंकिंग सेवा है, जहां हम बैलेंस चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें FD और अन्य बैंकिंग सेवाएं भी मिलती हैं। इसके साथ उमंग एप्लीकेशन जिसमें पेंशन संबंधी जानकारी रहती है, गैस बुकिंग जैसी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही जीवन जो कि भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया एक विशेष एप्लीकेशन है, जहां वरिष्ठ नागरिकों को आपातकालीन सहायता, सरकारी योजनाओं की जानकारी और पेंशन से जुड़ी सुविधाएं एक ही जगह मिल जाती हैं, और मेडिसेफ जो एक बेहतरीन दवा रिमाइंडर ऐप है।
1: बिल्कुल, और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं अक्सर समय पर दवा लेना जब हम भूल जाते हैं तो ऐसे में ये ऐप सही समय पर अलार्म बजाकर दवा की याद दिलाता है और परिजनों को भी सूचित कर सकता है कि आप

0: आपको इसमें दवा देने का टाइम हो गया है। और वेल्दी और या फिर माय फिटनेस, वेल्दी यानी कि आपकी वेलबींग या आप किस तरह से स्वस्थ हैं, वो फिटनेस आपकी चेक करता है। तो ये फिटनेस पॉल, ये फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग का ऐप है जो वरिष्ठ नागरिकों को उनकी शारीरिक गतिविधि और खान पान का ध्यान रखने में मदद करता है। और साथ ही एक और है, वो है माई स्कीम, एक सरकारी पोर्टल है जहां बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही सभी पेंशन और कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया आसानी से मिल जाती है। और है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग DOSJE जो कि भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ ही scw.dosje.gov.in जो वरिष्ठ नागरिकों को आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं और राष्ट्रीय हेल्पलाइन जैसी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा ऑडिबल एप्लीकेशन है, कई बुजुर्गों को पढ़ने में आंखों की कमजोरी के कारण परेशानी होती तो उनके लिए ऑडियो बुक सबसे उत्तम है। यहाँ हजारों किताबों को सुनकर आनंद लिया जा सकता है। इसके साथ वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल जो कि भारत सरकार का केंद्रीय पोर्टल है, सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल, बुजुर्गों को पेंशन, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं की सटीक जानकारी प्रदान करता है।
0: जी बिल्कुल, और एल्डरलाइन राष्ट्रीय हेल्पलाइन है जो कि बुजुर्गों के लिए समर्पित राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा है। इसका टोल फ्री नंबर है 14567 यानी 14567 और हम इसके माध्यम से गरिमापूर्ण वृद्धावस्था वेबसाइट पर जाकर आवास, भावनात्मक सहयोग और कानूनी विवाद समाधान से जुड़ी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही जीवन प्रमाण पोर्टल भी है और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो भी जीवन प्रमाण है उसके जरिए पेंशन भोगी घर बैठे अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जिसके लिए उनको पहले जाना पड़ता था और अपना जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता था बैंक में।
1: बिल्कुल, और पेंशन भोगियों को पोर्टल पेंशनर पोर्टल विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए कर छूट, यात्रा रियायतों और कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत विवरण देता है। अब तो ऐसे फोन भी उपलब्ध हैं जो बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। इनमें बड़े बटन, फोटो स्पीड डायल और एक डेडिकेटेड SOS यानी आपातकालीन बटन होता है। इन फोन्स में तेज आवाज सुनने की मशीन के अनुकूल डिवाइस और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स मिलते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहिए कि बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं जिनसे हमारे बुजुर्ग अपना फायदा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं
0: जी।
1: तो ये चीज बहुत अच्छी है आरती।
0: बिल्कुल, अगर इनकी जानकारी हो और इनको चलाना आता है आपको तो आप इनके जरिए बहुत ऐसी चीजों को, अपनी जरूरतों को आप पूरा कर सकते हैं जिनके लिए हमें पहले बाहर जाना पड़ता था, वो अब हम घर बैठे ही एक क्लिक पे कर सकते हैं अच्छे तरीके से।
1: और आरती देखो, हमारे एक साथी लिखते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए तकनीकी अब वरदान बन गई है। उनके दैनिक जीवन को आसान, सुरक्षित और आनंददायक बनाने के लिए कई बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध है जो स्वास्थ्य देखभाल, आपातकालीन सहायता, दैनिक सुविधाओं और मनोरंजन का ध्यान रखते हैं। उम्र में एक पड़ाव ऐसा आता है जब हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। घर परिवार में बुजुर्गों को ये सहारा सहज मिल जाता है जिससे उनकी जिंदगी आसान हो जाती है। सरकार भी उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कई कोशिशें करती रहती है। कई योजनाओं और सरकारी सुविधाओं में उन्हें खास तवज्जो या छूट दी जाती है।
0: बिल्कुल, और इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको अपनाना भी चाहिए। जो नई तकनीक आ रही है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी है, और जो कि जैसे कि हमें पेंशन की जानकारी प्राप्त करनी है या हमें कोई दवा मंगानी है तो उसके लिए हम, अगर कोई घर में उस समय नहीं है तो हम इस तरह से अपने वेब के साइट के जरिए या फिर किसी ऐप के जरिए इस तरह से हम वो ले सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं और वो दवा मंगा भी सकते हैं आराम से।
1: बिल्कुल, और हमारे एक साथी और लिखते हैं आरती, नागरिकों को या फिर ऐसे सीनियर को मासिक पेंशन मुहैया कराती है जिसके पास आय का कोई साधन नहीं या जिनका हालचाल लेने वाला इस संसार में कोई नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स में भी छूट मिलती है। साथ ही कई बीमा कंपनियां भी ऐसे लोगों के लिए विशेष मेडिकल प्लान लेकर आ रही हैं। कई बीमा कंपनियों ने भी जीवन बीमा की उम्र को बढ़ाकर 70 या 75 वर्ष कर दिया है ताकि उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्हें वित्तीय असुरक्षा का आभास ना हो सके।
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है इस चीज के लिए कि वो अपने अंदर सुरक्षित महसूस करें। तो इन बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं उन पे जाकर या बहुत सारी एप्लीकेशन है उनकी सहायता से, और या इस तरीके की अब फोन भी चल गए हैं जिनका उपयोग करके वो अच्छे तरीके से अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं, अपनी जरूरत के सामान भी मंगा सकते हैं। और मंजीर, इसी के साथ समय हो गया एक छोटे से अंतराल का।

0: हाँ सुमन जी, इतना अच्छा प्यारा सा गाना सुनने के बाद अब हम कौन सी बात करने जा रहे हैं?
1: देखो आरती, ये बताओ ना कि तुमने कभी आग में घी डालने का काम किया है क्या?
0: मैंने कभी नहीं किया है आग में घी डालने का काम। हाँ, उस घी
1: जी
0: को निकालने का काम किया है, यानी कि लड़ाई, जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसको सुलझाने का काम किया है।
1: ये तो बहुत अच्छा तुमने
0: जी
1: काम किया, क्योंकि जब ऐसे समय में झगड़ा हो रहा है तो आप अगर उसमें सही बीच बचाव कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी हमें ध्यान से करना पड़ता है आरती। नहीं मालूम पड़ा हम
0: ये ना
1: बचाव में
0: हो,
1: कर रहे,
0: हाँ
1: खुद ही
0: बिल्कुल,
1: फंस गए उस चक्कर में।
0: ये ना हो कि बात पहले झगड़े हो रही थी, आपस में बात चल रही थी, बात वाला झगड़ा हो रहा था और हमारे जाने के बाद वो लात घूंसे पे आ जाए, ऐसा नहीं होना
1: जी,
0: चाहिए।
1: और देखो एक साथी लिखते हैं कि आग में घी डालना मुहावरा, पहले से भड़के हुए झगड़े या गुस्से को और भड़का देना, स्थिति को और खराब कर देना, इसका उन्होंने मतलब लिखा है।
0: जी
1: और मुहावरे की दुनिया में ले जा रहे हो ये अच्छी बात है। एक लिखते हैं कि वैसे तो कोई भी शुभ कार्य के लिए किए जा रहे यज्ञ में आहुति देते हुए घी डालना जरूरी होता है, घर के सभी सदस्य शामिल होते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ इस मुहावरे के मुताबिक आग में घी डालना मतलब किसी के गुस्से या विवाद को और अधिक भड़काने, यानी किसी खराब परिस्थिति को और भी खराब यानी अशुभ करना होता है, बड़ी बुरी बात है।
0: जी
1: अंग्रेजी में इसे एड फ्यूल टू द फायर बोला जाता है। बहुत
0: जी
1: अच्छी सी बात लिखी इन्होंने।
0: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और तेजी से धधक उठती है। इसी प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। अक्सर ये लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ाने वाले शब्दों पर कहा जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात हुई नहीं, बस इसी तरह के आग में घी डालने शुरू कर देते हैं, जो परिवार, समाज और देश सभी के लिए घातक होता है। बोलचाल में लोग कहते हैं लगाना बुझाना या फिर लड़ाई को आगे बढ़ाना।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि आग में घी डालना एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है, इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और भी अधिक बिगाड़ देना या क्रोध, विवाद तथा तनाव को बढ़ावा देना। जब दो लोग बीच झगड़ा हो रहा हो और कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी बातें कहे कि जिससे झगड़ा और बढ़ जाए तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो समस्या को और बढ़ा दे। इसीलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए, इन्होंने लिखा है आरती।
0: बिल्कुल। और एक और हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और अधिक बिगाड़ देना या क्रोध, विवाद या तनाव को बढ़ावा देना। जब दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा हो और कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी बात कहे कि झगड़ा और बढ़ जाए तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। और ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, न कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो समस्या को और भी बढ़ा दें। इसलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए।
1: और आरती, कभी कई बार ऐसा होता है ना कि देखो भाई बहनों के बीच में छोटी छोटी सी बातों पर कहासुनी हो गई और उसको सुन करके तू आपका दो एक तो भाई बहन में हो ही रहा है झगड़ा, लेकिन दूसरा आकर भाई आपके बीच में लग गया कि नहीं इसने तो ऐसा कहा था, ये गलत कह रही थी, तुम्हारे बारे में ऐसा कह रही थी। तो यानी आग में घी डालने का काम घर में भाई बहन के बीच में अक्सर झगड़ों में ऐसा देखा जाता है,
0: बिल्कुल
1: और जब दो पड़ोसी झगड़ रहे हो तो तीसरा भी आकर उसमें आग में घी डालने का
0: बिल्कुल,
1: काम
0: पड़ोसी
1: करता
0: हो
1: है।
0: चाहे भाई बहन हो चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, अक्सर ऐसा होता है कि झगड़ा किसी न किसी छोटी बात पर भी शुरू होता है, लेकिन अगर कोई समझाने वाला नहीं होता है तो वो झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो बढ़ के विकराल रूप धारण कर लेता है।
1: बिल्कुल, और आपस में जो इसके बाद झगड़े के बाद जो मन के भेद हैं वो दूरियां बढ़ जाती है, मतभेद हो
0: बिल्कुल
1: जाता है, तो वो बहुत दिक्कत वाला होता है, क्योंकि बाद में जब हम सामने वालों को देखते हैं तो याद आता है नहीं कितने अच्छे संबंध थे हमारे, इसके साथ आज ऐसा हो गया, तो वो
0: बिल्कुल
1: बड़ा दुख देने वाला है। और मान लीजिए कि दो मित्र किसी बात पर आपस में बहस कर रहे हैं, तभी एक तीसरा व्यक्ति आकर ऐसी बातें करने लगे जिससे दोनों का गुस्सा और बढ़ जाए, तो भाई ऐसी स्थिति में तो यही कहा जाएगा ना कि आग में घी डालने का काम कर
0: बिल्कुल,
1: रहे हो, है ना।
0: बल्कि हमें उस स्थिति को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि उनको समझाना चाहिए कि भाई जब क्रोध आपका शांत हो जाए तब आप आपस में बात करिए, जब तक क्रोध में रहते हैं ना हम तब तक हमें समझ में नहीं आता हम क्या सही कर रहे हैं या गलत। तो
1: बिल्कुल,
0: अब इसी बात को थोड़ा सा यहाँ पे विराम देते हुए एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
2: अगर नजर

0: तो देखो भाई, इतने गीत के बाद हम लोग फिर अपनी उसी बात पर आ गए कि
1: हाँ
0: भाई आग में घी डालने
1: घी
0: वाली
1: डालना,
0: बात पे।
1: तो क्या कह रहे हैं श्वेता?
0: हमारे साथी कह रहे हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और तेजी से धधक उठती है। इसी प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। अक्सर ये लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ाने वाले शब्दों पर कहा जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात नहीं बस इसी तरह के आग में घी डालने की बात शुरू कर देते हैं, जो परिवार, समाज और देश सभी के लिए घातक होता है। बोलचाल में लोग कहते हैं लगाना बुझाना, लड़ाई को आगे बढ़ाना।
1: बिल्कुल, ये हमें आगे बढ़ाना नहीं चाहिए इस लड़ाई को, क्योंकि लड़ाई जितनी ज़्यादा शांत रहे उतना ही अच्छा है। चाहे वो देशों के बीच हो, चाहे वो लोगों के बीच हो, घरों के बीच हो, लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए, शांति से काम लेना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: क्योंकि जिस समय हमें गुस्सा है, बस थोड़ी देर हम शांत रहें, थोड़ी देर काउंट कर लें अपने मन में, 1 2 3 4, चाहे गुस्से में ही करें, वो धीरे धीरे वो गुस्सा शांत होने लगता है।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं आरती, ये आग आज में आ लिखते हैं कि आग में घी डालना इस मुहावरे का अर्थ है बिगड़ी हुई बात को बहुत ज्यादा बिगाड़ देना। ये हमारे जीवन में बहुत लोग करते हैं, तो कह सकते हैं कि ये चीज बहुत ज्यादा हमारे जीवन में सार्थक होते हैं। और मेरे जीवन में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आग में घी डालने का काम किया है। साथ बहुत ज्यादा है।
1: बिल्कुल, कभी कभी कोई छोटी सी बात होती है ना, लेकिन कोई आके जब वो चीज को भड़का देता है और हम सुनी सुनाई बातों पे विश्वास भी कर लेते हैं, है ना, और वो जो जो इंसान हमसे बात कह रहा है वही दूसरे से जाके कहता है, वो अलग तरीके से कहता है, नमक मिर्च लगा के, तो वो चीजें ना आग में घी डालने का काम करती हैं। और वो जो मनमुटाव है, जो मनभेद है ना, वो मतभेद, वो सारे के सारे मिलके उस रिश्ते को बिगाड़ देते हैं।
0: तो यानी कहना चाहिए कि आग में घी डालने का काम,
1: बिल्कुल
0: समय मुहावरे हमारे पास बहुत सारे आते थे कक्षा में जब हम पढ़ते थे, तो वो उनका अर्थ वहां पर वहीं तक सीमित
1: बिल्कुल
0: रखे हैं।
1: बिल्कुल,
0: जीवन
1: ये
0: में जहां हुए
1: समझाने,
0: भी वहीं
1: जी समझ,

0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: हाँ तो मंजरी, अब क्या करें?
4: अब बताओ तुम क्या करते हैं?
3: एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

0: तो आरती सखी विशेष के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं अश्विनी अशोकन, सह संस्थापक मैड स्ट्रीट डेन की जो है। अश्विनी अशोकन भारतीय तकनीक जगत की प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है, जिन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रखकर उसे आम जीवन और व्यवसायों के लिए उपयोगी बनाने का बड़ा काम अपने हाथ में लिया।
1: जी बिल्कुल, और अश्विनी अशोकन का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कला और विज्ञान जब एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तब कुछ नया और बेहतर आविष्कार आकार लेता है। चेन्नई की रहने वाली अश्विनी अशोकन का जन्म प्रोफेसर और कंप्यूटर वैज्ञानिकों के परिवार में हुआ था।
0: 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने विजुअल कम्युनिकेशन में दाखिला लिया। उन्होंने दृश्य संचार और इंटरेक्शन डिजाइन का अध्ययन किया तथा बाद में अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की।
1: बिल्कुल, और एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना और संगीतकार के रूप में उन्होंने 14 से 21 वर्ष की आयु के बीच देश भर में प्रदर्शन किया। दिलचस्प बात यह है कि विश्वविद्यालय में उनका शोध प्रबंध गति व्याकरण पर था,
0: जिसमें उन्होंने ये पता लगाया कि नृत्य के सांस्कृतिक रूप में हमें ये सोचने में कैसे मदद कर सकते हैं कि हम अपने रोबोट और अन्य डिजिटल एजेंटों में गति को कैसे डिजाइन करें। उद्यमिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने लगभग एक दशक तक एक प्रसिद्ध कंपनी में काम किया।
1: बिल्कुल, उन्होंने वहाँ पर मोबाइल नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य की तकनीकों पर काम किया। इसी दौरान उनके मन में ये विचार जन्मा कि AI को केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाने का साधन बनना चाहिए।
0: जी, और अश्विनी कहती हैं, मैं समझती हूँ कि न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करते हैं। मैं मशीन लर्निंग के मूल सिद्धांतों को समझती हूँ। मुझे तकनीक के निर्माण की पर्याप्त जानकारी है और सबसे बढ़कर मैं अपने मूल कौशल की को भली भांति जानती हूँ, जो दुनिया भर के लोगों के लिए सार्थक तरीके से प्रौद्योगिकी को समझना और उसका उपयोग करना है।
1: बिल्कुल, वर्ष 2013 में उन्होंने अपने पति और न्यूरो साइंटिस्ट आनंद चंद्र शेखरन के साथ मैड स्ट्रीट डेन की स्थापना की। कंपनी का उद्देश्य ऐसी AI तकनीक विकसित करना था जो मशीनों को देखने, समझने और सीखने की क्षमता प्रदान करे। बाद में कंपनी ने VUE.AI जैसे प्लेटफॉर्म विकसित किए जिन्होंने खुदरा व्यापार, ई कॉमर्स, स्वास्थ्य और वित्त जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं खोली। अश्विनी केवल एक सफल उद्यमी ही नहीं बल्कि कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता की प्रबल समर्थक भी हैं।
0: उन्होंने अपनी कंपनी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और तकनीकी क्षेत्र में उनके लिए अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया। अपने दूरदर्शी नेतृत्व और नवाचार के कारण अश्विनी अशोकन को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। आरती, जब भी हम ऐसे सखी सहेली के में लेके आते हैं, ऐसे विषय सखी विशेष के बारे में बात करते हैं, तो उनकी जो उपलब्धियां हैं, जो उन्होंने कार्य किया है, तो उसको सुनकर समझकर ऐसा लगता है कि हमारे अंदर भी एक लौ जगती है कि हम भी कुछ ऐसा करें कि एक हम ऐसी जगह पे अपनी पहचान बना सकते।
1: बिल्कुल, और तकनीकी के क्षेत्र में उन्होंने इतना काम किया AI के लिए, जहां पर आजकल मतलब सभी कर रहे हैं, लेकिन पहले इतनी ज्यादा लड़कियां नहीं आगे आ रही थी, लेकिन अब बहुत संख्या में लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हुए तो बहुत समय हो गया, अब हम कुछ गीत सुन लें।
0: जी,

0: तो देखो भाई, हमारे गाने में भी अंगना शब्द आ गया, तो
1: हाँ
0: आज हम लोग इसी पर तो बातें करने
1: बिल्कुल,
0: वाली है
1: आंगन
0: कि
1: की ही बातें करनी है हमको।
0: जी देखो, पुराने समय में घरों में जो आंगन एक केवल खुली जगह नहीं होते थे आरती, बल्कि वो घर की धड़कन हुआ करते थे। आंगन में ही सब कुछ काम हम लोग किया करते थे। घर में दादी नानी मौसी चाची सभी लोग आंगन में बैठ कर ही, चारपैया होती थी, नहीं तो पीढ़े पर बैठते थे, नहीं तो चटाई डाल के बैठते थे, और वहीं पे सब्जी काटने से लेकर धोना सुखाना पछोरना गेहूं चकिया दरना ये सारे जो
1: सब
0: काम
1: कुछ।
0: होते थे सब वहीं होते थे। और जैसे ही सीजन आता था होली आने वाली, तो उसके पहले जो दिन महीने होते थे उसमें बड़ी पापड़ कचरी अचार ये सब चीजें डाली जाती थी, और उसके लिए पूरा घर जुट जाता था।
1: बिल्कुल,
0: यानी
1: हर मौसम समझ लीजिए
0: जी,
1: हमारे आंगन में उतरता था।
0: यानी कि आंगन में हम बहुत सारी जिंदगी एक साथ जीते थे। और जो उत्सव त्योहार होते थे, यो याद होगा शादी के पहले जब मंडप वगैरह लगता है तो
1: सब
0: पंगत में
1: आंगन
0: जो खाना खाया
1: बिल्कुल।
0: जाता था वो भी चटाई डाल करके बड़ी लंबी सी पत्ती सी होती थी, उसके उस पर बैठ कर लोग खाना खाते थे, तो उसका भी एक आंगन का एक अलग
1: बिल्कुल।
0: मजा है। और
1: और जी
0: गर्मियों के दिन में, हाँ तुम क्या कहने
1: हाँ,
0: वाली
1: मैं ही
0: थी?
1: कह रही थी कि जैसे अभी बारिश के दिन चल रहे हैं, अब शुरू कहीं कहीं तो हो गई है और कहीं कहीं धीरे धीरे चल रही है बारिश, तो बारिशों का जो जो असली मजा होता था ना, वो आंगन में आता था। क्योंकि आंगन में जब पानी भर जाता था, बूंदे गिरती थी, छप छप छप
0: क्या
1: छप,
0: बात
1: इतना
0: है।
1: मजे आते थे कि
0: और तुम्हें
1: मतलब।
0: याद है ना वो जो नाव कागज की बना के हम लोग आंगन में जो पानी भरता था,
1: जी
0: और जब निकासी की जो जगह होती ना, उस जगह भी हम लोग कपड़ा ठूस दिया करते थे
1: बिल्कुल।
0: कि पानी भर
1: ये
0: जाए।
1: मुझे मुझे लगता है कि ना, ये जो यादें हैं वो सिर्फ हम लोग की नहीं, सभी की होंगी।
0: सभी की
1: सभी के
0: है
1: घर आंगन, जिनके जिनके घरों में आंगन, बल्कि अधिकतर लोगों के आंगन ही होता था घर में जो भी थे, तो वो आंगन का अपना अच्छे तरीके से उसका उपयोग भी करते थे। वहां पे सब काम किस तरह से कैसे क्या करना है, वो चीजें भी करना, वहां पे इंजॉय किस तरह से हमें अपने आनंद उठाना है उस चीज का,
0: बिल्कुल।
1: वो भी करते थे।
0: और देखो ना, हमारे साथी क्या लिखते हैं कि हमारे पुराने घर में लखनऊ में एक आंगन हुआ करता था, उसके ऊपर लोहे का जाल होता था, और उस पर हम लोग झूला डलवा लेते थे अपने पापा लोग से, और सब भाई बहन मिलकर झूला झूलते थे। आसपास की सहेलियां भी इकट्ठी होकर झूलते थे, बड़ा मजा आता था। उसी में छोटे बच्चे वहीं नहाते धोते, नहाना धोना, कपड़े धोना, मम्मी लोग का पकवान बनाना, दादी माँ के साथ सब कुछ इस आंगन में ही हुआ करता था।
1: बिल्कुल।
0: और आंगन में याद है जब कपड़े में साड़ियों में मार देने का एक था, तो चावल के पानी से मार दिया, मार निकाल करके उसको साड़ियों पे मार देते, तो जो खींचना है सुखाना है साड़ी को वो उसी आंगन में लंबी दूरी तक खड़े होकर
1: बिल्कुल।
0: के करते थे, तो बहुत मजा आता था
1: और
0: उन
1: रात
0: यादों
1: में जब सोने के लिए लोग जैसे कि अपनी देते अपनी यादें जब करते हैं, साझा करते हैं, तो लिखते हैं कि हम भाई रात में ऐसे सोते थे कि सब पूरा आंगन में पूरी चारपाइयां बिछा लेते थे। तो बहुत
0: में।
1: सारे लोगों की यादें जुड़ी होती हैं आंगन से।
0: बिल्कुल। और मच्छरदानी लगा के और पंखा लगा करके सोया जाता था, जब पंखा नहीं था तो हाथ वाले पंखे से बैना जिसे कहते हैं वो डुला करके एक दूसरे को करते थे
1: बिल्कुल
0: हवा, वो भी बहुत यादगार है। और
1: बिल्कुल
0: हमारे साथी क्या लिखते
1: बिल्कुल।
0: हैं
1: हमारे
0: बताओ।
1: एक साथी लिखते हैं कि बच्चे बड़ों की नजर में सुरक्षित बचपन होता था आंगन में। बच्चे बड़ों की नजरों के सामने आंगन में कंचे गिट्टे या छुपन छुपाई खेलते थे, और आज के फ्लैट्स की तरह बच्चे कमरों में कैद नहीं थे बल्कि खुले आसमान के नीचे दौड़ते थे। प्राकृतिक एयर कंडीशनर था वो, समझ लीजिए, रोशनी थी, हवा थी। आंगन पूरे घर में प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा का सबसे बड़ा जरिया था, और गर्मियों की रातों में आंगन में पानी का छिड़काव करके चारपाई बिछा दी जाती थी जो प्राकृतिक ठंडक देती थी।
0: क्या बात है। और हमारे साथी देखो, और बढ़िया सी यादें इन्होंने साझा करी है कि आंगन हर घर का सिर्फ खाली हिस्सा नहीं होता था, वो उस घर की सांस है, धड़कन है। आंगन वो जगह होता है जहां बचपन में दादी नानी से कहानियां सुनी जाती थी, जहां माँ ने लकड़ी के चूल्हे पर दाल में बघार लगाया तो उसकी खुशबू पूरे घर में महक जाया करती थी, जहां बाबूजी खाट पर बैठकर अखबार पढ़ते, रेडियो सुनते थे। आंगन मतलब बिना किराए का अपना आसमान, जहां सुबह की पहली किरण, बारिश की पहली बूंद और चांद की चांदनी पर अपनी ही लगती थी। मतलब सोच लो
1: बिल्कुल।
0: कितना सुंदर था वो समय, और आज भी जिनके आंगन वो ही इसका मजा लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: सुबह तुलसी पर जल अर्पण से लेकर संध्या आरती तक घर की स्त्रियों की दिनचर्या होती थी, इसी आंगन में गिरे और संभले भी, यही से पारिवारिक रिश्तों की पहचान हुई। घर के आंगन ऐसी बहुत सी स्मृतियां होती हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। उनमें सौभाग्यशाली में से मैं हूं कि मेरे घर में तीन आंगन शुरू से ही, और उन्हीं में मेरा जन्म से लेकर बचपन बड़ा हुआ, हमारी चार बहनों और मेरा और मेरे बेटे का के विवाह मंडप भी बने और आज भी उन्हीं आंगनों में शेष जीवन व्यतीत हुआ जा रहा है। बहुत सारी यादें साझा करिए। और आंगन में जब ये मांगलिक उत्सव होते थे, जब ढोलक पर जो गाने बजते थे, सारी औरतें मिलकर गाती थी, नाचते थे, बच्चे भी नाचते थे, तो बहू बेटे सब क्या है, मतलब एक समा बन जाता था।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि दोपहर ढलते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थी और अपने सुख दुख की बातें कहती थी, यहीं बैठकर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी, और अचार डालना, पापड़ सुखाना और गेहूं साफ करना जैसे काम यहीं पर हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। मतलब काम कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, पता ही नहीं चलता था इतने सारे लोगों के बीच में।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं, पुराने समय में संयुक्त परिवार होते थे, आंगन में बैठकर महिलाएं घर के काम करती थी, बुजुर्ग आराम करते और बच्चे खेलते थे। ये परिवार को एकजुट रखने का मुख्य स्थान था। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व, पूजा पाठ, त्योहारों के आयोजन, शादियों की रस्में और मेहमानों का स्वागत अक्सर आंगन में ही किया जाता था। घर के बीच में तुलसी का चौरा और छोटे पौधे आंगन की शोभा बढ़ाते थे, और जब दिवाली का उत्सव आता था तो इसी तुलसी के चौबारे के चारों ओर बहुत सारी रंगोली बनाई जाती थी, दिए जलाए जाते थे मिट्टी के, और घर भी वहीं पे हम लोग बनाया करते थे। याद होगा तुम्हें कि ईंटों से घर बनाते थे, खेलने के लिए गुड्डे गुड़िया भी रखे जाते थे। यानी आंगन हम लोगों का मनोरंजन का एक बहुत बड़ा स्थल होता था। हमें कहीं ग्राउंड पे जाने की जरूरत नहीं, बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर में आंगन है तो बहू बेटियां सब वहीं पर अपने दिन अच्छे से बिता लेती थी।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे घर में आंगन है, इस आंगन में हमारे बच्चे खेलकर बड़े हुए हैं, अब बच्चों के बच्चे खेल रहे हैं, झूला है, पेड़ पौधे के कारण तितलियां आती हैं और बच्चे उन तितलियों को देखते हैं और पीछे पीछे जाते हैं, छुई मुई का पौधा है, उसके साथ बच्चे अपना प्यारा सा वक्त गुजारते हैं। आंगन में नीम का और बेल के बड़े पेड़ हैं, घर में ताजी हवा और प्राकृतिक रोशनी आती है जिससे वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ रहता है। ये परिवार के सदस्यों के मिलने जुलने, बच्चों के खेलने और त्योहारों और पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन का मुख्य स्थान है। आंगन में पेड़ पौधे लगाने से घर का तापमान भी संतुलित रहता था। आंगन घर की सुंदरता, स्वास्थ्य और पारिवारिक एकता का महत्वपूर्ण केंद्र है।
0: क्या बात है, कितनी सारी यादें सबकी ताजा हो गई हैं। और आंगन में झूला भी तो होता ना आरती, जिसमें गर्मियों में अपना सारा दोपहर उसी में पेड़ के नीचे झूला करते थे। और देखो, एक हमारे साथी संदेश लिखते हैं कि आजकल वो घर कहाँ जहाँ आंगन हुआ करते थे, अब तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर बन रहे हैं, वो भी बिना आंगन के। पुराने समय में यानी हमारे जमाने में भी हर घर में आंगन हुआ करते थे। इसमें कुदरती वेंटिलेशन नियम लागू पड़ता है, जैसे कि घर में हवा, प्राकृतिक रोशनी के साथ शुद्ध हवा का संचार होता रहता था। साथ साथ में परिवार जुड़ाव भी बढ़ता है, जो अति आवश्यक है। परिवार के साथ साथ बाहरी वातावरण को भीतरी कमरों से जोड़ता है, जिससे घर एक मंदिर जैसा और शांत और ऊर्जावान और आरामदायक बना रहता है।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि घर में आंगन का होना सिर्फ जगह की उपलब्धता नहीं है, बल्कि पारिवारिक जुड़ाव है, वेंटिलेशन और प्राकृतिक रोशनी का मुख्य माध्यम है। ये घर का खुला केंद्र बिंदु होता था, जहां धूप सेकने, गर्मियों में सोने, बच्चों के खेलने और महिलाओं के साथ मिलकर खाना पकाने जैसी गतिविधियां आसानी से होती थी।
0: और देखो, हमारे एक साथी लिखते हैं कि पड़ोसियों का मिलन स्थल, दोपहर ढलते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थी, सुख दुख की बातें यहीं बैठकर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी। सामूहिक काम, अचार डालना, पापड़ सुखाना, गेहूं साफ करना जैसे काम यहीं हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। और आंगन में कहीं कहीं पर हमने देखा है कि वो लोग चूल्हा भी बना लेते थे और शाम का खाना तो वहीं पे बनता था, किसी के यहाँ के दिन में भी बनता था। और बहुत मतलब अच्छा समय वहीं पर अच्छा समय बीतता था। और वहीं पर हम लोग पढ़ाई भी तो कितनी किया करते थे, शाम को बैठकर लिखाई
1: लोगों
0: पढ़ाई
1: के, समझ लीजिए हर काम का केंद्र बिंदु जो था वो आंगन ही था।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि वो प्राकृतिक, एक तो हवा उसमें आती है आपको, है ना, और दूसरी चीज है वहां पे आप बैठ के अपना कोई भी, जब पूरा परिवार एक साथ बैठता है ना तो आपको कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे से अपना समय बिताते हैं।
0: और वो याद है जब चावल बिनते थे तो गोरैया आ गई तो उनको चावल उसी थाली में से निकाल के दाने डाल दिए, वो चुग रही है तो उनको भी फुदकता हुआ, चूचू करता हुआ देख रहे हैं, तो बड़ा मजा आता था। यानी आंगन में कई बार बहुत सारे ऐसे पक्षी भी आ जाते थे, उतर आते थे, तो उनको दाने डालने में बहुत मजा आता था।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि आंगन के बीचों बीच तुलसी का पौधा होता था, जहां सुबह शाम दिया जलाया जाता था, और घर के बुजुर्ग दिन भर आंगन में बैठकर अपने नाती पोतों को कहानियां सुनाते थे, और आंगन में बैठकर वो घर के मुख्य दरवाजे और आने जाने वाले लोगों पर आसानी से नजर भी रख पाते थे।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि सुरक्षित बचपन, बच्चे बड़ों की नजरों के सामने आंगन में कंचे गिट्टे या छप्पन छपाई खेलते थे, और इस तरह के बहुत सारे गेम भी हुआ करते थे, आइस पाइस कह लो या पकड़म पकड़ाई कह लो या रस्सी कूदना है, कबड्डी है, ये सब भी आंगन में खूब हुआ करते थे। तो उसका
1: बिल्कुल।
0: भी एक अपना मजा है जो है आज भी
1: और
0: यादों में बना हुआ है,
1: हर मौसम
0: हर
1: का, चाहे
0: मौसम
1: गर्मी
0: का।
1: हो उसमें अलग तरीके से रहना, मजे करना, और चाहे बरसात हो, है ना, सर्दी के मौसम में धूप जो सेकते थे ना,
0: अरे वाह
1: वो जो
0: क्या
1: सूरज
0: बात
1: की
0: है।
1: रोशनी आती थी ना, सबसे पहले आंगन में जो धूप उतरती थी, तो सबका यह होता था कि भाई जल्दी जल्दी काम कर लो, बस आंगन में धूप सेकनी है।
0: और जहां जहां धूप जा रही है ना,
1: जी
0: वहां वहां पे कुर्सियां भी जा रही है, चारपाई
1: बिल्कुल
0: भी जा रही है, और मूंगफली भी खाते थे वहां पर बैठ कर आंगन में। ये बहुत अच्छा
1: बिल्कुल
0: टाइम पास था कि
1: बिल्कुल
0: उसके साथ जो नमक की पुड़िया याद है ना,
1: जी।
0: यानी पूरा मजा आता था। अमरूद भी आ गए सीजन में तो वो भी काट के, सब मतलब
1: तो
0: खान पान से
1: मतलब
0: लेकर
1: जो
0: हर
1: भी
0: काम
1: चीजें
0: अलग
1: आपको,
0: अलग।
1: जो भी काम करना है ना, सब लोग जुट के बस चलो आंगन में बैठे करना है ना, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे आनंद उठाना हो किसी चीज
0: तो फिर
1: का,
0: आनंद उठाते हैं गीत का।
1: बिल्कुल एक गीत का आनंद उठाते हैं।

0: तो भाई देखो, हम लोगों ने कितना सारा वक्त इस आंगन में
1: बिल्कुल
0: गुजार लिया, हम
1: इस
0: लोगों को
1: आंगन में
0: भी
1: हमारा पूरा वक्त पूरा हुआ अभी।
0: अब हमें चलना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: तो
0: सभी को मंजरी
1: और
0: वर्मा और
1: आतिश श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में होने वाले समारोह में 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे। दिशोम गुरु शिव सोरेन को भी आज नई दिल्ली में मरणोपरांत देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। दिशोम

0: कहा कि कोई भी पात्र न छूटे और कोई अपात्र मतदाता सूची में शामिल न हो, इस पर आयोग का जोर है। सरायकेला खरसावां जिले में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाता चाईबासा मुख्य मार्ग पर आज हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पिछले 36 घंटों के दौरान जिले में अलग अलग दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लगभग 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं। जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुण्यतिथि पर राज्यभर में आज विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रांची में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू और अन्य नेताओं ने उन्हें बलिदान दिवस पर नमन किया। श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉ मुखर्जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। और झारखंड T20 प्रीमियर लीग JPL का आज खिताबी मुकाबला होगा। जमशेदपुर स्टीलर्स और छोटा नागपुर रॉयल्स के बीच यह फाइनल मैच शाम 7:30 बजे से रांची के JSEA स्टेडियम में खेला जाएगा। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कार्यक्रम का पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्कार। रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
3: नमस्कार। बहुत शुक्रिया ममता जी और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
2: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो शायरी हमने श्रोताओं को सुनाई आपकी ही कलम से निकली थी, तो ये शायरी की लौ कैसे जली आपके भीतर, कब जली?
3: उसके बड़े कारण, बड़े असबाब हैं उसके। असल में क्या होता है कि शायर पैदा होता है
2: जी,
3: बनता नहीं है, बनाया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता, इसीलिए शायर को गॉड गिफ्टेड कहते हैं
2: जी।
3: खुदादाद सलाहियत का नाम है शायरी। तो जब खुदा किसी को शायर बनाना चाहता है और बड़ा शायर बनाना चाहता है, तो उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजारता है। किसी की माँ छीन लेता है,
2: ओहो,
3: किसी से बाप छीन लेता है, किसी से महबूबा छीन लेता है, किसी को बेघर करा देता है, लेकिन बहुत कुछ लेके उससे बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। मेरे साथ भी इस तरह के हादसात हुए, घटनाएं हुई। बहुत छोटा था, बचपन में मेरी माँ का इंतकाल हो गया, बाप ने दूसरी शादी कर ली और फिर मेरी परवरिश मेरी नानी ने की, मेरे मामू ने, मेरे नाना ने की, खालाओं ने, मामी ने, ममानी ने। तो मैं ननिहाल में परवरिश पाया। मैं ननिहाली गांव और ददियाली गांव दोनों जगह पे हमारे हम जमींदार थे, खेती बाड़ी का काम था। तो ये सब जो घटनाएं हुई, ये सब मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये जमा होती गई
2: जी।
3: और फिर एक छोटी उम्र में इश्क भी हुआ, वो भी नाकाम हुआ। तो ये सारे जो सदमात थे, ये जो सारे दुख थे, जो सारे गम थे, महसूसात थे, है ना
2: जी,
3: ये सब जो एहसास थे, ये सब जमा होते गए और एक दिन इन्हीं दुखों की कोख से मेरे अंदर शायर पैदा हुआ
2: जी। जी।
3: ये 1984 का जमाना था।
2: कितने बड़े थे आप?
3: मैं 71 में पैदा हुआ।
2: ओ, तब तो बहुत छोटा।
3: हाँ हाँ, छोटा ही था, कच्ची उम्र थी। तो मैं उस जमाने में गुजरात के शहर बड़ौदा में था। 1984 लास्ट या 85 शुरू का जमाना था। तो हम काम करते थे कई कारीगर

0: के काम करते थे, तो उस दिन भी काम कर रहा था मैं, और मुझे लगा कि मैं जैसे बीमार हूँ, बुखार है, तो मैंने काम बंद किया और रूम पे चला गया। लेकिन मैं बीमार नहीं था, मुझे बुखार भी नहीं था, बस अंदर से ऐसा फील हो रहा था, वो अंदर शायर पैदा हो रहा था।
1: काम क्या कर रहे थे? अच्छा
0: मैं सुपारी काटने का काम कर रहा था उस जमाने में, जो पान में सुपारी खाई
1: जी
0: जाती
1: जी
0: है
1: जी
0: वो बड़े पैमाने पे बड़े स्रोत से वो काटी जाती है, और कारखाने होते हैं बड़े, और गुजरात में इसका बहुत काम है। सबसे ज़्यादा सुपारी मैं समझता हूँ गुजरात में ही खाई जाती है। तो मैं रूम पे गया और लेट गया, और मेरी आदत है चादर गर्मी में भी
1: जी जी
0: थोड़ा सा ऊपर डाल लेता हूँ, तो चादर डाल ली मैंने और लेट गया। मेरे बाजू में रेडियो था,
1: क्या बात
0: और
1: है!
0: आज मैं रेडियो स्टेशन पे हूँ, और समझिए कि इस रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में,
1: जी जी जी
0: या उसको समझने में, या
1: जी
0: उसके महसूस करने में।
1: हाँ,
0: तो हुआ ये कि मैं ऐसे ही कैजुअली, मतलब बस
1: रेडियो का स्विच ऑन कर
0: हाँ,
1: दिया।
0: कर दिया ऑन, और जहाँ पे वो जिस स्टेशन पे काटा था, मैंने उसको कुछ घुमाया वुमाया भी नहीं, सरकाया भी नहीं, वहीं से एक गज़ल
1: बज रही
0: बज
1: थी।
0: रही थी, और वो गज़ल थी, दो जमा दिलों का गम दूरियाँ समझती हैं,
1: क्या बात!
0: क्यों हुआ मैं दीवाना बेड़ियां समझती हैं, बाम से उतरती हैं जब हसीन दोशीजा, जिस्म की नज़ाकत को सीढ़ियां समझती हैं। ये गज़ल कोई गा रहा था, और इस गज़ल के साथ साथ मेरी गज़ल शुरू हो गई,
1: ओ
0: और सेम मीटर में, है ना। अब वो गज़ल तो मैंने ज़ाये कर दी, मुझे याद नहीं है उसका एक शेर जिसमें तखल्लुस होता है, जिसे मकता कहते हैं।
1: शुरू हो गई, मतलब आप कहने लगे।
0: मैं हाँ,
1: अच्छा, उस गजल के साथ साथ आप कहने
0: मेरे
1: लगे।
0: अंदर का शायर जो
1: जी
0: है
1: जी
0: मुतहर्रिक हो गया, एक्टिव हो गया उसी गजल के साथ।
1: जी और ये हो सकता है कि उस समय आप विविध भारती सुन रहे हो। विविध भारती से रंग तरंग प्रोग्राम होता था,
0: अच्छा
1: तो वहां पर गजलों का प्रोग्राम
0: हाँ,
1: हुआ
0: तो वो
1: करता
0: हाँ
1: था।
0: तो वो गजल का ही था। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सा स्टेशन था, मैं बड़ौदा शहर में था गुजरात में, और वो गजल शुरू हो गई जो मैंने अभी बताई, और उसी के साथ साथ मेरी गजल की तख्लीक शुरू हुई। पहली गजल मैंने उसी दिन कही, और उसके बाद से फिर गज़लें कहने लगा। मेरे जो दोस्त थे उन सबको लगता था ये तो पागल हो जाएगा, तो मेरी डायरी में बहुत सारी चीज़ें जो लिखी हुई होती थी
1: जी
0: उनको वो चुरा लेते थे, हटा देते थे। लेकिन आशिकी और शायरी इस
1: जी
0: तरह से जो है वो मिटाई नहीं जाती, ख़त्म नहीं होती, वो एक जुनून होता है और जो चलता रहता है। तो
1: तो वो गजल याद है?
0: गजल तो याद नहीं है क्योंकि मैंने वो ज़ाये कर दी थी, उसका एक शेर याद है मुझे जिसमें तखल्लुस होता है, शायर का नाम होता है, गजल का आखिरी शेर होता है, वो एक शेर याद है। खून से है क्यों भीगा
1: खून
0: जिस्म
1: से
0: ये शकील अपना।
1: क्या बात है!
0: अच्छा, मीटर सेम है, जो उस गजल का मीटर था वही इसका मीटर है, बहर वही है। खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूं पत्थरों को है मालूम।
1: क्या बात है!
0: हाँ
1: वाह वाह, क्या बात है! तो मतलब रेडियो ने आपकी गजलों की दुनिया की शुरुआत की, तो
0: बिल्कुल
1: मतलब कह सकते हैं कि पहली तालीम रेडियो से लिया आपने शायरी की।
0: हाँ, शुरुआत तो वहीं से हुई, बल्कि वो रेडियो स्टेशन गवाह है, उस मेरी शायरी के पहले दिन का गवाह है।
1: क्या बात
0: जी
1: है! शकील साहब, जब रेडियो की बात चलती है तो बगैर गीतों के रेडियो की बात अधूरी सी लगती है। तो यहां पर कोई गाना आना चाहिए। बताइए, कौन सा गीत सुनवाए? आपकी पसंद का कोई गाना, आपका लिखा हुआ, या फिर कोई और गाना भी सुन सकते हैं। वैसे आपकी लंबी फेहरिस्त है
0: जी
1: गानों
0: हाँ
1: की,
0: जी हाँ जी
1: उसकी
0: हाँ
1: चर्चा भी हम आगे करेंगे।
0: हाँ वो सुना दें आप। मदहोशी का गीत है, अय खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है,
1: क्या बात है!
0: गर बनाई तो मोहब्बत में जुदाई क्यों है।
1: वाह वाह वाह! तो सुनते हैं मधुशी फिल्म का ये गाना।

0: शकील साहब, इस गाने के बाद यूं तो हम फिल्मों में आपकी एंट्री के बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि ये दिल टूटने की बात भी है गाने में, और ये अमूमन कहा जाता है कि दिल टूटने पर शायरी की शुरुआत होती है, और आपने जिक्र भी किया कि माँ नहीं रही, अम्मी नहीं रही, और इश्क का भी जिक्र किया। तो वो कहानी बताइए हमें कि वो इश्क क्या था, दिल टूटना कैसे हुआ।
1: असल में दिल टूटना एक आम जुमला हो गया है, जो मतलब कहा जाता है कि भाई शायरी करने के लिए दिल का टूटना ज़रूरी है। दरअसल एक बुनियादी दुख चाहिए,
0: जी
1: बुनियादी दर्द। ऐसा नहीं कि आप जख्मी हो गए और वो जख्म का एक दर्द है वो भर जाता है, वो मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है जख्म भरते ही।
0: जी
1: बुनियादी जो दुख है, बुनियादी जो दर्द है, जो आपको अपने किसी करीबी से मिलता है, माँ से मिले, बाप से मिले, या ननिहाल से मिले, या महबूबा से मिले, महबूब से मिले, तो ये बुनियादी दुख जो होता है वो आपके अंदर से नहीं निकलता है और वो आपको लगातार सेंसेटिव बनाता रहता है।
0: जी
1: और शायर होने के लिए सेंसेटिव होना बहुत ज़रूरी है।
0: जी
1: तो मैं समझता हूँ कि शायर जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा सेंसेटिव प्राणी है।
0: जी
1: हाँ, तो वो बुनियादी दुख एक नहीं था मेरे यहाँ, मेरे यहाँ बहुत थे। एक तो सबसे पहला जो दुख था वो माँ की डेथ का था, फिर बाप ने दूसरी शादी कर ली तो हम वहाँ रहे नहीं बाप के पास, और ननिहाल में हमारी परवरिश हुई। तो ननिहाल भी दूसरा घर होता है, माँ का मायका होता है, तो वो भी घर ही होता है वो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क होता है। ठीक है,
0: बिल्कुल
1: जो आपको बाप के यहाँ जो अधिकार आपका होता है वो नानी नाना के यहाँ, मामू और मामानी के यहाँ इतना अधिकार नहीं होता
0: बिल्कुल सही बात,
1: जितना अधिकार आपका आपके
0: माँ
1: बाप
0: से
1: के।
0: मिलता है
1: हाँ,
0: बिल्कुल।
1: तो जब आप सेंसेटिव होते हैं, कैजुअली तो बहुत सारे बच्चे ननिहाल में परवरिश पाते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम बहुत अच्छे से वहाँ पले। लेकिन चूंकि मैं बड़ा सेंसेटिव था बचपन से ही, शायद खुदा ने तय कर दिया था कि मुझे क्या करना है, मुझे शायर होना है, तब मैं शायर नहीं था लेकिन सेंसेटिव मैं शुरू से था। तो ये प्रोसेस
0: चल
1: था,
0: रही थी बचपन में।
1: हाँ, जो मुझे नहीं मालूम था लेकिन वो कहीं लिखा जा रहा था।
0: जी
1: तो ये बहुत सारे जो दुख थे ये सब इकट्ठा हो गए, और मैंने कहीं लिखा है कि मेरे दिल में एक संदूक था नासूर नाम का,
0: जी
1: जिसमें सारे दुख जमा हो रहे
0: जमा
1: थे,
0: हो रहे थे,
1: और
0: क्या
1: एक दिन
0: बात
1: वो
0: है।
1: फट गया
0: ओहो
1: और वो शायर पैदा हुआ, उन दुखों की कोख से शायर पैदा हुआ।
0: जी
1: तो एक बुनियादी दुख चाहिए, ये बुनियादी दुख आपको जावेद अख्तर साहब के यहाँ भी मिलेगा, ये बुनियादी दुख आपको गालिब के यहाँ भी मिलेगा, निदा फाजली साहब के यहाँ भी मिलेगा, मीर के यहाँ भी मिलेगा। मीर का तो मामला ऐसा है, मीर तकी मीर हमारे बड़े शायर थे, उन्होंने एक ख्याली महबूबा क्रिएट कर ली थी और उससे इश्क करते थे जो दुनिया में थी ही नहीं लड़की।
0: जी।
1: ठीक है, तो आप सोचिए कि उस इश्क में, उस तकलीफ में कितनी शिद्दत रही होगी कि एक ख्याली महबूबा का जन्म हो गया, है ना। वो बीमारी भी कहते हैं वो
0: जी
1: इंग्लिश में स्किज़ोफ्रेनिया, मदहोशी फिल्म में भी यही प्रॉब्लम थी बिपाशा के साथ,
0: जी
1: जो हमारी फिल्म थी, हमारी कहानी में। तो ये सारा मामला है उस बुनियादी दुख का,
0: जी
1: उसके बगैर मुमकिन नहीं है।
0: उस
1: क्योंकि वो जो बुनियादी दुख है ना, वो आपको अंदर से नर्म करता है, मुलायम करता है, सेंसेटिव करता है, जिसकी वजह से आप जो हैं चीज़ों को बहुत शिद्दत से कैच करते हैं,
0: महसूस करते हैं, वो जो
1: महसूस करते
0: खरोचे
1: हैं।
0: होती है वो खरोच आपको
1: हाँ
0: कहीं शब्दों में ढाल लेते हैं तो
1: जी
0: आपको सुकून मिलता है। तो
1: जी
0: हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अल्फाज, कोई चंद शायरी अगर आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं तो
1: खुद को इतना भी मत बचाया कर,
0: क्या बात है।
1: खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर।
0: क्या बात है।
1: शुक्रिया। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर, दर्द हीरा है दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर।
0: वाह
1: अभी हम इसी दर्द की बात कर रहे थे।
0: वाह वाह वाह
1: दर्द जो है वो बहुत कीमती चीज़ है। हम उसको बहुत आसानी से उस दर्द को फ्रस्ट्रेशन में गुस्से में बाहर निकाल देते हैं उसको। नहीं, उसको जीना चाहिए उस दर्द को। वही दर्द आपको बड़ा कलाकार बड़ा फनकार बनाता है।
0: ऊंचाई तक ले जाता है कई
1: तो
0: बार।
1: दर्द हीरा है, दर्द मोती है।
0: क्या बात है।
1: दर्द आंखों से मत बहाया कर, काम ले कुछ हसीन होठों से, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है। और दर्द में मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अपनी मुस्कुराहट से हम कई बार अपने दर्द को ढांक लिया करते हैं। और यहाँ पर हम चाहते हैं, नानी की जो बातें हैं आपने जिक्र किया, नानी नाना के यहाँ पले, तो नानी की बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, नानी की जबान से सुनी हुई वो कहानियाँ, नाना की बहुत सारी बातें, बहुत सारी हिदायत नसीहतें, कुछ याद है तो संक्षेप में बताइए।
1: नानी की मोहब्बत है
0: बताइए, कोई
1: यार।
0: किस्सा बताइए नानी
1: मैं
0: का।
1: आपको बताऊं कि दुनिया की पहली और आखिरी औरत है मेरी नानी, जिसने मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की।
0: क्या बात है। ओह
1: बहुत बहुत प्यार किया मुझे मेरी नानी ने। माँ को तो देखा नहीं मैंने, मतलब चेहरा याद नहीं है। माँ के साथ एकाध वाकया जरूर याद है, लेकिन चेहरा नहीं याद है। मेरी माँ को टीबी था, उस जमाने में टीबी लाइलाज था,
0: जी जी
1: तो उसी में उनकी डेथ हुई। तो नानी ने बहुत प्यार किया, और नानी के साथ वाकया तो क्या है। वो मेरे लिए अपने बेटे से लड़ जाती थी, मामू से। अपने बज़ाहिर मुझे ऐसा लगा कि अपने बेटे से ज़्यादा प्यार मुझसे करती थी वो। तो वो औरत तो मेरे लिए बहुत बड़ी, कोई दूसरी औरत मैंने बताया कि ऐसी मुझे ज़िंदगी में नहीं मिली जो मेरी नानी की तरह मुझे प्यार किया हो जिसने। तो बहुत सारे वाकये हैं, मेरे लिए सबसे लड़ जाती थी वो। और कोई चीज़ जब उन्हें मिलती थी तो वो अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लेती
0: क्या
1: थी
0: बात है। बहुत बढ़िया।
1: और वो मुझे देती थी चोरी से, चुपके से। और मेरी पढ़ाई का ख्याल रखती थी
0: जी
1: बहुत,
0: जी
1: और मैं पढ़ने में तेज़ था शुरू से। एकाध दो सब्जेक्ट में कमज़ोर भी था, जैसे मैं गणित में कमज़ोर था, और जो धार्मिक पढ़ाई होती है, दीनियात कहते हैं, वो एक सब्जेक्ट होता था, उसमें कमज़ोर था। बाकी सब में, राइटिंग वगैरह में, आलेख में
0: तेज से।
1: बहुत तेज़ था मैं। हाँ
0: तो यहाँ पर जब आप नानी की बातें कर रहे हैं तो मुझे जावेद साहब का एक शेर याद आ रहा है। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। और जावेद साहब के नाम से मुझे याद आ गया कि जावेद साहब ने आपकी शायरी की बड़ी सराहना की है। एक कोई मुशायरा था गुजरात में, जहां पर निदा साहब, जावेद साहब और बड़े बड़े नामचीन शायर थे।
1: हाँ, सूरत में
0: जी, सूरत में।
1: जी,
0: तो वो क्या वाकया है, जरा उसका जिक्र कीजिए, वो घटना बताइए।
1: मुशायरों में तब मैं आया नहीं था, और मैं सूरत में ही रहता था,
0: जी
1: और गुजरात उर्दू एकेडमी की तरफ से सरकारी मुशायरा था वो। बहुत ही बड़ा मुशायरा था, और ये बात है 1994 की,
0: जी
1: है ना।
0: शीनकाफ निजाम भी आए
1: हाँ
0: थे
1: हाँ
0: इसमें।
1: शीनकाफ निज़ाम साहब ने उसकी निज़ामत की थी, उसका संचालन किया था।
0: जी
1: अच्छा, आपको इतना डिटेल में
0: बिल्कुल, कुंडली
1: पता
0: आपकी पता है। लेकिन हमें श्रोताओं तक पहुंचाना है सारी बातें।
1: तो उसमें सारे बड़े शायर, मतलब निदा फाजली,
0: जी
1: जावेद अख्तर, मोहम्मद अलवी, और शीनकाफ निज़ाम, और इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी, और मंजर भोपाली वगैरह जैसे जो मुशायरे के टॉप के शायर थे, ये इस तरह के शायर भी उसमें शामिल थे। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये अदबी और लिटरेरी पोएट थे
0: जी
1: सब।
0: जी
1: और जावेद अख्तर साहब का तो मतलब आप यूं समझिए कि बॉर्डर रिलीज हो गई थी या होने वाली थी, और उनके गीतों ने मतलब आग लगा रखी थी पूरे
0: जी
1: मुल्क
0: जी
1: में।
0: जी हिट
1: संदेशे आते हैं, है
0: गाने
1: ना,
0: आते रहते हैं।
1: आए
0: बिल्कुल
1: जाते हुए लम्हों, वो गाने, मतलब ये वही जमाना था।
0: हाँ
1: और प्रोफेसर वारिस अलवी साहब थे, जो गुजरात उर्दू एकेडमी के चेयरमैन थे, और उर्दू साहित्य के बहुत बड़े क्रिटिक, बहुत बड़े नक्काद थे वो, प्रोफेसर वारिस अलवी साहब। तो उनके फोन पर जावेद अख्तर साहब आए थे, वरना वो आते भी नहीं।
0: जी जी जी
1: हाँ, तो वो बहुत बड़ा मुशायरा था। और उसमें एक अलमिया ये हुआ, एक विडंबना हुई कि उसमें कई शायर मकामी थे, मतलब सूरत के लोकल शायर थे कई। तो लोकल शायर हर जगह पे यही दस्तूर है कि उसको पहले पढ़ा दिया जाता है, बाद में फिर जो मेहमान शायर हैं दूसरे शहरों से आए हैं और जो नामचीन हैं बड़े शायर हैं, फिर धीरे धीरे उनका नंबर आता है। जैसे जैसे मुशायरा ख़त्म होता जाता है तो वो जितने बड़े शायर हैं वो बाद में पढ़ते हैं। अब जो लोकल शायर थे मकामी, उनको पढ़ाना शुरू किया शीनकाफ निज़ाम साहब ने। अच्छा, उसमें कुछ अहमदाबाद के भी थे, मतलब गुजरात के दूसरे शहरों से भी
0: जी,
1: थे
0: जी, जी।
1: तो उन्हें भी ठीक से कोई सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि स्टेज पर इतने बड़े बड़े शायर बैठे हुए थे। अब सूरत के शायरों को पढ़ाना शुरू किया और दो या तीन शायर पढ़े होंगे कि हूटिंग शुरू होने लगी कि भाई मकामी शायरों को नहीं सुनना है, पब्लिक जो है सामईन जो है वो सुनने को तैयार नहीं। अब ये तय किया गया कि भाई मकामी शायरों को नहीं पढ़ाया जाएगा। अब मेरा तो वो पहला बड़ा मुशायरा था और उसके लिए हमने बड़े जतन किए थे, बड़ी मेहनत की थी, और ये जो बाहर से सब शायर आए थे इनकी देखभाल में भी हम थे, जावेद साहब के और मोहम्मद अलवी साहब और निदा फाजली साहब, और इन सब से मेरी पहली मुलाकात हुई थी
0: और उसमें जावेद प्रूफ करने का जरूरत
1: था। हाँ, जावेद साहब से भी, निदा साहब से भी, मोहम्मद अलवी साहब से भी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी। इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी। शीनकाफ निज़ाम साहब से शायद पहले मिला होगा। तो हुआ क्या था कि सर्किट हाउस में ये सारे शायर ठहरे थे, तो मेरी मुलाकात, चूंकि मैं वहां पे मेहमान नवाजी में और देखभाल में था मैं, तो मेरी सबसे मुलाकात पहले ही हो चुकी थी। और निदा फाजली से मेरी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। और वो क्यों हो गई थी कि निदा फाजली साहब को तो मैं यूं भी पसंद करता था, लेकिन उनकी एक किताब जो नसरी है, मतलब उनका सवानही नावेल है, उन्होंने अपनी जिंदगी पर एक नावेल लिखा है जो दो जिल्दों में है, दो वॉल्यूम में है, तो ये पहली जिल्द थी, तब तक दूसरी नहीं छपी थी। दीवारों के बीच, वो हमारे यहाँ सूरत में एक लाइब्रेरी में थी और मैंने वो पढ़ रखी थी और उससे मैं इतना इम्प्रेस हुआ था, उसको पढ़ के रोता था मैं। निदा फाजली का जो कैरेक्टर है वो लगता था मैं हूँ।
0: क्या बात है,
1: है ना
0: जी, काफी कुछ दुख उनके भीतर भी जमा।
1: हाँ, तो हमारी जिंदगी बड़ी मिलती जुलती थी
0: जी।
1: तो मुझे लगता था कि निदा फाजली मैं हूँ, तो मैं उसको पढ़ के रोता था मैं। तो निदा फाजली साहब के साथ मैंने उस किताब पर डिस्कस की, तो वही वजह बनी, कारण बनी हमारे नजदीक आने की। और निदा फाजली साहब का उस जमाने में मुशायरों में तूती बोलता था
0: बिल्कुल,
1: और खास तौर से सूरत में बड़े मकबूल थे वो, सूरत में बहुत अच्छा सुना जाता था
0: जी,
1: उनको
0: जी।
1: तो अब जब ये तय हो गया, ऐलान कर दिया कि भाई अब मकामी शायर नहीं पढ़ेंगे, तो मुझे अफसोस हो रहा था कि यार मुझे पढ़ने को नहीं मिलेगा और ये मेरा पहला इतना बड़ा मुशायरा। तो निदा फाजली साहब ने एक कासिम हकीम साहब थे जो एडवोकेट थे और गुजरात उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन थे, नायब, तो उनसे मेरे अच्छे रिश्ते थे। उन्होंने मेरे लिए मतलब अकेडमी और किताब छपवाना ये सब में बड़ी मदद की थी उन्होंने भी। तो लोकल पैमाने पर उन्होंने मुझे स्टेज भी दिलवाया। तो निदा फाजली साहब ने उनसे कहा कि अगर शकील को नहीं पढ़ाओगे तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा।
0: ओहो, क्या बात है।
1: ठीक है। और उस मुशायरे में वो अपनी वाइफ को भी लाए थे, तो हम लोग जानते भी नहीं थे और उन्होंने बताया भी नहीं कि मेरी वाइफ है। उन्होंने फोन पे बताया कि भाई वो एक शायरा है मालती जोशी सनम, वो भी आएंगी। तो अब वो चूंकि निदा साहब ने कहा था तो कोई उनको मना नहीं कर सकता था, हाँ भाई ठीक है उनको भी ले आइए। तो मालती जी उस जमाने में मतलब यंग थी और
0: विविध भारती में आ चुकी हैं।
1: अच्छा, और बड़ी खूबसूरत लगती थी, मतलब उनकी जो
0: अभी भी लगती है।
1: तो उनका जो चेहरा है वो सायरा बानो जी से भी थोड़ा मिलता जुलता है
0: जी, जी।
1: है ना। और वो मुझे याद है काली साड़ी पहन रखी थी उन्होंने। तो एक और भी शायरा थी, रफिया शबनम आबिदी साहिबा भी थी, वो बॉम्बे से, वो प्रोफेसर हैं, काफी पढ़ी लिखी नक्काद हैं, क्रिटिक भी हैं और शायरा भी हैं, और यहाँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, शायद अब रिटायर हो गई हैं, प्रोफेसर भी थी वो। तो वो भी थी उस मुशायरे में, रफिया शबनम आबिदी साहिबा। लेकिन सामेईन की जो नजर थी वो मालती जी पे ही थी। हाँ, क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत लगती थी और काली साड़ी में थी वो। तो अब जब मुझे बुलाया गया माइक पर, तो मैंने एक गजल का मतलब सुनाया, मतलब पहला शेर, कि किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए,
0: क्या बात है।
1: किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए, खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह।
1: खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए। फिर एक शेर था जो मैंने मालती जी की नज़र कर दिया, है ना। हालांकि कोई दूसरा शायर होता तो निदा फाजली साहब की मौजूदगी में
0: जी,
1: उनकी बीवी को ऐसा शेर
0: हिम्मत नहीं करते,
1: नज़र,
0: हिमाकत नहीं
1: हाँ, नज़र
0: करता।
1: करने की हिम्मत नहीं करता।
0: जी हाँ,
1: अब मैंने जुर्रत कर ली
0: जी,
1: और वो शेर मैंने पढ़ दिया कि मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं,
0: क्या बात है।
1: मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं अगर वो सांप मेरी आस्तीन का हो जाए।
0: वाह,
1: अब इस शेर पे इतना हंगामा हो गया, अचानक
0: ओहो,
1: इतना हंगामा हो गया कि मतलब जैसे मुझे सुरूर सा हो गया, मैं जैसे झूमने लगा, मैं इतनी
0: जी,
1: दाद मिल गई मुझे। और फिर एक दूसरा शेर था, वो भी मैंने उन्हीं की नजर कर दिया इसके बाद, कि दुआ करो वो सितारा जमी पे टूट गिरे, हमारे साथ रहे और यही का हो जाए।
0: क्या बात है। बहुत
1: अब निदा
0: बढ़िया।
1: साहब ने उठ के मुझे माला पहनाया
0: जी
1: और मालती जी को बुके लेके जबरदस्ती भेजा कि
0: जी
1: जा
0: जी
1: दे दे। तो इस तरह से वो मुशायरा मेरी
0: बहुत
1: जिंदगी का एक
0: यादगार रहा।
1: यादगार और पहला बड़ा मुशायरा था।
0: जी,
1: उससे पहले मैंने छोटी छोटी गोष्ठियां जो होती हैं हर शहर में, जो शायरों की अपनी होती है, एक दूसरे को सुनते हैं, या कोई छोटा मोटा मुशायरा दो चार पढ़ा होगा। ये मेरा पहला बड़ा मुशायरा था और इस तरह से कितनी मुश्किलों से मुझे पढ़ने का मौका मिला। और हम सब मायूस ही थे, लेकिन बस कुछ खुदा का ऐसा करना था कि मुझे बहुत दाद मिली, बहुत कामयाब हुआ मैं। और इसी मुशायरे के जरिए जावेद अख्तर साहब से मेरे रिश्ते बने, निदा फाजली साहब से दोस्ती हुई, मोहम्मद अलवी साहब से हुई, और मैं फिर बम्बई आया तो निदा साहब से भी मिला और जावेद साहब से भी मिला मैं। हाँ
0: जी, तो जब आप ये अपने शायरी सुना रहे थे तो वहां पर मुझे भी आपका ही एक शेर याद
1: इरशाद
0: आया है।
1: इरशाद
0: मैं
1: इरशाद
0: सो रहा हूं तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए।
1: क्या बात है,
0: मैं सो रहा हूं तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह
1: अरे
0: जाए।
1: वाह,
0: तो ऐसे आपके तमाम अशआर लोग सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं। लोग अपनी महबूबा के लिए जब खत लिखते हैं, खतों खतूत का जमाना तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप पर है अभी जमाना, तो लोग व्हाट्सएप पे भेजा करते हैं।
1: हाँ ये शेर
0: और
1: भी कितना यूनिक है
0: जी
1: कि मैं इसलिए सो रहा हूं कि तेरे ख्वाब देख पाऊं,
0: जी
1: मैं
0: जी
1: सो रहा हूं तेरे ख्वाब देखने के
0: जी
1: लिए।
0: तो इसमें तमाम तरह के जज्बात हैं, हम तमाम जज्बात खंगालेंगे और बहुत सारी यादें आपकी खंगालेंगे, यादों के गलियारों में ले चलेंगे, फिल्मी दुनिया की ओर ले चलेंगे अभी। लेकिन यहाँ पर आप श्रोताओं को ले आइए गाने के पास। कौन सा गाना सुनवाए?
1: थप्पड़ का सुना दीजिए, आपको ही बहुत पसंद है, एक टुकड़ा धूप।
0: एक टुकड़ा धूप, ये तो हम सबका पसंदीदा गाना
1: जी
0: है। थप्पड़ फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: ये थप्पड़ फिल्म का गाना था शकील साहब, और अनुभव सिन्हा जी इसके फिल्म के निर्देशक थे। विविध भारती के स्टूडियो में आ चुके हैं और मेरा सौभाग्य कि उनसे हमने बहुत सारी बातें की, आपका भी जिक्र हुआ था।
1: अच्छा,
0: तो आप बताइए, अनुभव सिन्हा से कैसे मुलाकात हुई मुंबई आए, तो इस गाने तक आप कैसे पहुंचे, इस फिल्म तक कैसे पहुंचे? फिल्म भी बड़ी प्रशंसित थी और ये गाना एक टुकड़ा धूप का तो बहुत प्रशंसित हुआ ये गाना।
1: जी अहमद फराज साहब का एक शेर है, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे।
0: क्या बात है
1: तो अनुभव सिन्हा साहब जरा मुझे देर में मिले।
0: जी।
1: हुआ ये था कि हमारे एक दोस्त हैं जो लंदन में रहते हैं, उस जमाने में बॉम्बे में भी रहते थे और लंदन में भी रहते थे, ब्रिटिश नागरिक हैं वो,
0: जी
1: तो सेवी अली नाम है उनका। उन्होंने मुझे अनुभव सिन्हा साहब से मिलवाया था, नंबर भी उन्होंने ही दिया था मुझे।
0: जी
1: अनुभव सिन्हा साहब शायरी के शौकीन हैं और खुद भी वो कविता लिखते हैं और गजल भी, शेर भी कहते हैं कभी कभी।
0: अच्छा, ये
1: हाँ,
0: बात तो नहीं पता थी
1: कभी कभी
0: हमको।
1: शेर कहते हैं, वो नहीं बताते हैं लेकिन कभी कभी कहते हैं और फिर मुझे सुनाते
0: क्या बात
1: हैं।
0: है,
1: हाँ
0: बहुत
1: तो
0: बढ़िया
1: हाँ, तो वो लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, वो
0: जी,
1: किताब पढ़ते हैं,
0: बहुत
1: नावेल
0: पढ़ते
1: और
0: हैं
1: कहानियाँ
0: जी।
1: बहुत पढ़ते हैं और लिखते भी हैं वो। तो मैं उनको कभी कभी कोई शेर या कभी कोई गजल ऐसे व्हाट्सएप पर भेज दिया करता था,
0: जी
1: तो उनको अच्छा लगता था तो मुझे रिप्लाई भी देते थे। और उनकी जो बड़ी बहन है, जो शायद दिल्ली में रहती हैं या कलकत्ता में रहती
0: जी
1: हैं, बड़ी बहन है, वो भी मेरी बड़ी फैन है, बाद में मुझे पता चला। तो उन्होंने भी शायद कुछ जिक्र किया होगा। और अभी जो मैंने गज़ल सुनाई, खुद को इतना भी मत बचाया कर, ये गज़ल उनको बड़ी पसंद है।
0: क्या बात है।
1: हाँ, मैं उनसे मिला नहीं हूँ लेकिन ये अनुभव सिन्हा साहब के ज़रिए ही मुझे पता चला। तो हुआ ये कि मैंने ये बात इसलिए कही कि तू बहुत देर से मिला है मुझे, अनुभव सिन्हा साहब के जो फिल्म मेकिंग है इसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। उनका जो सफ़र है रावण तक या तुम बिन टू तक, वो एक अलग अनुभव सिन्हा है।
0: बिल्कुल।
1: और जो मुल्क से शुरू होके जो आया है अभी
0: थप्पड़
1: 80 तक,
0: और भीड़
1: भीड़ और
0: हाँ,
1: 80 तक आया है,
0: आर्टिकल 15
1: आर्टिकल
0: बिल्कुल अलग है।
1: फिफ्टीन, थप्पड़, अनेक, ये सारी सारा जो काम है ये बहुत अलग और मुख्तलिफ काम है। लेकिन बड़े स्केल की फिल्में, ये फिल्में भी बड़ी हैं लेकिन जैसे रावण का स्केल जो है, या 10 का, तथास्तु का, कैश का, ये फिल्में बहुत बड़े पर्दे की फिल्में थीं
0: जी
1: और बहुत मल्टी स्टारर फिल्में थीं, और इन फिल्मों में गानों की गुंजाइश बहुत होती थी, और गाने जो हैं बहुत रोमांटिक गाने, कमर्शियल गाने जिसको कहते हैं खास तौर से, ऐसे गाने बनते थे। वो गानों से ही आए थे। अनुभव सिन्हा साहब वीडियो के डायरेक्टर थे, जो पहले एल्बम का बड़ा क्रेज था,
0: जी,
1: तो एल्बम के गाने बड़े फिल्म के गानों की तरह शूट होते थे। तो
0: और
1: वो
0: सुंदर फिल्मांकन किया उन्होंने।
1: हाँ, बहुत सारे उन्होंने गानों के वीडियो शूट किए हैं फिल्म से पहले। तो ये जब भूषण कुमार जी जब दिल्ली से बॉम्बे आए, अपने टी सीरीज को संभालना शुरू किया, और जो पहली फिल्म बनाई उनकी देखरेख में जो पहली फिल्म बनी थी वो तुम बिन थी, अनुभव सिन्हा साहब उसके डायरेक्टर थे। अनुभव सिन्हा साहब से उन्होंने खुद ही कहा कि इतने अच्छे वीडियो डायरेक्ट करते हैं आप, तो हमारे लिए फिल्म बनाइए। तो वो पहली फिल्म थी उनकी तुम बिन। वहां से लेके रावण तक की जो उनकी जर्नी है, उस जर्नी में मैं नहीं हूं, उसी का मुझे दुख है। लेकिन जितने अनुभव सिन्हा मुझे मिले हैं वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है,
0: जी,
1: वो भी मेरी खुशनसीबी
0: मैं तो उनको अनुभव का खजाना बोलती
1: है।
0: हूँ।
1: हाँ, तो ये जो दूसरे वाले अनुभव सिन्हा है ये मुझे मिले, वो जो पहले वाले,
0: पहले
1: जो
0: वाले नहीं।
1: पहला वाला जो हिस्सा है वो मुझे नहीं मिले।
0: देर आए दुरुस्त
1: तो
0: आए।
1: हाँ, तो हुआ ये था कि रावण के बाद उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस कायम किया, उनके बैनर का नाम है बनारस, और वो खुद बनारस के रहने
0: जी
1: वाले
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: तो आदमी जहाँ पैदा होता है उस जगह से उसको बहुत प्यार होता है। मैं आज भी आजमगढ़ जब जाता हूँ तो जिन गलियों में खेलता था उनकी शक्लें बदल गई हैं, और कुछ गलियां खत्म हो गई हैं,
0: जी
1: कुछ जगहें बदल गई हैं सब, फिर भी वहां जाता हूं मैं। वो जो पुराने पेड़ होते थे सब कट कटा गए हैं, एकाध जो बचे हैं उन पेड़ों के पास जाता हूँ, वो जो स्कूल जहाँ पढ़ता था वहाँ जाता हूँ अकेला, और उसको फील करता हूँ, मैं सिर्फ फील करता हूँ खामोशी से। तो अनुभव सिन्हा साहब बनारस के हैं, इसलिए अपने बैनर का नाम भी उन्होंने बनारस रखा
0: जी,
1: है,
0: जी,
1: बड़ा खूबसूरत सा नाम भी है बनारस।
0: नंबर पर वही लिखा हुआ
1: हाँ,
0: था
1: हाँ, हाँ, हाँ,
0: व्हाट्सएप नंबर
1: हाँ।
0: पर।
1: तो हुआ ये कि जब उन्होंने प्रोडक्शन हाउस कायम किया तो कुछ 3-4 फिल्में उन्होंने ऐसी प्रोड्यूस की जिनमें वो खुद डायरेक्टर नहीं थे, है ना। एक वार्निंग थी, और एक माधुरी दीक्षित और जूही चावला के साथ गुलाब गैंग थी,
0: जी जी
1: है ना।
0: जी
1: और इसी सीरीज की एक फिल्म थी जिद,
0: जी
1: जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे।
0: उसमें आपने गाना लिखा है।
1: हाँ, वो प्रोड्यूस कर रहे थे। तो वो जो फिल्म थी जिद, वो भट्ट साहब स्कूल की फिल्म थी, महेश भट्ट टाइप फिल्म थी वो। तो अनुभव सिन्हा साहब को उस फिल्म में ऐसे गाने चाहिए थे जिनमें शायरी हो, है ना, रोमांटिक फिल्म थी तो शायरी वाले गाने चाहिए थे। मुझसे पहले 2-3 गीतकार उसमें आजमाए गए थे, मुझे ऐसा बताया गया, बात नहीं बनी, फिर मुझे बुलाया गया। वो भी अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे फोन नहीं किया, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे शारिब तोशी, तो तोशी जी को उन्होंने कहा कि ये नंबर है शकील आजमी का, शकील आजमी को बुलाओ, वो इसके गाने बढ़िया लिखेंगे। तो उन्होंने कहा हमारे पास नंबर है, हम बुला लेते हैं। तो तोशी जी ने मुझे फ़ोन किया, और फिर वही, तब मैं मीरा रोड में रहता था, मैं सुबह सुबह कुछ 7:30-8 बजे उनके घर आ गया, वो मलाड में रहते थे, और फिर वो अपनी गाड़ी में मुझे अनुभव सिन्हा साहब के ऑफिस ले गए। अच्छा, पहले से उन्होंने भी मुझे फ़ोन पे नहीं बताया कि मामला क्या है और कहाँ जाना है, फिर वो रास्ते में बताया कि सिन्हा साहब यहाँ जा रहे हैं, उनकी फिल्म का एक गाना है, तो एक गाने के लिए बुलाया था, लेकिन वो सारे गाने धीरे धीरे मैंने लिखे, और उसके गाने बहुत हिट हुए, बहुत ही कामयाब हुए, उसका म्यूजिक मतलब उसने बहुत पैसे कमाए, फिल्म नहीं चली इतना, गाने बहुत हिट हुए।
0: ये फिल्म का नाम एक बार
1: जिद,
0: जिद फिल्म,
1: उसके गाने थे सांसों को जीने का इशारा मिल गया,
0: जी जी।
1: तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, फिर मरीज़े इश्क हूँ मैं, फिर तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए,
0: क्या बात है।
1: तो ये सारे गाने सुपर हिट हुए उसके।

0: एक हमारी समझिए कि एक कामयाब जोड़ी बन रही थी, और उसके बाद फौरन उनकी जो वाइफ हैं रत्ना सिन्हा जी, वो फिल्म कर रही थी शादी में जरूर आना, फिर उसके गाने भी मैं लिख रहा था। और फिर अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे एक बताया कि मैं ऑफिस में ही था, उनके ऑफिस में ही, कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। तो अनुभव सिन्हा साहब जो हैं, जिद के बाद उन्होंने तुम बिन टू है ना, अच्छा ये सारा लॉस हो रहा था, ये जो फिल्में अपनी कंपनी में उन्होंने प्रोड्यूस की वो सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जिद भी नहीं चली थी, जिद के म्यूजिक ने बहुत अच्छा किया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिल्में नहीं चल रही थी, ये जो मैंने अभी नाम लिए मैंने,
1: जी
0: ये सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। अब टी सीरीज की तरफ से अनुभव सिन्हा साहब को ऑफर आया कि भाई ये जो तुम बिन टू बनाइए हमारे लिए, भूषण कुमार जी ने उनको ऑफर दिया, तो तुम बिन टू बनाई, वो भी नहीं चली। उसमें एक गजल थी कोई फरियाद, जो जगजीत सिंह जी ने
1: जी
0: गाई थी, उस गजल को हमने इसमें रिक्रिएट किया और इसका नाम चेंज हुआ तेरी फरियाद हो गया है ना, तो ये पिक्चर भी नहीं चली।
1: जी
0: उसके बाद जो है ये रिलीज हुई रत्ना सिन्हा जी की फिल्म, ये हिट हो गई और उसमें गाने भी हमारे बहुत चले और बड़ी इज्जत मिली। उसमें एक गाना था, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूँ तुझमें, तेरी बातें चटपट चाट सी हैं, तेरी आंखें गंगा घाट सी हैं, मैं घाट किनारे सो जाऊं फिर सुबह सुबह जागूं तुझमें, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझमें।
1: जी क्या बात
0: तो
1: है।
0: ये गाना इसने बड़ी इज्जत दी मुझे, और यूं समझिए कि बनारस का ये दूसरा एंथम हो गया, पहला तो खई के पान बनारस वाला है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है, तो ये दूसरा एंथम ये मेरा गाना बना। बनारस में जब भी आप जाएं, और मतलब मैं जब भी जाता हूं बनारस, तो मुझे बड़ी इज्जत मिलती है इस गाने की वैसे, और पूरे देश में मिलती है,
1: जी
0: और पॉपुलर हुआ बहुत ये गाना।
1: बात चल रही थी तुम बिन टू फिल्म के गाने का भी जिक्र
0: हाँ
1: किया आपने,
0: हाँ हाँ
1: वहां
0: हाँ
1: पर जगजीत सिंह साहब ने एक
0: जी
1: गजल गाई है, वो गाना गाया है जगजीत सिंह साहब और साथ में रेखा भारद्वाज की
0: जी
1: आवाज
0: हाँ
1: थी,
0: जी हाँ
1: तो ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका जगजीत सिंह साहब एक गजल के मामले में, गजल की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं, और कौन ऐसा नहीं है जो उनका मतलब पसंदीदा सिंगर नहीं
0: जी हाँ,
1: है।
0: मेरे तो सबसे पसंदीदा गजल सिंगर है, मैं इज्जत करता हूँ मेहदी हसन खान साहब की, गुलाम अली साहब की, सबकी।
1: और रेखा भारद्वाज भी थी उसमें
0: हाँ,
1: उस गाने
0: लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे छूता है गजल
1: में।
0: सिंगर, वो है जगजीत सिंह साहब, और वो गजल बड़ी फेमस थी, तो उस गजल को लाना चाहते थे अनुभव सिन्हा साहब। मैंने उनसे जिद भी की कि सेम मीटर में मैं दूसरी गजल लिख देता हूँ, बोले नहीं मुझे तो वही चाहिए।
1: क्या बात है।
0: तो मैंने कहा कि फिर ये मुखड़ा चेंज करते हैं, इसका मतलब चेंज करते हैं, नहीं मतलब वही रहेगा, तो फिर मैंने कहा फिर नाम भी वही रहेगा, तो फिर गाना भी वही रहेगा, तो उसमें मैं कहाँ नजर आऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कुछ ऐसा करते हैं, आप मुखड़ा चेंज कर लीजिए, लेकिन उसमें फरियाद लफ्ज मुझे चाहिए, फरियाद लफ्ज चाहिए मुझे।
1: क्या बात
0: हाँ,
1: है।
0: तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने उसको लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो, जैसे
1: क्या बात है।
0: मुझे सिचुएशन बताई, पहली जो फिल्म थी तुम बिन, उसकी भी जो कहानी थी वो एक लड़का है जो बज़ाहिर मर गया है
1: जी
0: लेकिन बाद में वापस आता है, ठीक है, और फिर दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है लेकिन अब वो बाद में फिर वो वापस आता है, इसी तरह की कहानी इसमें भी थी। तो वो लड़का जो है मर गया है या गायब हो गया है, बज़ाहिर आप समझिए मर गया है, और लड़के का बाप जो है उसके फोटो पे हार लगा रहा है, और लड़की मौजूद है, नेहा शर्मा उसमें हीरोइन थी, वो मौजूद है, और बाप जो है लड़के का कह रहा है कि ये मर चुका है, तू इसको भूल जा, नई जिंदगी शुरू कर, मर गया ये, कहाँ इसके अभी चक्कर में है तू। और उसी जगह पे दूसरे लड़के का तारुफ होता है, दूसरा लड़का जो है वो इंट्रोड्यूस होता है, तो मुझे बताया गया कि यहां से वो गाना शुरू होगा। तो मैंने लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो, जैसे
1: क्या बात है, अब कोई आस न उम्मीद बची हो जैसे। वाह,
0: तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे।
1: वाह वाह,
0: ये नेहा शर्मा के हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से,
1: हाँ।
0: के उस बाप ने भी उसको समझा दिया कि इसके ख्वाब मत देख और यहां से निकल, तेरी जिंदगी बहुत, तुझे बहुत अभी जीना है। तो मान तो रही है कि ठीक है, अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे, लेकिन फिर भी तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे, मतलब अभी भी जैसे तू है ना, मान भी लिया फिर भी। तो होता यह था कि मुखड़े के बाद एक लाइन उस पहली वाली गजल से हम लेते थे और मुझे सिचुएशन बताई जाती थी कि इस लाइन पर ये सिचुएशन है और इस लाइन को आपको दो लाइन करके और ये तीसरी लाइन ही आएगी।
1: जी जी,
0: तो वो थोड़ा टेढ़ा काम था, सिचुएशन को भी मैनेज करना और उस लाइन को भी मैनेज करना।
1: जी जी,
0: ठीक है। तो वो बहुत सलीके से हुआ और बहुत जल्दी आधे घंटे में ये गाना लिख दिया था मैंने। और उसमें एक जो सबसे अच्छा शेर है कि एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, ये पहली जो गजल थी ये फायज अनवर साहब ने लिखी थी, फायज भाई हमारे दोस्तों में है, उन्होंने लिखी थी। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।
1: क्या बात है।
0: अब मैं आपको बताने के लिए, ये समझाने के लिए बता रहा हूं। अब जैसे ये दो लाइन है, दो मिसरों का एक शेर होता है गजल में। अब पहला मिसरा मुझे छोड़ देना, पहली लाइन, एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, ये छोड़ देना है। जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, इसको लेना है
1: जी।
0: और इसके ऊपर दो लाइन लगानी है, फिर ये आना चाहिए।
1: क्या बात।
0: और वो तीनों लाइनें कनेक्ट होनी चाहिए और सिचुएशन जो है वो बात भी होनी चाहिए
1: जी।
0: तो मैं खाली ये एक लाइन पर बात करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, रात कुछ ऐसे कटी है,
1: रात कुछ ऐसे कटी है
0: कि सहर ही ना हुई।
1: क्या बात है, वाह।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जां के निकलने की खबर ही ना हुई।
1: वाह क्या बात है।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जां के निकलने की खबर ही ना हुई, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।
1: क्या बात है।

जानी मानी शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन रीमा जोशी और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया जुबैर खान ने। इस कार्यक्रम का दूसरा और आखिरी भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे में।

अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करघट्टा। अब से थोड़ी देर बाद नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आज नागरिक अलंकरण समारोह का दूसरा चरण आयोजित होगा। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजेंगी। मौके पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। दिशोम गुरु की पत्नी रूपी सोरेन राष्ट्रपति से इस सर्वोच्च पुरस्कार को ग्रहण करेंगी। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वोटर मैपिंग का दूसरा और अंतिम सत्र 30 जून से शुरू होगा। इस सिलसिले में बीएलओ और बीएलओ प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज देवघर के मधुपुर में प्रशिक्षण का जायजा लिया और कहा कि कोई भी पात्र न छूटे और कोई अपात्र मतदाता सूची में शामिल न हो, इस पर आयोग का जोर है।

0: आपातकालिक पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ घंटों में गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रांची, साहिबगंज, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले के कई इलाकों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: छाया गीत के सुनने वालों को जयंत का नमस्कार।

देखते हैं जिधर भी उधर तुम ही दिखाई देते हो ओ हमदम। ये दामन मोहब्बत का है, ये दुनिया हमारी, इसे छोड़कर कहां जाएं हम।

ये क्या है बात, तेरे काजल का असर देख, ये दिन अब हुआ है रात। नैनों का नैनों से मिलना, दिल का दिल को पुकारना, हाँ यही है वो मुलाकात।

0: जमाने के ताने जज्ब करते हैं रोज, रहते हैं कांटों के संग ये, इनकी हिमाकत को समझो, मासूम है और इसलिए बहक जाते हैं ये, इन फूलों की नजाकत को समझो।
1: कहा आपका ये बजा ही सही,

पायल की छन छन, बिजली की चमकन, लोच कमरिया का संभाले न संभलता है, चुनरी की ढलकन, नजरों की अटकन, जरा सोच ये दिल बहलाए न बहलता है।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे FM 103 MHz पर। सायंकालीन सभा में आप सबों का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं अपनी सभा में प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की।

6:55 पर हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र की प्रसारण सेवा में, जिसमें ठीक 7:30 बजे आप सुनेगा प्रादेशिक समाचार। 7:10 पर जिले में आजकल

फिल्मी संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से आप सुनिएगा रात्रि 8 बजे। देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश का नाम सुन सकेंगे रात्रि 8:30 पर। समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर। News@9 रात्रि 9 बजे। उर्दू में खबरें रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर हम शामिल होंगे विविध भारती के कार्यक्रम में। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुन सकेंगे रात्रि 10 बजे से।

युवानी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आराध्या माही। आशा करते हो कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम में आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हुए फिल्मी गीतों को भी सुनवाएंगे। तो दोस्तों, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के हमारे चर्चा का पहला विषय है इंटरनेट का बढ़ता दुरुपयोग। जी हाँ दोस्तों, आज हम इंटरनेट का बढ़ता दुरुपयोग विषय पर विचार करने वाले हैं। दोस्तों, इंटरनेट आधुनिक युग का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। इसके माध्यम से हम घर बैठे शिक्षा, जानकारी, बैंकिंग, व्यापार, मनोरंजन और दुनिया भर की खबरें प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट ने हमारे जीवन को सरल और सुविधाजनक बना दिया है, लेकिन जिस प्रकार हर चीज़ के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, उसी प्रकार इंटरनेट का गलत उपयोग समाज और विशेष रूप से युवाओं के लिए एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। दोस्तों, आज के समय में अधिकांश युवा अपना बहुत सारा समय मोबाइल और इंटरनेट पर बिता रहे हैं। पढ़ाई और ज्ञान प्राप्त करने की बजाय कई युवा सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम, शॉर्ट वीडियो और अनावश्यक वेबसाइट की घंटों व्यस्त रहते हैं। इससे उनका समय बर्बाद होता है, पढ़ाई प्रभावित होती है और मानसिक तनाव भी बढ़ता है। दोस्तों, इंटरनेट के दुरुपयोग का एक बड़ा कारण है सोशल मीडिया की लत। जी हाँ दोस्तों, कई युवा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म पर लाइक, कमेंट और फॉलोअर्स बढ़ाने के पीछे अपना अमूल्य समय नष्ट कर देते हैं। इससे उनका ध्यान पढ़ाई, परिवार और अपने भविष्य के लक्ष्यों से हट जाता है। इसके अलावा ऑनलाइन गेम की भी लत युवाओं के लिए हानिकारक साबित हो रही है। कई बच्चे और युवा घंटों तक गेम खेलते रहते हैं, जिससे उनकी नींद, स्वास्थ्य और पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कुछ मामले में यह लत मानसिक तनाव और आक्रामक व्यवहार का कारण भी बनती है। दोस्तों, इंटरनेट के माध्यम से साइबर अपराध भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। फर्जी लिंक, OTP, धोखाधड़ी, नकली नौकरी और वैज्ञानिक और ऑनलाइन ठगी के कारण लोग आर्थिक नुकसान का शिकार हो रहे हैं। युवा अक्सर जानकारी के अभाव में इन जालों में फंस जाते हैं। एक और गंभीर समस्या है फर्जी समाचार और गलत जानकारी। इंटरनेट पर हर जानकारी सही नहीं होती। कई बार अफवाहें और झूठी खबरें तेज़ी से फैलती है, जिससे समाज में भ्रम और तनाव पैदा होती है। इसलिए किसी भी जानकारी पर विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करना आवश्यक है। दोस्तों, इंटरनेट के अत्यधिक उपयोग से स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लगातार मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन देखने से आंखों की समस्या, सिर दर्द, नींद की कमी, मोटापा और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें इंटरनेट का उपयोग केवल आवश्यक और सकारात्मक कार्यों के लिए ही करना चाहिए। युवाओं को अपने समय का सही प्रबंधन करना चाहिए, पढ़ाई और सोशल विकास पर ध्यान देना चाहिए और तथा सोशल मीडिया और गेमिंग का सीमित उपयोग करना चाहिए। माता पिता और शिक्षकों को भी बच्चों को इंटरनेट के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में जागरूक करना चाहिए। दोस्तों, इंटरनेट एक शक्तिशाली साधन है। इसका सही उपयोग हमें सफलता और ज्ञान की ओर ले जा सकता है, जबकि गलत उपयोग हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमें इंटरनेट का उपयोग सोच समझकर, जिम्मेदारी के साथ और अपने उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। दोस्तों, अभी हम बातें कर रहे थे इंटरनेट का बढ़ता दुरुपयोग के बारे में, लेकिन हम इंटरनेट पे कैसे सही तरीके से चीज़ें देख सकते हैं और इंटरनेट में अपने समय को कैसे प्रभावित होने से भी बचा सकते हैं। दोस्तों, इस चर्चा के बाद आइए सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस गाने के बाद आइए सुनाते हैं आपको वार्ता। विषय है पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर। वार्ताकार हैं आदिति त्रिवेदी।

आज हम स्थानीय पर्यटन के बारे में बात करेंगे। पर्यटन किसी भी जगह की चार दीवारी का मोहताज नहीं होता है। जैसे कि आप समझें, हमारा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अगर बेतला है, तो वहाँ से थोड़ी ही दूर पर लोध फॉल लातेहार जिले में है। अतः हम कह सकते हैं कि पर्यटन किसी भी सीमा से ऊपर की चीज़ है। इसलिए पलामू की जब भी हम बात करें, तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि वो स्थल पलामू में ही हो। वो स्थल पलामू के बाहर या पलामू के निकट भी हो सकता है। अब हम यहाँ से कुछ पर्यटन स्थलों की जानकारी ले लें। हम पलामू में हैं और स्थानीय पर्यटन की बात करें तो बेतला टाइगर रिजर्व, लोध फॉल और नेतरहाट, ये तीन पर्यटन स्थलों का नाम प्रमुखता से आता है। बेतला नेशनल फॉरेस्ट पलामू कमिश्नरी के हेडक्वार्टर डाल्टनगंज से बाईपास रोड से मात्र 24 किलोमीटर पर है, जबकि यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन बरवाडी और डाल्टनगंज दोनों हैं और दोनों ही स्थान बंगाल की राजधानी कैलकटा एवं हमारे देश की राजधानी दिल्ली से सीधे जुड़े हुए हैं। पर्यटकों को बेतला पहुंचना भी बहुत आसान, सिर्फ 25 किलोमीटर के फासले पर बेतला राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, जहां रहने के लिए अच्छे अच्छे होटल भी खुल गए हैं। टूरिस्ट वाहनों का सीधा सेवाएं तो कम है, लेकिन आप बस, ऑटो या कार बुक कर वहां पहुंच सकते हैं। बेतला नेशनल पार्क 2600 स्क्वायर किलोमीटर का कोर फॉरेस्ट है। बेतला नेशनल फॉरेस्ट की सीमा एक ओर जहां छत्तीसगढ़ के सतपुरा जंगल से जुड़ी हुई है, वहीं दूसरी ओर पूर्व में हजारीबाग नेशनल फॉरेस्ट से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें समय समय पर

0: बाघों के दर्शन भी हो जाया करते हैं। बरसात के दिनों में हाथियों के झुंड को भी आप अवश्य ही देख पाएंगे। जंगली भैंसा, हिरन और बंदरों को देखना तो आम बात है। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पर्यटन लोध फॉल की ओर। लोध फॉल पलामू ही नहीं, झारखंड का सबसे ऊंचा फॉल है, जहां 110 मीटर की ऊंचाई से झरना गिरता है, जिसकी आवाज 3 किलोमीटर की दूरी तक सुनाई पड़ती है। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ ठहरने के लिए होटल नहीं है। लोध फॉल से आगे बढ़ते हैं और नेतरहाट की वादियों में अब हम आप लोगों को ले चलते हैं। नेतरहाट के बारे में मैं बता दूं कि नेतरहाट में देखने लायक कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आपको भारत में कहीं नहीं दिख सकती हैं, जिसमें भारत का गौरव कहलाने वाला नेतरहाट पब्लिक स्कूल शामिल है। यहाँ का यादगार स्थल मैग्नोलिया पॉइंट भी है, जहाँ से हम सूर्योदय और सूर्यास्त देख सकते हैं। नेतरहाट वस्तुतः नेचर प्लस हार्ट का अपभ्रंश है, अतः नेतरहाट को हम प्रकृति का हृदय भी बोल सकते हैं। सरकारी सुविधाओं में ठहरने के लिए मुख्यतः पलामू बंगला और रेवेन्यू बंगला है। इसके अलावा कुछ निजी होटल भी हो गए हैं, लेकिन सरकार को इस स्थल के विकास के लिए भी बहुत कुछ करना चाहिए, ताकि पर्यटकों की संख्या बढ़े और स्थानीय रोजगार भी बढ़े। पर्यटन में रोजगार की बात अगर करें, तो पर्यटन और रोजगार में अन्योन्याश्रय संबंध है। किसी भी स्थल का पर्यटन बढ़ता है तो सिर्फ पर्यटन ही नहीं बढ़ता, बल्कि स्थानीय रोजगार भी बढ़ता है। रोजगार के नए नए अवसर भी बढ़ते हैं। जैसे पर्यटक बढ़ेंगे तो उनके लिए टिकटें भी बुक होंगी, स्थानीय वाहनों की भी जरूरत होगी। जाहिर सी बात, निजी पर्यटक कार्यालय भी खुलेंगे, जिसमें स्टाफ की नियुक्ति होगी, वाहनों के लिए ड्राइवर की व्यवस्था होगी, स्थानीय चालकों को रोजगार मिलेगा। अब जो पर्यटक स्थल पहुंच जाएंगे, उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए होटलों की व्यवस्था होगी। तय बात है कि स्थानीय लोगों की नियुक्तियां होंगी और रोजगार बढ़ेंगे। भारत के कोने कोने से, जहां तक कि विदेशों से भी पर्यटक जब आएंगे, तो यहाँ की खूबसूरती को देखने के साथ ही साथ यहाँ की संस्कृति को भी देखेंगे और यहाँ के खान पान का भी मजा लेंगे। खासकर ऐसा देखा गया है कि स्थानीय पर्यटक यहाँ विदेशी व्यंजन एवं कॉन्टिनेंटल डिशेस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वहीं विदेशी या मेट्रोपॉलिटन से आए हुए पर्यटक देशी या स्थानीय खान पान का मजा लेना चाहते हैं। अतः हमारे यहाँ के देसी व्यंजनों के लिए भी एक बेहतर अवसर होगा। आप सभी स्थानीय हैं और यहाँ के कुछ स्थानीय व्यंजन तो बड़े ही लाजवाब हैं, जैसे करील और करील का अचार, ओल की चटनी, धुसका, दुधौरी, अरसा और भी न जाने कितने ही व्यंजन झारखंड और पलामू की रसोइयों में भरे पड़े हैं। पर्यटक आएंगे तो मार्केटिंग राष्ट्रव्यापी हो जाएगी। जाहिर सी बात है, यहाँ का धुसका, यहाँ के लट्ठो और यहाँ का दुधौरी अपने आप में असीम रोजगार की संभावनाओं को समेटे हुए हैं। जरूरत है हमें और सरकार दोनों को इसके लिए रास्ता बनाने की। हम देखते हैं कि पलामू में पर्यटन भी है, पर्यटन की असीम संभावनाएं भी हैं, लेकिन समस्त भारत के पर्यटक पलामू के पर्यटन स्थल को देखना चाहते भी हैं। अतः झारखंड सरकार से पहली प्राथमिकता में झारखंड और खासकर पलामू पर्यटन को विकसित करने की अपील करते हैं, जिससे स्थानीय लोगों का रोजगार भी बढ़े और राज्य की भी अतिरिक्त आय बढ़े। नमस्ते
1: दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे वार्ता, विषय था पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार। वार्ताकार थे आदित्य त्रिवेदी। दोस्तों, इस वार्ता के बाद आइए अब हम चर्चा करते हैं अल्पसंख्यक युवाओं के लिए सरकारी कार्यक्रम के बारे में। जहां दोस्तों, भारत सरकार का उद्देश्य है कि समाज के सभी वर्गों को शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के समान अवसर मिले। इसी उद्देश्य से अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के मुख्य सिख, ईसाई, मुस्लिम और बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय शामिल हैं। इन समुदाय अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए सरकारें विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करती है। दोस्तों पहला है छात्रवृत्ति योजनाएं। जी हाँ दोस्तों, सरकार आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है। इससे विद्यार्थियों की फीस, किताबें और अन्य शैक्षणिक खर्चों में सहायता मिलती है। छात्रवृत्ति के माध्यम से कई युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने सपने को पूरा कर रहे हैं। दोस्तों दूसरा है कौशल विकास कार्यक्रम। युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इनमें कंप्यूटर, सिलाई, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटी एंड वेलनेस, तकनीकी प्रशिक्षण आदि शामिल हैं। इन कार्यक्रम में युवा आत्मनिर्भर बनते हैं और रोजगार के अवसर प्राप्त करते हैं। दोस्तों तीसरा है स्वरोजगार को बढ़ावा। जी हाँ दोस्तों, सरकार युवाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण और प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराती है। इससे वे स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकते हैं और दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। दोस्तों चौथा है करियर मार्गदर्शन और प्रतियोगी प्रशिक्षण तैयारी की। कई सरकारी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, करियर काउंसलिंग और मार्गदर्शन दिया जाता है। इससे वे सरकारी नौकरियों और अन्य पेशेवर छात्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों पांचवा है महिला सशक्तिकरण। अल्पसंख्यक युवाओं की समुदायों की युवा शक्ति के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनका उद्देश्य शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। इससे समाज में महिलाओं की भागीदारी और समानता बढ़ती है। दोस्तों अल्पसंख्यक युवाओं के लिए सरकारी कार्यक्रम केवल सहायता देने तक ही सीमित नहीं, बल्कि उनका उद्देश्य युवाओं को शिक्षित, कुशल और आत्मनिर्भर बनाने का है। हमें इन योजनाओं की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उसका लाभ उठाकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। दोस्तों अभी हम बातें कर रहे थे अल्पसंख्यक युवाओं के लिए सरकारी कार्यक्रम के बारे में। इसके बाद आइए सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ हमारा आज का युवानी कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दें आपकी दोस्त आराध्या माही को। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

तक के मुख्य समाचारों के साथ में पूनम केरकेट्टा। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह का दूसरा चरण आयोजित हुआ। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। मौके पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत लोक कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह सर्वोच्च पुरस्कार दिशोम गुरु की पत्नी रूपी सोरेन ने राष्ट्रपति से प्राप्त किया। मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक कल्पना सोरेन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वोटर मैपिंग का दूसरा और अंतिम सत्र 30 जून से शुरू होगा। इस सिलसिले में बीएलओ और बीएलओ प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज देवघर के मधुपुर और दुमका के जरमुंडे में प्रशिक्षण का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी 3 जुलाई को दुमका गोविंदपुर संचरण लाइन का लोकार्पण करेंगे। धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि मुख्यमंत्री ऑनलाइन ग्रिड सब स्टेशन और संचरण लाइनों का लोकार्पण रांची से करेंगे। मौके पर मुख्यमंत्री 220 केवी दुमका गोविंदपुर संचरण लाइन का भी लोकार्पण करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक

दिवस पर झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी द्वारा रांची में रन फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक दौड़ का आयोजन किया गया। पुराना विधानसभा से धुरवा गोल चक्कर होते हुए वापस पुराना विधानसभा तक आयोजित इस दौड़ में पूर्व अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों युवा खिलाड़ियों तथा खेल प्रेमी

0: इलाकों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी।

0: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को रागिनी कुमारी का प्यार भरा नमस्कार
1: और साथ ही प्रतिमा वर्मा का भी नमस्कार।
0: स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। कार्यक्रम में सबसे पहले आज बातें करेंगे पशुओं का टीकाकरण समय पर जरूरी की।
1: ग्रामीण भाइयों, पशुओं को समय पर टीका लगवाना उनके स्वास्थ्य की रक्षा और बीमारियों की रोकथाम के लिए बेहद ज़रूरी है। सही समय पर टीकाकरण पशुओं के रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, जिससे वे जानलेवा बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं और नुकसान से बचते हैं। पशुओं के लिए कुछ प्रमुख टीकों की अगर हम बात कर लेते हैं और उनके समय की, तो कुछ यूँ हैं। खुरपका मुँहपका रोग, जिसे FMD भी कहते हैं, ये बीमारी पशुओं के लिए बेहद खतरनाक है। इसके बचाव के लिए हर 6 महीने में टीके लगवाने चाहिए।
0: गलघोटू भी एक बीमारी है जिसको HS कहते हैं। बरसात के मौसम से ठीक पहले या साल में एक बार यह टीका जरूर लगवाना चाहिए ताकि पशु सुरक्षित रहे। उसी तरह एक और रोग है ब्रुसेलोसिस। यह मादा बछड़ियों में होने वाली प्रजनन संबंधी समस्या है। 4 से 8 महीने की उम्र की बछड़ियों को इसका टीका लगवाना चाहिए। टीकाकरण के कुछ लाभ भी हैं ग्रामीण भाइयों। पशुओं को अचानक होने वाले गंभीर नुकसान से बचाया जा सकता है। गंभीर बीमारियों जैसे रेबीज या ब्रुसेलोसिस से इंसानों को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। दुधारू पशुओं का दूध उत्पादन कम नहीं होता है और बीमारियों के इलाज पर होने वाला खर्च बचता है।
1: कुछ और ध्यान देने योग्य कुछ जरूरी बातें आपको बता दें। हमेशा स्वस्थ पशुओं को ही टीका लगवाना चाहिए। बीमार, कमज़ोर या तनाव में चल रहे पशुओं में टीका असरदार नहीं होता। किसी भी बीमारी के फैलने से लगभग 20 से 30 दिन पहले टीकाकरण पूरा करना चाहिए। अपने हो सके तो अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय या अपने क्षेत्र के पशु चिकित्सक से संपर्क करके आप अपने इलाके के अनुसार सही टीकाकरण चार्ट प्राप्त कर सकते हैं। और अब इसके आगे हम सुनाते हैं आपको एक लोकगीत।

0: ग्रामीण भाइयों, अभी आप भरत सिंह भारती की आवाज़ में लोकगीत सुन रहे थे और इसके बाद आपको सुनवाते हैं एक भेंटवार्ता। विषय है ओल की वैज्ञानिक खेती। भेंटवार्ताकार हैं कृषि विशेषज्ञ क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चिया की पलामू के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार। बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी संतोष कुमार।
1: अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे, चौपाल में उपस्थित सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। ग्रामीण भाई बहन, हम कार्यक्रम में आज बातें करेंगे व्यावसायिक खेती की, और व्यावसायिक खेती में हम विशेष रूप से ओल की बात आपको करने जा रहे हैं किसान बंधु। और ओल की खेती हम किस प्रकार से करें, कौन से कीड़े मकोड़े से उसको सुरक्षित करें, क्या क्या खाद उर्वरक का व्यवहार अपने खेतों में करें, और कौन से उन्नत प्रभेद को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हम प्राप्त करें, इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी आज आपके साथ साझा करने के लिए हैं पलामू जिला के कृषि अनुसंधान केंद्र चियाकी के वरीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। स्वागत है आपका सर कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: सर्वप्रथम तो हमारे ग्रामीण भाइयों को ये बताया जाए कि व्यावसायिक रूप से हमारे किसान बंधु किस ओल की खेती करेंगे, उसके उन्नत प्रभेद क्या है, और कीड़े मकोड़े से किस प्रकार रक्षा करेंगे, क्या क्या खाद उर्वरक का व्यवहार करेंगे जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें।
2: किसान भाइयों, आज हम आपको बता रहे हैं कि ओल की वैज्ञानिक खेती कैसे करें या ओल की व्यवसायिक खेती कैसे करें। ओल यानी कि आप लोग देहात में, ग्रामीण क्षेत्रों में सूरन भी बोलते हैं, और ये सब्जी के लिए और ये औषधीय के रूप में, अचार के रूप में बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती है। अगर अच्छे ढंग से बनाया जाए तो ये नॉनवेज की तरह लगता है और इसको बड़े चाव से लोग खाते हैं। तो ये हम लोग जानेंगे कि ये किस तरह की मिट्टी में के लिए उपयुक्त है। इसके लिए तो हम लोग देखते हैं कि अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए, जिसमें बारिश आए और पानी रुके नहीं और वो निकल जाए, जल निकासी हो जाए। और बलुई दोमट हल्की मिट्टी होती है, जिसकी खेत किसान भाई बालू का अंश अच्छा हो, दोमट मिट्टी हो, बलुई दोमट, तो उसमें जो है इसका ओल का उत्पादन अच्छा होता है। हालांकि हम लोग खेतों के साथ साथ में जो है हम लोग इसको बगीचा में भी हम लोग इसका उत्पादन कर सकते हैं। अगर आपके बगीचा के बीच में भी इसकी खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये छायादार जगह में भी इसका उत्पादन होता है। तो हम लोग आइए चर्चा करते हैं कि इसकी कौन सा प्रभेद की जो है हम लोग करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बाजार में जो उपलब्ध है ओल की, तो वो गजेंद्र ओल होता है, जो कि एक ही 2 kg का 3 kg का 4 kg का होता है और जिसमें टेढ़ा वड़ा नहीं निकला रहता है। किसान भाइयों, ये हम लोग जब बात करते हैं ओल की, तो देसी ओल और ये जो प्रभेद है गजेंद्र ओल, जो बड़ा का साइज का होता है, तो देसी ओल 2 या 3 साल में जो है 250 ग्राम से आधा kg के होता है, और इसे हम लोग व्यावसायिक उत्पादन नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा लाभ नहीं ले सकते हैं। और ये खाने के, कभी कभी लोग किसान कहते हैं कि खाने में ये थोड़ा कम स्वादिष्ट लगता है और देसी ओल ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं बता दूं कि देसी ओल में हम लोग जो है बहुत ज़्यादा खट्टा, बहुत ज़्यादा लहसुन प्याज इसका इस्तेमाल करते हैं, और उतना ही इसमें इस्तेमाल करें तो ये भी स्वादिष्ट लगता है। तो ये रही खाने की बात। लगाने की विधि किसान भाई जान जाए कि इसका जो लगाने का विधि और समय, तो समय हमारा उपयुक्त है 15 मार्च के बाद, हम लोग जब गर्मी पड़ती है 15 मार्च से लेकर हम लोग मई तक गर्मी जब ज़्यादा खूब पड़ती है, तो इसका लगाने का सबसे उपयुक्त समय है। सिंचित अवस्था और असिंचित अवस्था, यानी सिंचाई की सुविधा है तो हम लोग इसको अप्रैल में, मई में लगा सकते हैं। अगर किसी किसान के पास सिंचाई की सुविधा नहीं है तो जून और जुलाई के महीने में जब वर्षा आ जाती है तब इसकी ओल की खेती कर सकते हैं। तो दोनों स्थिति में ये कर सकते हैं। तो हम लोग लगाने की विधि की चर्चा कर लें पहले किसान भाई, कि जब भी ओल की खेती करें तो हम लोग गड्ढा करते हैं, तो गड्ढा की जो है गहराई और चौड़ाई जो है 40 सेंटीमीटर के आसपास, माने 1.25 फीट के आसपास में हम लोग गड्ढा करते हैं, और जो है उसमें मिट्टी, कंपोस्ट, मान का खाद डाल के हम लोग उसको भरते हैं। लेकिन भरने के पहले उसको बीज उपचार जरूर कर लें।
1: अच्छा।
2: क्योंकि जब किसी चीजों को हम लोग गजेंद्र ओल की बात करते हैं, तो ये कोई 2 किलो का होता है, कोई 3 किलो का होता है, कोई 1 kg का होता है, तो हम लोग कितना बड़ा टुकड़ा को लगाएं।
1: अच्छा।
2: तो हम लोग जो है 500 ग्राम के आसपास, अगर हम लोग व्यवसायिक दृष्टिकोण से ओल की खेती करते हैं, तो 500 ग्राम का टुकड़ा होना चाहिए। कैसे काटे किसान भाई, तो देखे होंगे ओल जब रहता है तो उसके बीच में गड्ढा होता है
1: जी।
2: तो ऐसे काटें जैसे 1 किलो का ओल है, तो आप काटते हैं तो बीच में अगर काटते हैं तो आधा आधा केजी का हो जाए, लेकिन गड्ढा वाला हिस्सा दोनों हिस्सा में रहना चाहिए।
1: अच्छा।
2: वहीं से आंख निकलता है, वहीं से वो निकलता है ओल, इसलिए गड्ढा का हिस्सा। अगर हम लोग 2 किलो का ओल है तो हम लोग उसमें एक प्लस तरह का चाकू लगाएंगे बड़ा वाला, तो चार टुकड़ा में काट देंगे, एक बार चाकू सीधा एक बार हम लोग हॉरिजॉन्टल लगाएंगे, और लेकिन चारों हिस्सा में वो गड्ढा वाला हिस्सा अवश्य रहे। जब किसी चीजों को हम लोग काट देते हैं तो बीज उपचार करना अवश्य हो जाता है। तो हम लोग किसी भी फफूंद नाशक दवा कार्बंडाजिम का इस्तेमाल करेंगे और टब रखेंगे, उसमें 15 लीटर पानी रखेंगे और 30 ग्राम कार्बंडाजिम पाउडर को डाल देंगे।
1: अच्छा,
2: तो 30 ग्राम डाल के घोल लिए और सभी ओल को जो है हम लोग डुबा डुबा के उसमें निकाल लेंगे और 5 मिनट रख के निकाल देंगे। अब ओल का बीज जो है उजला हो जाएगा, यानी बीज उपचार हो गया, अब उसमें सड़ने की संभावना कम हो रही। तो हम लोग जो है देखते हैं कि जहाँ पर जो पोर्शन गड्ढा कर दिए थे, गड्ढा करने के बाद किसान भाई उसकी मिट्टी को बाहर निकाल देते हैं, उसमें मान का खाद और उर्वरक जो हम लोग अभी बात करेंगे उसकी चर्चा भी करेंगे, तो उसको हम लोग डाल के गड्ढे को भर देते हैं।
1: अच्छा।
2: और फिर हम लोग 6 इंच में ऊपर से गड्ढा करके उस ओल को नीचे डाल देते हैं और कटा वाला पोर्शन जो गड्ढा वाला पोर्शन है उसको ऊपर रखेंगे
1: जी, जी,
2: और 1 इंच मिट्टी से ढक देंगे।
1: अच्छा।
2: और इस तरह से ढकने के बाद हम लोग उसका पटवन करते हैं।
1: अच्छा।
2: अब ये देखिएगा किसान भाई, जब हम लोग इसकी पौधों से पौधों की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी, हम लोग अगर हम लोग सिर्फ ओल की खेती करते हैं तो हम लोग 2-2 फीट की दूरी पर एक एक पौधों को लगाते हैं।
1: अच्छा।
2: और लाइन से लाइन की दूरी भी हम लोग 2 फीट रखते हैं
1: जी।
2: अगर किसान भाई अगर आप उसमें इंटर क्रॉप के रूप में भिंडी हो या फ्रेंच बीन लगाना चाहते हैं तो आप लोग 2-2 लाइन उसमें लगा सकते हैं, तब ओल की दूरी एक ओल से दूसरे ओल की दूरी 2.5 फीट रखेंगे, यानी 6 इंच हम लोग बढ़ा देते हैं और 2 लाइन उसमें हम लोग भिंडी और वो लगाते हैं। क्योंकि जब इसका हम लोग पटवन करेंगे अप्रैल महीने में लगा के, और उसमें भिंडी का सीजन भी होता है, फ्रेंच बीन का सीजन होता है, लत वाली सब्जियों को नहीं लगाएंगे।
1: अच्छा।
2: नहीं तो फिर ओल पर चढ़ जाएगा, तो हम लोग लत वाली सब्जियों को नहीं लगाएंगे, और उसी पटवन में आपका ओल भी होगा और उसी पटवन में आपका भिंडी और ये भी, यानी ओल निकालने का लगाने का खर्च भी हम इंटर क्रॉप के रूप में इन सब्जियों से निकाल लेते हैं
1: जी। बात चुकी इंटर क्रॉप की चल रही है सर, तो ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि जहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं तो वहाँ हमारे किसान भाई इसे लगा सकते हैं।
2: जहाँ छायेदार चीज है वहां पर सिर्फ ओल की खेती करेंगे।
1: अच्छा।
2: वहां पर इंटर क्रॉप नहीं होगा। जहां पर हम लोग खुले जगहों में लगा रहे हैं वहां पर इंटर क्रॉप की बात करते हैं ज्यादातर अमूमन किसान, चूंकि यह है बगीचा में भी हो सकता है हल्दी और अदरक की तरह।
1: अच्छा।
2: इसलिए हम लोगों ने उसकी चर्चा की अगर लगाते हैं, लेकिन वहां पर हम लोग इंटर क्रॉप के रूप में नहीं लगा सकते हैं।
1: अच्छा।
2: लेकिन इसमें जो है हम लोग बाहर में लगा सकते हैं। तो किसान भाई आपने देखा कि किस तरह से सिंचित अवस्था में कितनी पौधों से दूरी होना चाहिए। अब हम लोग बीज दर की बात कर लें कि अगर हमें 1 हेक्टेयर लगाना है 140 क्विंटल बीज लगेगा
1: जी,
2: और अगर हमें 1 एकड़ लगाना है तो 55 क्विंटल बीज लगेगा
1: जी।
2: या किसान भाई आप अपनी भाषा में बात करें तो 1 कट्ठे में 2 क्विंटल लगेगा।
1: अच्छा।
2: यानी 4.25 डिसमिल में 2 क्विंटल बीज लगेगा और 60 रुपया प्रति किलो की दर से 12 रुपया आपको 1 कट्ठे में बीज लगेगा।
1: बीज लगेगा जी।
2: जब इसकी हम लोग 8 महीना हो जाए किसान भाई, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर दुर्गा पूजा का सीजन आ जाएगा और हम लोग दुर्गा पूजा के में ओल की खेती, ओल का जो है खाना आरंभ कर देते हैं
1: जी।
2: और उस समय जो अब हम लोग गड्ढा खोदकर ओल को निकाल लेते हैं
1: जी।
2: तो अब देखते हैं कि एक ओल जो हमने 500 ग्राम का लगाया था वो अब जो है उससे जो है
1: 2 kg के
2: उससे आपका जो है 3.5 गुना ज्यादा हो गया। तो ये हम लोग देखते हैं कि अगर हम 2 क्विंटल बीज लगाए थे तो अब आपके पास 7 क्विंटल ओल कम से कम 1 कट्ठे में हो गया। यानी कि हम लोग जो है इसकी लागत खर्चा की बात करें तो लागत खर्च जो है 1 एकड़ में हम जो लोग 3.5 लाख से 4 लाख रुपया 1 एकड़ में खर्च लगेगा, बीज का खर्च, कंपोस्ट का खर्च, सिंचाई का खर्च, अन्य खर्च खेती में जो लगता है, और उसका जो शुद्ध लाभ हमको प्राप्त होगा वो आपको जो है 6 लाख रुपया प्रति एकड़, यानी लगाने का खर्च 4 लाख काट दिया जाए तो हमको 6 लाख रुपया शुद्ध आमदनी होती है। ऐसे 10 लाख आमदनी हुई और 4 लाख को हम लोग खर्च को काटें तो 10 लाख रुपया प्रति एकड़ की आमदनी होगी
1: जी, जी।
2: जिसमें कि शुद्ध लाभ जो है 6 लाख रुपया प्रति एकड़ किसान भाई होगी। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें किसान भाई आप देखते हो कि इसमें रोग और व्याधि का भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। अमूमन एक पीला होने वाला जो होता है ओल की पत्तियां डंठल पीला हो जाता है, तो फफूंद नाशक दवा का हम लोग स्प्रे कर देते हैं और उर्वरक को हम लोग लगाने के समय एनपीके का उर्वरक जो इस्तेमाल करते हैं 100-60-80 यानी कि 100-60-80 के रेशियो में हम लोग उर्वरक का प्रयोग करते हैं, डीएपी और पोटास और नत्रजन। और 30 दिनों के बाद एक बार निकाई गुड़ाई करते हैं और 60 दिनों के बाद निकाई गुड़ाई करते हैं। दोनों के बाद निकाई गुड़ाई करने के बाद हम लोग पुनः उर्वरक का प्रयोग करते हैं और सिंचाई की जो सुविधा है हम लोग जून तक सिंचाई देते हैं और जून के बाद वर्षा आरंभ हो जाती है तो जून से लेकर हमारा अक्टूबर अगस्त तक हम लोग उसकी जो है सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं, ऊपर के वर्षा से होती है। किसान भाई कभी भी ओल की खेती करने के बाद, ओल निकालने के बाद तुरंत बाजार में बेच दें, ये देखें कि नहीं दे, बेचने से क्या होता है कि जो आप अगर निकाल के अपने घरों में रख लेते हैं तो फिर मॉइस्चर लॉस हो जाता है, यानी कि 2 किलो का वो जो है घटकर 1-2 महीने के बाद में 1.5 किलो का हो जाएगा, तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर किसी को बीज के रूप में रखना है किसान भाई तो वो उसी समय फरवरी के महीने में उसको निकालेंगे और अप्रैल के महीने में पुनः लगा देंगे, यानी अगर बीज के रूप में रखना है हमको तो हम लोग बीज के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ हम लोग बीज में बेच देते हैं। तो अगर आप 8 महीने की फसल है, 6 महीने में आप 6 महीने के बाद आप थोड़ा थोड़ा निकाल के आप उसकी बिक्री कर सकते हैं जैसा रेट रहता है। अब बाजार में देखते हैं ओल जो है 80 रुपया के बाद हम लोग करते हैं, अभी तो हम लोग 60 रुपया के हिसाब से जोड़ा किसानों को, तो और लाभ ज्यादा बढ़ सकता है,
1: विशेषकर दुर्गा पूजा में इसकी मांग ज्यादा
2: मांग और ये निकलता है दुर्गा पूजा के आसपास। तो आप लोग अगर हल्की मिट्टी है, बलुई दोमट मिट्टी है, आलू वाली खेती जिस तरह करते हैं अच्छी जुताई करके, आप किसान भाई मेढ़ों पे भी लगा सकते हैं।
1: अच्छा,
2: तो मेढ़ पे लगाने से क्या होता है कि उसका जो है गड्ढा खोदते हैं तो उसमें फैलने का चांसेस, मिट्टी ढकने का चांसेस बढ़ जाता है, जिसके चलते हम लोग उसका उत्पादन और बढ़ जाता है। और अमूमन इसको जानवर नहीं खाता है तो ये होती है कि यहाँ पर जानवर की चरने की समस्या है तो जानवर से भी हम लोग प्रोटेक्शन हो जाता है अगर ओल की खेती करते हैं।
1: अच्छा, बात चूंकि जून तक आप बोल रहे थे सिंचाई के लिए, तो जून तक में कैसे देखते हुए हमारे किसान भाई सिंचाई,
2: किसान भाई हाँ एक बार ध्यान देंगे कि हम लोग पहली बार में जब है ओल को आपने मिट्टी में दबा दिया तो 3 पटवन 7-7 दिन के बाद करेंगे तब 20 से 25 दिनों के बाद बस करेल की तरह ओल निकलना शुरू हो जाता है, घबराए नहीं तब तक।

0: 25 दिनों के बाद ओल निकलता है, 20 दिनों के बाद निकलता है, तो कभी कभी चिंतित हो जाते हैं किसान की ओल नहीं निकल रहा है। और उसके बाद में हम लोग पटवन, जिसके पास सिंचाई की सुविधा है वही किसान अभी करेंगे, और जिसके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है वो आप जो है जून जुलाई में खेती करेंगे
1: जी।
0: तो हम लोग अपने क्षमता के अनुसार, किसी किसान के पास 4 कट्ठा 5 कट्ठा में ओल करते हैं, या कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, महिलाएं जो जुड़ी हुई हैं और अपने ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के कार्यक्रम करके अच्छा आय का स्रोत प्राप्त कर सकती हैं, और इसकी बिक्री में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक कहावत है कि भादो महीना में ओल के जो खाता है या तो राजा होता है या तो चोर, यानी कि ये इतनी महंगी सब्जी है कि जिसको कि या तो मैंने अच्छे पैसे वाले खरीदते हैं या फिर कोई चोरी करके खा जाए, तो इस तरह की चीजों को हम लोग जो है ओल की खेती करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं किसान भाई।
1: अच्छा, कंद ज्यादा बैठे इसके लिए हमारे किसान भाई क्या करें?
0: किसान कंद ऐसा बैठे, ये जो बैठे इसके लिए हम लोग बलुई दोमट और मान का खाद, कंपोस्ट का खाद और
1: अधिक
0: उसमें डालते हैं, और गड्ढा का साइज हम लोग इस तरह से करते हैं कि जो भुरभुरी मिट्टी होती है ना,
1: अच्छा,
0: इसमें विकास ज्यादा होता है। अगर काली मिट्टी है, हार्ड मिट्टी है, तो इसमें ओल का विकास कम होता है, तो उसमें उत्पादन हमारा कम हो सकता है। यानी कहने का मतलब, जो हम लोग 3.5-4 गुना ओल जो होता है ये हमको बलुई दोमट मिट्टी में अच्छा है। और किसान कोई अच्छी से और इससे खेती करता है तो उसका जो है 4 गुना से भी बड़ा ओल हमारा निकल सकता है। तो उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं, किस तरह से खेती,
1: मतलब मिट्टी जितनी भुरभुरी करें वो आपको फायदा।
0: हाँ, मिट्टी जितनी भुरभुरी हो और तो उसमें ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा
1: जी। अच्छा, ओल की व्यावसायिक खेती से संबंधित और वैसी कोई बातें, महत्वपूर्ण बातें जो छूट रही हूँ?
0: किसान भाइयों, अगर इसका बीज को उपलब्धता की बात होती है तो हमारे यहाँ से जितने भी लोग हैं समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, इस सब एरिया में बड़े पैमाने पर ओल होती है, और यहाँ पर भी किसान जो है ओल की खेती करते हैं वहाँ से। हाँ, बाजार से जो ओल बिक रहा है उस ओल का खरीद के बीज के रूप में किसान भाई ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बाजार में जो बिकने खाने वाला ओल आता है ये ट्रक साउथ से ट्रक में भरा हुआ 1 महीने के 20 दिनों में चल के आता है, तो टकरा के उसकी आंखें खराब हो जाती है। तो आप किसान के यहाँ से संपर्क करें, वहां के खेतों से लाएं, तो ज्यादा सावधानी के रूप में हम लोग देखें तो इस तरह की चीजों करें और बीज उपचार करके अवश्य लगाएं, ताकि आपका ओल का उत्पादन अच्छा होगा
1: जी। मतलब आंखों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है इसमें। आप थे पलामू जिला के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियाकी के वरीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। हमारे कार्यक्रम से जुड़े और हमारे ग्रामीण भाइयों को ओल की व्यावसायिक खेती से संबंधित विस्तृत जानकारियां साझा की आपने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी हमारे ग्रामीण भाई सुन रहे थे ओल की वैज्ञानिक खेती, इस विषय पर भेंटवार्ता क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियाकी पलामू के भेंटवार्ता का थे डॉक्टर प्रमोद कुमार, कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर मोहित कुमार, और बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और इसके बाद बात करते हैं टपक सिंचाई के अनेकों लाभ की। ग्रामीण भाइयों, टपक सिंचाई कृषि में पानी की भारी कमी और भूजल स्तर को गिरने से बचाने के लिए एक बेहद उन्नत और लाभकारी आधुनिक तकनीक है। इसमें पानी और जरूरी पोषक तत्वों को पाइपों के जरिए सीधे पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। टपक सिंचाई के बहुत सारे लाभ हैं: पानी की भारी बचत, उर्वरकों का सही उपयोग, पैदावार में वृद्धि, खरपतवार और कीटों में कमी, असमतल भूमि के लिए उपयोगी, और श्रम और समय की बचत। सबसे पहले बात करते हैं पानी की भारी बचत की, तो यह प्रणाली पारंपरिक सिंचाई की तुलना में लगभग 50% से 70% तक पानी बचाती है। पानी का वाष्पीकरण और बहकर बर्बाद होना बिल्कुल रुक जाता है, जिससे सीमित जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है। उर्वरकों यानी खाद का सही उपयोग, तो पानी के साथ ही घुलनशील उर्वरकों यानी फर्टिगेशन को भी सीधे जड़ों तक पहुंचाया जाता है। इससे खादों की बर्बादी कम होती है और पौधों को पूरा पोषण मिलता है, जिससे 25% से 30% तक खाद की बचत होती है। अब बात करते हैं पैदावार में वृद्धि की, तो पौधों को उनकी आवश्यकता के अनुसार नियमित और समान रूप से नमी मिलती रहती है। इससे फसलों की पैदावार 20% से 50% तक बढ़ जाती है और फसलें समय से पहले तैयार हो जाती है। और खरपतवार और कीटों में भी कमी होती है। टपक सिंचाई में पानी सिर्फ पौधे की जड़ में जाता है, जिसके कारण खेत के खाली हिस्से सूखे रहते हैं। इस वजह से अनावश्यक खरपतवार नहीं उगते और

0: बीमारियों यानी कीटों का प्रकोप काफी कम हो जाता है।
1: ग्रांड भाइयों, और समतल भूमि के लिए भी उपयोगी है यह तकनीक। उबड़ खाबड़ ढलान वाली रेतीली या कम उपजाऊ यानी खारी जमीन पर ही बेहद सफलतापूर्वक काम करती है। श्रम और समय की बचत भी करती है। पारंपरिक सिंचाई के लिए खेत में लगातार मौजूद रहने की आवश्यकता होती है, जबकि टपक सिंचाई में वॉल्व या टाइमर की मदद से पूरा खेत एक साथ संचालित हो जाता है, जिससे मजदूरों और समय की काफ़ी बचत हो सकती है।

0: अभी बात कर रहे थे टपक सिंचाई से लाभ की, और हमारा समय भी आपसे विदा लेने का हो चला है, इसलिए बातें आज बस यही तक। तो इसी के साथ कार्यक्रम खेतीबाड़ी से अब दीजिए रागिनी कुमारी और
1: प्रतिमा वर्मा को
0: अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज पर। अभी हमारे कृषकों और ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम आप सुन रहे थे, खेती बाड़ी। कृषकों को संबोधित कार्यक्रम हम थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे किसान वाणी। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को प्रतिमा वर्मा का प्यार भरा नमस्कार
1: और साथ ही रागनी कुमारी का भी नमस्कार।
0: सबसे पहले बातें हर बार की तरह समसामयिक कृषि कार्य की। मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहेगा, हल्की से मध्यम वर्षा के कारण तापमान में हल्की कमी की संभावना है और वातावरण में नमी बनी रहेगी। गरज चमक, तेज हवाओं और वर्षा की संभावना के कारण मौसम अस्थिर रह सकता है। फसलों का गिरना और फसलों का टूटना भी हो सकता है। गरज चमक के साथ आंधी तूफान, तेज हवाएं और सतह पर तेज हवाएं चल सकती हैं। पिछले दिनों हुई भारी वर्षा और आने वाले दिनों में भी वर्षा की संभावना को देखते हुए किसान भाई किसी भी फसल की बुआई से पहले जल निकासी सुनिश्चित करें, तभी बुआई के लिए जाएं। विभिन्न खरीफ फसल की बुआई का उपयुक्त समय 30 जून तक है। धान के फसल को छोड़कर अन्य सभी फसल की बुआई मेड़ बनाकर ही करें। रोपा धान वाले खेतों में जल जमाव के लिए मेड़ को दुरुस्त रखें और विभिन्न सब्जियों और फसलों के खेतों से समुचित जल निकास के लिए व्यवस्था बनाए रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई रोक दें और जल निकास की सुविधा रखें। परिपक्व सब्जियों की तुड़ाई और गर्मा मक्का की कटाई के लिए साफ मौसम का इंतज़ार करें। मौसम साफ होने तक खाद या कीटनाशकों का छिड़काव रोक दें। वर्षा जल संचयन के लिए अपने खेत के निचले भाग में छोटे छोटे गड्ढे यानी डूबा का निर्माण करें। बारिश के बाद जल्दी बोई गई सब्जियों मुरझाने की समस्या होने पर 1.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 25 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
1: अब बात करते हैं रागी की। तो मड़ुआ यानी रागी सूखे और बदलते मौसम को झेलने में बहुत ही सक्षम फसल है। धान जैसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत वाली फसलों की तुलना में इसे बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। फसल लेने हेतु किसान भाई खेत की तैयारी करें, 3 से 4 बार की अच्छी तरह से जुताई कर लें और पाटा चला दें। गोबर की सड़ी खाद 2 टन प्रति एकड़ की दर से अच्छी तरह से मिला लें। मड़ुआ टाँड़ जमीन में बोई जाने वाली फसल है, इसलिए जल निकासी का अच्छी तरह से प्रबंध करें। अरहर की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। बीज किसी प्रमाणित सेट से ही खरीदें। बीजों को बोने से पहले अरहर के लिए उपयुक्त राइजोबियम और फास्फोरस में घुलनशील बैक्टीरिया से उपचार करें और अच्छे अंकुरण के लिए खेत में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है। इस उपचार से बीजों के अंकुरण और उत्पादन में वृद्धि होती है। अरहर की उन्नत किस्में हैं LRG 41, बिरसा अरहर 1, नरेंद्र अरहर 1 एवं 2, बहार ICPH 2671। इनमें से किसी एक किस्म का चुनाव करें। अब बात करते हैं मक्का की। तो मिट्टी में मौजूद नमी का इस्तेमाल करके बुआई का काम पूरा करें और यह पक्का करें कि पानी की निकासी ठीक हो ताकि जड़ों के आसपास पानी जमा न हो। फॉल आर्मी वॉर्म के प्रकोप पर नज़र रखें। पौधे के ऊपरी हिस्सों की नियमित रूप से जांच करें। बारिश के बाद निराई गुड़ाई से जुड़े जरूरी काम और खरपतवार हटाने का काम करें। नाइट्रोजन का टॉप ड्रेसिंग तभी करें जब मिट्टी में पर्याप्त नमी हो।
0: और अब बातें चावल की। बीज स्थली में समुचित नमी बनाए रखें और बीज स्थली के चारों तरफ जल निकास के लिए बनाई गई नालियों को दुरुस्त रखें। पहले से उगाए गए 10 से 12 दिनों के बिचड़े में यूरिया का भुरकाव 2 किलोग्राम प्रति 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की दर से करें और यूरिया भुरकाव से पहले मिट्टी में उपलब्ध नमी का अवश्य ध्यान रखें। जो किसान अभी तक बिचड़ा तैयार करने के लिए बीज स्थली में नहीं डाल पाए हैं, वे 3 से 4 दिनों के अंतराल पर क्रमशः 3-4 किस्तों में बीज बोएं और बीज स्थली को ज़मीन की सतह से थोड़ी ऊपर बनाएं। सोयाबीन फसल लगाने के लिए किसान भाई वर्षा के शीघ्र बाद बुआई करें। इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली हल्की दोमट मिट्टी उत्तम होती है। इसके लिए बीज दर 30 से 32 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से लें। उन्नत किस्में हैं बिरसा सोयाबीन 1, बिरसा सोयाबीन 2, JS 9752, RKS 18 एवं बिरसा सोयाबीन 31। बीजों को बुआई से पूर्व राइजोबियम कल्चर से अवश्य उपचारित कर लें। टमाटर की फसल में जल जमाव और जड़ों की बीमारियों से बचने के लिए पानी की निकासी का इंतजाम करें। ज़्यादा नमी से अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और बैक्टीरियल विल्ट जैसी बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए फसल की नियमित निगरानी करें। पौधों को गिरने से बचाने और बीमारियों का असर कम करने के लिए उन्हें सहारा दें। भिंडी में येलो वेन मोजेक वायरस को नियंत्रित करने के लिए नीम का तेल 2 मिलीलीटर प्रति 1 लीटर पानी के साथ सुबह के समय छिड़काव करें, या इस रोग को नियंत्रित करने के लिए पीले चिपचिपे जाल का भी उपयोग कर सकते हैं आप।

0: हम बातें कर रहे थे समसामयिक कृषि कार्य की, लेते हैं कार्यक्रम में छोटा सा अंतराल, अंतराल के बाद हम पुनः हाजिर होंगे।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना,
2: मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से ना।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनित।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
4: पर हम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: अंतराल के बाद एक बार पुनः स्वागत है आप तमाम किसान भाई बहनों का कार्यक्रम किसान वाणी में। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता, एक सफल किसान से भेंट, आलू की जैविक खेती और मोटे अनाजों की खेती, इस विषय पर आपको वार्ता सुनवाते हैं। भेंट वार्ताकार हैं मुन्नी हस्सा, जो चेते उदयपुर रामकंडा गढ़वा की हैं, गढ़वा के हैं। भेंट करता है संतोष कुमार।
1: अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे सभी किसान भाई बहन को हमारा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाणी में। ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं एक सफल किसान। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार।
2: नमस्कार आपको भी।
1: क्या नाम हुआ आपका?
2: मेरा नाम मुन्नी हस्सा हुआ, ग्राम चेटे, पंचायत चेटे, प्रखंड रामकंडा, जिला गढ़वा।
1: और आज हम लोग किस चीज में बातें करेंगे?
2: मैं मोटे अनाज के कोदो और गुंदली पर चर्चा करूंगा।
1: वाह, और मोटे अनाजों की खेती यानी गढ़वा में, इस जगह जहां आप नाम लिए गांव का?
2: जी, मैं खुद इसका खेती करता हूं। बीते वर्ष में
1: वहां पर होते ही इसकी खेती होती है?
2: खेती
1: सिर्फ आप करते हैं कि और भी लोग करते हैं?
2: नया मैं ही शुरू किया हूँ कोदो और गुंदली।
1: अच्छा,
2: के
1: अच्छा।
2: इसलिए मैं उसके विषय में चर्चा करता हूँ।
1: जी बोलिए।
2: तो अभी कोदो का खेती के लिए लगभग 3 एकड़ में ट्रैक्टर द्वारा जुताई किया हूँ।
1: वाह।
2: कहे कि इस साल जो है कि लगातार पानी हो रही है, वो पानी बरसने के बाद 2 चांस में ट्रैक्टर से जुतवाया हूँ। उसके बाद
1: बारिश अभी जो हुई, अब आप ट्रैक्टर से जुतवा दिए
2: हैं, ताकि फिर उसमें कुछ उर्वरक शक्ति या जो वो उस मिट्टी के अंदर है सारा चीज, उसका अंडा वगैरह नष्ट हो जाए, इसको देखते हुए हमने जुतवा दिया है 3 एकड़ लगभग में। तो जैसे उसका सीजन आएगा कोदो का, तो उसको हल द्वारा फिर हल बैलों से उसको फिर जोत देंगे और छींट देंगे।
1: अच्छा।
2: इसमें मतलब कि कोई खाद की जरूरत खास जरूरत नहीं होती है कोदो का खेती में।
1: अच्छा।
2: और इसका खेती जो है कि बहुत अच्छी तरीके से होता है, कम पानी में भी होता है कोदो का खेती। इसके मतलब 2 महीने लगभग समय लग जाता है तैयार होने में।
1: अच्छा।
2: खुदों का तैयारी होने में।
1: अच्छा।
2: और अच्छा इनकम इससे आता है। बीते वर्ष भी मैं लगाना स्टार्ट किया हूँ, तो इन साल ज्यादा से ज्यादा लगाने का विचार है।
1: अच्छा।
2: फिर जो है कि आपका गुंदली भी जो है कि पहले हमारे क्षेत्र में नहीं बोते थे।
1: अच्छा।
2: तो वो भी हम बीते साल से ही शुरू किया हूँ गुंदली का बुआई। और फिर जहाँ मैं अपना कार्यालय में रहता हूँ वहाँ भी प्रैक्टिकल के लिए हम लगाए हैं थोड़ा सा जगह में, कि या सीजनली होता है या धूप के मौसम में भी होता है, उसको मतलब प्रैक्टिकल के लिए यहाँ अपना कार्यालय में भी लगाया हूँ।
1: अच्छा, तो क्या रिजल्ट मिला?
2: अभी एकदम अच्छा दाना बैठा है, बड़ा बड़ा बाली दिया है।
1: अच्छा।
2: तो इससे हमको जानकार होता है कि सिर्फ उनको सीजनली नहीं पानी की आवश्यकता है, वो हर सीजन पर होगा।
1: तो हम तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे अगर किसान भाई लोग मड़ुआ की खेती अगर करना चाहें कुछ, और खासकर कोदो की खेती अगर करना चाहें हमारे किसान भाई लोग, तो तैयारी कैसे करेंगे ये बताएं।
2: तैयारी जैसे ही पानी बरसता है तब

0: अपनी खेत को जुताई कर ले। जुताई करते हैं तो जैसे घास वगैरह पहले निकलता है वो मतलब मर जाएगा धूप के चलते, और जो भी उसमें कीड़े मकोड़े जो अंडा किए हुए हैं सारा चीज वो नष्ट हो जाएंगे,
1: ठीक,
0: ताकि वो पौधा जो है कि अच्छी तरीके से बढ़ने में सुविधा हो जाता है।
1: अच्छा,
0: और गुंदली का भी वही है कि गुंदली भी उसी तरीके से खेती किया जाता है।
1: मैंने 2-3 बार आप पाटा चला दीजिए, हल चला दीजिए, है ना,
0: हो जाता है। अच्छा, फिर उसके अलावा उसमें अगर दो किस्म के खेती करना चाहते हैं गुंदली के साथ, रहर भी उसमें मिला सकते हैं।
1: अच्छा,
0: कोदो के खेत में भी आप रहर मिला सकते हैं।
1: अच्छा,
0: एक ही साथ दो फसल का लाभ आप ले सकते हैं।
1: लेकिन कोदो में तो पानी चाहिए ना।
0: पानी तो वही बारिश से होगा, ज्यादा पानी की आवश्यकता,
1: ज्यादा पानी की आवश्यकता
0: आवश्यकता
1: नहीं,
0: नहीं।
1: उसी में अरहर भी हो जाएगा।
0: अरहर भी हो जाएगा, अरहर तो वो लेट से होगा, लेकिन एक फसल तो आप पहले ही काट चुकेंगे कोदो तो।
1: अच्छा, गुंदली की बात बार बार आ रही है, तो गुंदली के यहाँ खरीदार हैं?
0: खरीदार अभी जो है कि बीते साल से ही मैं इसका शुरुआत किया हूँ खेती करने के लिए।
1: अच्छा,
0: कहे कि इस क्षेत्र में, हमारे गढ़वा क्षेत्र में, हम लोग छोटे छोटे थे उस समय हमने देखा था गुंदली और कोदो,
1: अच्छा
0: इसके बाद लुप्त हो गया,
1: अच्छा
0: तो फिर से इसका शुरुआत किया हूँ मोटे अनाज के तौर पर।
1: और
0: एक एक खेती फिर करता हूँ, साठी बोलते हैं, साठी धान,
1: अच्छा,
0: जो जिसका बाल रहता है अंदर ही उसके दाना रहता है, दिखाई नहीं देता है।
1: साठी धान,
0: साठी धान जो है कि आपको छोटा छोटा क्यारी में, मैंने कम पानी में भी उसके
1: नहीं, जहाँ भी क्यारी खाली लग रहा हो साठी धान,
0: हाँ
1: लगा
0: साठी
1: दीजिए।
0: धान लगा दीजिए। और यानी साठी धान कहे कहा जाता है कि वो 60 दिन में तैयार हो जाता है,
1: अच्छा,
0: और उसको खाने में मतलब कि उसका माड़ भी इतना स्वाद लगता है कि आप उसके माड़ को भी नहीं फेंकिएगा, सारा चीज सब खाते जाइए।
1: अच्छा, ये जो भी खेती हो रही है, इसमें जो भी खेती आप कर रहे हैं, मड़ुआ, गुंदली, कोदो, साठी धान, तो इसमें आप किसका प्रयोग करती हैं? खासकर ये खाद की बात हम करें तो किसका प्रयोग करते हैं?
0: गोबर खाद का खेती
1: गोबर
0: करते हैं
1: खाद का प्रयोग करते
0: अभी तक हमारे क्षेत्र में। जो पुरानी तरीके से जो खेती कर रहे हैं वो पारंपरिक जो खेती है उसमें केमिकल वाला जो है ना कि यूरिया वगैरह
1: जी जी
0: ये सब खाद का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ जो है कि गोबर खाद का प्रयोग
1: यूज
0: करते
1: हो रहा
0: हैं,
1: है, हाँ,
0: वही सिर्फ करते हैं, और अच्छा लाभ मिल जाता है वही खाद से। यूरिया और DAP की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
1: अच्छा, ये जो आपको लगा कि हम इस तरह का कुछ अनुसंधान करते हैं कि हम गुंदली हमेशा उगा सकते हैं कि नहीं, या और भी बृहद पैमाने पर जो आपको मोटे अनाजों की खेती करने की जो अंदर से जो लालसा जो हुई, तो इसका प्रशिक्षण कहीं लिए थे आप?
0: नहीं, स्वयं अपने को अपने मन के से ही, मैंने अपने दिमाग से ही सारा चीज़ कर रहे हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ, जैसे कि आपको बताया कि गुंदली के जो है कि सीजनली लगता है या धूप के मौसम में भी, उसका भी प्रैक्टिकल करके हमने देखा है। यहाँ टेमराही जिस संस्था में काम करता हूँ, नवजागरण ग्रामीण विकास समिति में काम करता हूँ 2-3 साल से, तो यहाँ कार्यालय में उसको प्रैक्टिकल के लिए हम लगाए हैं।
1: कहाँ है ये
0: संस्था अभी पलामू में चल रहा है, नवजागरण ग्रामीण विकास समिति,
1: तो इसमें इससे मतलब प्रेरणा लिए आप?
0: हाँ,
1: अच्छा,
0: तो वहाँ पानी का सुविधा है और वहाँ अपने ऑफिस के सामने ही लगाया हूँ गुंदली, और लंबा लंबा बाली दिया है, तो इसमें पता हुआ कि धूप के मौसम में भी ये गुंदली हो सकता है।
1: अब बृहद पैमाने पर,
0: जहाँ के सिंचाई का सुविधा हो, इसमें खाद की कोई उतना आवश्यकता नहीं है,
1: अच्छा,
0: क्योंकि मैं बिना खाद का ही वहाँ लगाया।
1: तो सिंचाई की व्यवस्था ऐसे है कि नहीं गांव में?
0: गांव में है, मेरा कुआं है।
1: अच्छा, मनरेगा के तहत है?
0: हाँ, मनरेगा के तहत है,
1: उससे लिए?
0: हाँ, उससे लिए।
1: कब लिए थे?
0: 3 साल हो गया, 3 साल हो गया।
1: मतलब सरकारी योजना का लाभ भी आप
0: ले चुके हैं?
1: एक कुआं मिला आपको?
0: एक कुआं भी ले चुके हैं, फिर जो बैंक द्वारा जो KCC बोलते हैं, एक बार बैल लिए थे, वो सब सारा चीज जो है कि हम भर दिए हैं।
1: किसान क्रेडिट कार्ड से भी आप?
0: हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड से भी जुड़े हुए हैं,
1: और वो भी आपको मतलब कि बेहतर लाभ उससे आप?
0: हाँ, लाभ लेते
1: कितना
0: हैं?
1: लेते हैं इससे? मतलब 2 सीजन में लेना होता है इनको तो?
0: हाँ, तो पहले लिए थे, जब आवश्यकता नहीं है तो हम नहीं लेते हैं।
1: अच्छा, तो अभी कितना लेते हैं?
0: अभी नहीं लेते हैं, कि अभी जो नवजागरण ग्रामीण विकास समिति में काम कर रहे हैं, तो उससे कोई मानदेय कुछ मिलता है, उसी से चला
1: उसी
0: लेते
1: से
0: हैं,
1: काम
0: उसी
1: से
0: से
1: लेकिन KCC से जुड़े हुए हैं?
0: जुड़े हुए,
1: आवश्यकता पड़ने पर लेते हैं?
0: लेते हैं,
1: और फिर उसको समय वापस?
0: हाँ, उसके ब्याज जो है कि समय सा समय उसको वापस,
1: मतलब क्रेडिट बना हुआ रहने
0: बना
1: से
0: हुआ
1: काफी बढ़िया रहता है, जब भी आप चाहेंगे आप
0: लाभ ले सकते हैं।
1: अच्छा, पशुपालन की बात करें तो?
0: पशुपालन की बात, मेरे पास अभी एक नर और मादा सुअर है, जो फिलहाल शुरू करने जा रहे हैं।
1: अच्छा,
0: शुक्र पालन का।
1: अच्छा,
0: शुक्र पालन का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें अभी एक नर और एक मादा का रखे हैं। तो उससे धान का भूसा और ये देते हैं आपको, ये हंडिये का सिट्ठा बोलते हैं उसको।
1: अच्छा,
0: उसको भी देते हैं, उसमें उसको खिलाने से उसके जल्दी मोटापा पकड़ लेता है,
1: अच्छा पशु,
0: ग्रोथ अच्छा होता है
1: अच्छा
0: उसका।
1: पशु मोटा हो जाता है।
0: हाँ
1: अच्छा, लोग कहते हैं कि आप मकई वगैरह का भी दारा वगैरह खिलाइए तो काफी अच्छा।
0: हाँ हाँ दारा वगैरह अभी दारा नहीं दरवाए हैं, ऐसे ही मक्का खिला रहे हैं।
1: अच्छा, और इसके लिए बीज कहाँ से मिल जाता है आपको, ये जो मड़ुआ कुंदली वगैरह की जो बात कर रहे थे? तो
0: देखिए मड़ुआ और गुंदली जो है कि हम लोग का संस्था KBK से जुड़ा है, फिर आपका प्रखंड से भी जुड़ा है,
1: तो वहीं
0: वहाँ
1: से
0: से भी मिल जाता है, जिसे हम लोग किसान लोगों को भी दिलवाते हैं। जहाँ जहाँ हमारा समूह चलता है, नवजागरण से जो भी जहाँ जहाँ काम चलता है, वहाँ
1: जी जी
0: के स्वयं सहायता समूह को बीज दिलवाने का भी काम करते हैं।
1: अच्छा, बीज दिलवाने का काम होता
0: जी।
1: है। आगे क्या सोचे हैं?
0: आगे सोचे हैं कि जिस तरीके से जो हम लोग काम कर रहे हैं संस्था के द्वारा भी, या अपने घर परिवार में जो भी अनाज उगा रहा है, जितना कम काम कर रहे हैं, उससे और आगे मतलब बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
1: बहुत सुंदर। और सब्जियां वगैरह की खेती की बात?
0: सब्जी वगैरह की खेती की बात है, इस वर्ष अभी तो नहीं लगाए हैं, पहले चांस में लगाए थे जो बंगलोर से हम लोग को मिला था।
1: अच्छा,
0: टमाटर मिला था संस्थागत।
1: वाह,
0: तो मात्र एक पौधा वहाँ लगाए थे, एक पौधा में देख रहे हैं कि 35-40 किलो आ गया था।
1: वाह,
0: बहुत अच्छा ग्रोथ किया। इस बार फिर अभी गच्छी के रूप में लगाया हूँ, फिर अपने कार्यालय में जो जो किसान चाहेंगे अगल बगल 2-3 पौधा उनको दे देंगे, ताकि उसके बीज के जो प्रचार हो सके।
1: आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े मुन्नी हसन, और खेती बाड़ी से जुड़ी बेहतर जानकारियाँ आपने साझा की, और आप विशेषकर मोटे अनाजों की खेती पर बहुत ज़्यादा बल दे रहे हैं, और अपने गांव के आसपास के किसान को भी आप प्रशिक्षित कर रहे हैं, उन्हें भी मोटे अनाजों की खेती करने के लिए आप बोल रहे हैं। निश्चित रूप से एक बहुत सराहनीय कदम है ये, और आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्नी हंसा, नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार, धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, अभी आप मुन्नी हसन, एक सफल किसान से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। विषय था आलू की जैविक खेती और मोटे अनाजों की खेती। वो रमकंडा गढ़वा के रहने वाले हैं। बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी संतोष कुमार। और आज की बात में बात करते हैं लत्तर वर्गीय सब्जियों के कीट एवं नियंत्रण की। किसान भाइयों, लत्तर वर्गीय यानी बेल वाली या कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती गर्मियों और बरसात के मौसम में की जाती है। प्रमुख किस्मों में लौकी यानी पूसा संदेश, करेला पूसा दो मौसमी, खीरा यानी पूसा उदय और तुरई पूसा नसदार शामिल है, जो बेहतर पैदावार और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जानी जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं लौकी की। पूसा संदेश यह मध्यम आकार की बेल वाली किस्म है, जो बहुत अच्छी पैदावार देती है। पूसा नवीन यह किस्म जल्दी फलने के लिए जानी जाती है, और जिसके फल हल्के और हरे और बेलनाकार होते हैं। करेला पूसा दो मौसमी, वर्ष में दो बार उगाने के लिए उपयुक्त यानी गर्मियों और बरसात। फल गहरे हरे और कांटेदार होते हैं। कोयम्बटूर लौंग यह अधिक उपज देने वाली और लंबे फल वाली प्रसिद्ध किस्म है। खीरा है पूसा उदय या खीरे की एक उन्नत और अगेती किस्म है। पंजाब सेलेक्शन हरी और मुलायम त्वचा वाले खीरे की यह बहुत लोकप्रिय किस्म है। तुरई यानी घिया तोरी पूसा नसदार या उच्च उपज देने वाली तुरई है, जिसके फल गहरे हरे और धारियों वाले होते हैं। कद्दू यानी सीताफल पूसा विकास या कद्दू की एक बहुत ही लोकप्रिय किस्म है, जो पकने पर गहरे नारंगी रंग की हो जाती है। काशी उज्जवल या कद्दू की अधिक पैदावार देने वाली एक प्रमुख किस्म है। तरबूज और खरबूजा की बात कर लेते हैं। तरबूज की किस्में शुगर बेबी, दुर्गापुरा मीठा। खरबूजे की किस्में हैं पूसा मधुर, दुर्गापुरा मधु। लत्तर वर्गीय सब्जियों को उगाने की कुछ खास बातें आपको बता दें। गर्मियों की फसल के लिए जनवरी फरवरी और बरसात की फसल के लिए जून जुलाई का समय सबसे उत्तम है। लताओं को ज़मीन पर फैलने से बचाने और कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए मचान विधि अपनाना सबसे अच्छा होता है।
3: और किसान भाइयों, हम बातें कर रहे थे लतर वर्गीय सब्जियों की, उन्नत किस्मों की।

0: और अब आज के मौसम की जानकारी आपको दे दें। आज का अधिकतम तापमान रहा 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 62% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 22% रिकॉर्ड की गई। और चलते चलते आज की नसीहत, आज की नसीहत में बातें पशुओं के संक्रामक रोग और उनके निदान की। पशु में संक्रामक रोग बैक्टीरिया, वायरस और परजीवियों के कारण होते हैं जो पशु से दूसरे में बहुत तेज़ी से फैलते हैं। इनके मुख्य निदान और बचाव के लिए समय पर टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन और संक्रमित पशुओं को आइसोलेट करना यानी अलग रखना और पशु चिकित्सक से जांच करवाना सबसे आवश्यक है।
1: गाय, भैंस और अन्य पशुओं में फैलने वाले सबसे सामान्य संक्रामक रोग जो है वो है गलघोंटू, खुरपका मुँहपका, थनैला, ब्रुसेलोसिस। गलघोंटू जो रोग है इसके लक्षण हैं तेज़ बुखार, सांस लेने में अत्यधिक दिक्कत, मुंह खोलकर सांस लेना, गले और छाती पर सूजन। खुरपका मुँहपका के लक्षण हैं अत्यधिक लार गिरना, खुरों और मुंह में छाले हो जाना, पशु लंगड़ा कर चलने लगता है और दूध की पैदावार बहुत कम हो जाती है। उसी तरह थनैला जो रोग है इसके लक्षण है थन में सूजन और कड़ापन, दूध का रंग बदलना, खून और मवाद आना और दूध की गुणवत्ता गिर जाना। ब्रुसेलोसिस का जो लक्षण है वो है गर्भपात होना, बांझपन की समस्या और जोड़ों में सूजन। बीमारी की सटीक पहचान के लिए कुछ बात आपको बता रहे हैं किसान भाइयों। जैसे लक्षणों की पहचान के बारे में बता दें तो पशुपालक द्वारा बुखार, लार, दस्त और भूख में कमी जैसे शुरुआती लक्षणों को पहचानना, लैब परीक्षण में खून, गोबर, मूत्र और दूध के नमूनों की जांच करवाना, मॉलिक्यूलर टेस्ट यानी सटीक रोगजनक का पता लगाने के लिए उन्नत आणविक परीक्षण जैसे PCR, रोकथाम और बचाव के लिए आप आर्थिक नुकसान और बीमारियों से बचाने के लिए कुछ बातों पर ध्यान रखें। विभिन्न बीमारियों जैसे FMD HS से बचाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाव गए टीके आप समय पर लगवाएं। पशुओं के बाड़े को सूखा और हवादार रखें। नियमित रूप से फिनाइल और चूने का छिड़काव करें।
0: किसी भी नए पशुओं को झुंड में शामिल करने से पहले 15 से 20 दिन अलग यानी क्वारंटाइन कर ले उसे। पशुओं को संतुलित आहार, साफ पानी और खनिज मिश्रण दें ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहे।
1: तो इसी नसीहत के साथ कार्यक्रम किसान वाणी से अब दीजिए रागनी कुमारी और
0: प्रतिमा वर्मा को
1: अनुमति। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिशम गुरु शिबु सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से किया सम्मानित। गुरुजी की पत्नी रूपी सोरेन ने ग्रहण किया पुरस्कार। एसआईआर वोटर मैपिंग का 30 जून से दूसरा सत्र। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने देवघर और दुमका में बीएलओ प्रशिक्षण का लिया जायजा, दिए जरूरी निर्देश। रांची में भाजपा नेताओं ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलिदान दिवस पर दी श्रद्धांजलि। कहा, प्रधानमंत्री उनके सपनों को कर रहे हैं पूरा। कर्मयोगी मिशन के तहत रांची सेल में क्षमता संवर्धन सम्मेलन। कर्मियों को दक्ष और निपुण बनाने में मंथन। विकसित राष्ट्र के लिए सामूहिक भागीदारी पर जोर। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर रांची में मैराथन दौड़ का आयोजन। यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप शिविर के लिए राज्य के 6 खिलाड़ियों का चयन। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह का दूसरा चरण आयोजित हुआ। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। मौके पर दिशम गुरु शिबु सोरेन को मरणोपरांत लोक कार्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह सर्वोच्च पुरस्कार दिशम गुरु की पत्नी रूपी सोरेन ने राष्ट्रपति से प्राप्त किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक कल्पना सोरेन सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वोटर मैपिंग का दूसरा और अंतिम सत्र 30 जून से शुरू होगा। इस सिलसिले में बीएलओ और बीएलओ प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज देवघर के मधुपुर और दुमका के जरमुंडी में प्रशिक्षण का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बताया। श्री कुमार ने कहा कि एसआईआर में एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम नहीं कटेगा।
3: ट्रेनिंग में सभी बिंदु पर बात हो रही है।

0: तक पहुंचाया जा रहा है। इस सिलसिले में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची में एक समारोह के दौरान समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रबुद्ध नागरिकों को सम्मानित किया। मौके पर श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास को नई दिशा दी है, उनके कार्यकाल में जन कल्याण के कामों को भी नया आयाम मिला है। रक्षा राज्य मंत्री ने विकसित राष्ट्र निर्माण में सभी की भागीदारी पर जोर दिया। जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर राज्यभर में आज विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रांची में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू और अन्य नेताओं ने उन्हें बलिदान दिवस पर नमन किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर मुखर्जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। कश्मीर से लेकर पश्चिम बंगाल तक बदलाव दिख रहा है।
1: आज उनके प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर सैकड़ों लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम किया है, और जो उनका सपना था, जो उनका सोच था कि एक देश में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेगा, और इसी मूल मंत्र को लेकर अनेक प्रकार का आंदोलन करने का काम सदैव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करने का काम किया।
0: गुमला वन प्रमंडल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सलगी वन क्षेत्र में करीब 20 एकड़ से अधिक वन भूमि को वन विभाग ने अवैध कब्जा से मुक्त कराया है। इस संबंध में गुमला वन प्रमंडल पदाधिकारी अनवर बिलाल अहमद ने बताया कि स्थानीय लोग लंबे समय से वन क्षेत्र के पेड़ पौधों को काटकर अवैध कब्जा करते हुए खेती कर रहे थे।
2: सर्वे जब हम लोगों ने किया तो पाया कि करीब 20 प्लस एकर्स में इंक्रोचमेंट लैंड था। वहाँ के लोगों ने फॉरेस्ट को क्लियर करके वहाँ पे खेती कर रहे थे इंक्रोचमेंट। ग्राम सभा बुलाया, मीटिंग हुई, तो लोगों ने वॉलंटरीली एग्री किया कि वो लोग उस जगह को छोड़ देंगे, और पूरे इंक्रोचमेंट को क्षेत्र को खाली कराया गया, ट्रेंचेस बनाए गए, कंटूर्स बनाए गए, गली प्लग्स किया गया, पिट्स बनाए गए।
0: झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की खंडपीठ में आज बोकारो की एक लापता युवती के मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस दौरान जंगल से बरामद कंकाल और युवती के माता पिता के डीएनए रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। मामले की अगली सुनवाई अब 25 जून को होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल में आज से मिशन कर्मयोगी के तहत 3 दिवसीय कर्मचारियों का क्षमता संवर्धन सम्मेलन शुरू हुआ। सम्मेलन में सेल से संबंधित देश भर के प्रतिष्ठानों के मानव संसाधन विभाग के अधिकारी और मैनेजमेंट गुरु कर्मचारियों को दक्ष और निपुण बनाने की दिशा में मंथन कर रहे हैं। मौके पर भारत सरकार की सदस्य डॉ. अलका मित्तल ने विकसित राष्ट्र के लिए सामूहिक भागीदारी पर जोर दिया।
3: 3 साल से ये एक्टिविटी चल रही है और इस संदर्भ में चर्चा होती है कि किस तरह से हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, कैपेबिलिटी बिल्डिंग करेंगे अपने ह्यूमन रिसोर्स की। हमारे कोई भी असेट फेल हो जाएंगे अगर ह्यूमन असेट जो है वो इक्विप नहीं होगा इन हमारे कैपिटल को संभालने के लिए।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने बताया कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है।
4: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने के कारण हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। कम वर्षा के कारण जो परिस्थिति पैदा होगी उसके लिए जिले की कंटेंजेंसी प्लान बना लिए गए हैं। वहाँ की जलवायु, फसल उपलब्ध जल और जोखिम को देखकर कैसे हम वैकल्पिक खेती की योजना बनाई है।
0: इधर देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने थोड़ी गति पकड़ी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि राज्य के कुछ और क्षेत्रों में आज मॉनसून प्रवेश कर गया। अगले 3-4 दिनों में इसके बाकी इलाकों में भी दस्तक देने की संभावना है।

0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान गुमला के भरनों में राज्य में सर्वाधिक 82 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में 29 जून तक बारिश, आंधी और वज्रपात के आसार हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी की ओर से रांची में आज रन फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक दौड़ का आयोजन किया गया। पुराना विधानसभा से धुरवा गोल चक्कर होते हुए वापस पुराना विधानसभा तक आयोजित इस दौड़ में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों, युवा खिलाड़ियों तथा खेल प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस मौके पर पूर्व ओलंपियन स्वर्ण पदक विजेता सिल्वानस डुंगडुंग को सम्मानित किया गया। हॉकी इंडिया ने आगामी यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप के राष्ट्रीय कोचिंग शिविर के लिए खिलाड़ियों की सूची जारी की है। झारखंड की 5 बेटियों पुष्पा मांझी, संदीपा कुमारी, श्रुति कुमारी, नीलम टोपनो और खिली कुमारी को महिला वर्ग में प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया गया है। पुरुष वर्ग में प्रशिक्षण कैंप के लिए आशीष तानीपूर्ति का चयन हुआ है। झारखंड T20 प्रीमियर लीग JPL का आज खिताबी मुकाबला होगा। जमशेदपुर स्टीलर्स और छोटा नागपुर रॉयल्स के बीच यह फाइनल मैच शाम 7:30 बजे से रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से किया सम्मानित। गुरुजी की पत्नी रूपी सोरेन ने ग्रहण किया पुरस्कार। SIR वोटिंग मैपिंग का 30 जून से दूसरा सत्र। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने देवघर और दुमका में BLO प्रशिक्षण का लिया जायजा, दिए जरूरी निर्देश। रांची में भाजपा नेताओं ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलिदान दिवस पर दी श्रद्धांजलि। कहा, प्रधानमंत्री उनके सपनों को कर रहे हैं पूरा। कर्मयोगी मिशन के तहत सेल रांची में क्षमता संवर्धन सम्मेलन, कर्मियों को दक्ष और निपुण बनाने का मंथन, विकसित राष्ट्र के लिए सामूहिक भागीदारी पर जोर। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर रांची में मैराथन दौड़ का आयोजन। यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप शिविर के लिए राज्य के 6 खिलाड़ियों का चयन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे साहिबगंज संवाददाता।
1: झारखंड राज्य का एकमात्र जिला साहिबगंज जहां से होकर गंगा नदी गुजरती है, इसके आसपास के किसानों को उपजाऊ मिट्टी के साथ यह राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन की पसंदीदा शरण स्थली भी है।
2: जो डॉल्फिन सर्वे हुआ था, पहला रेंज वाइड सर्वे, 2 साल पहले उसका रिपोर्ट भी रिलीज हुआ है, उसमें झारखंड में डॉल्फिन की प्रेजेंस बहुत अच्छी है। डॉल्फिन का एनकाउंटर रेट पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा यहीं पे है। एनकाउंटर रेट का मतलब 1 किलोमीटर में कितनी डॉल्फिन दिख रही है, तो डॉल्फिन का कितना प्रेजेंस है वो झारखंड के इस इलाके में बहुत ही अच्छा है। उसके लिए कॉन्जर्वेशन के लिए जितना एफर्ट झारखंड सरकार ले रही है, जितना एफर्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ले रही है, हम लोग रिसर्च के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि इन फ्यूचर यहाँ पे डॉल्फिन सेंटर या फिर डॉल्फिन रेस्क्यू सेंटर का कुछ प्लानिंग अगर हम कर पाए, उसके लिए डीएफओ साहब से और WII देहरादून कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है।
1: भारत सरकार के दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए खरीफ और रबी के समय में अलग अलग किस्मों के दलहन बीज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर रही है। अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, चना के आधार बीज उत्पादन करने वाले किसानों को 1800 रुपए से लेकर 4500 रुपए प्रति क्विंटल तक अनुदान दिया जाएगा।
3: उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा आत्मनिर्भरता इन प्रोसेस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत खरीफ सीजन में अरहर, उड़द और मूंग का जो बीज उत्पादन है उसका कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसी तरह से रबी सीजन में चना और मसूर का बीज का उत्पादन इस योजना के तहत प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जाएगा और प्रमाणित बीज उत्पादन के बदले उन्हें प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। जैसे अरहर में उन्हें प्रोत्साहन राशि 4500 रुपए है, उसी प्रकार से उड़द, मूंग और मसूर में यह राशि 3000 रुपए प्रति क्विंटल है। यह कार्यक्रम इसलिए चलाया जा रहा है ताकि जो दलहन का खपत जो बड़े पैमाने पर हमारे देश में है उसमें हम लोग आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके।
1: भारतीय किसानों को खेती कार्यों में सुगमता के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के तहत आसान तरीके से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में खेत बचाओ अभियान के तहत साहिबगंज के अग्रणी बैंक प्रबंधक के द्वारा जिले के सभी प्रखंडों में किसानों को भारत सरकार की कृषि का ऐप के माध्यम से खेती के लिए KCC इत्यादि के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साहिबगंज के अग्रणी बैंक प्रबंधक प्रदीप कुमार झा ने बताया,
4: अभी चल रहा है खेत बचाओ अभियान, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि खेत के मिट्टी की स्वास्थ्य कैसे अच्छी से अच्छी हो और हमारे किसान भाई कैसे सशक्त से सशक्त बने। क्योंकि आज के डिजिटल जो युग है उसमें यदि आप कृषि का ऐप के माध्यम से यदि किसान भाई हमारे लोन अप्लाई करते हैं तो वो उनमें भ्रम की स्थिति नहीं रहती है और उनमें एक स्पष्टता रहती है अपने ऋण के बारे में। साथ में खेती में यदि उर्वरक रासायनिक उर्वरक की उपयोग कम करते हैं तो खेती के स्वास्थ्य की जो है वो उसकी भी संभावना रहती है ज्यादा से ज्यादा अच्छी होने की।
1: हुल क्रांति के पुरोधा सिद्धू कान्हू मुर्मू की शहादत के उपलक्ष्य में साहिबगंज के पंचकठिया और शहीदों की जन्मस्थली भोगनाडीह में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होता रहा है। गत वर्ष भोगनाडीह में प्रशासन और जनता के बीच झड़प भी हुई थी। बहरहाल जिला प्रशासन हुल दिवस की तैयारियों में जुट गया है, जहां शहीद के परिजनों के बीच परिसंपत्ति का वितरण और विकास स्टॉल भी लगाया जाता है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज।
0: अभी आप सुन रहे थे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। पेश खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। एक रंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए कुछ फिल्मी नगमे। तो कार्यक्रम का आगाज़ कर रहे हैं पत्थर के सनम फिल्म के इस नगमे से।

पत्थर के सनम फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक रंग के तहत मोहम्मद रफ़ी के गाए कुछ फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं लाल किला फिल्म से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, गीतकार हैं बहादुर शाह जफर और संगीतकार एस एन त्रिपाठी।

हम दोनों फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीतकार जयदेव। अगला गीत आई सुनते हैं गज़ल फिल्म से। आवाज़ जी हाँ मोहम्मद रफ़ी साहब की है, शब्द रचना साहिर लुधियानवी की और तर्ज मदन मोहन की।

जब प्यार किसी से होता है, फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। इसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने, गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन ने। और ये है एक रंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म मेरे हुजूर से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत है।

मेरे हुजूर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन। इसी नगमे के साथ ही अब आज का एक रंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम खुला आकाश। इसके अंतर्गत आइए सुनते हैं पुष्प लता कुमारी से उनकी स्वरचित कविताएं।
1: मेरा नाम पुष्पलता कुमारी हुआ। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ हाई स्कूल में। मैं काव्य पाठ के लिए यहाँ आई हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है भूकंप 2015। नेपाल को यूं हिला गई ये साल, त्रासदी ने बार बार घेरने की कोशिश की, जड़ों को झकझोर दिया ये साल, मंजिल को खंडहर बना डाला, कितने बेकसूरों को जला डाला, कितने मासूमों को निःशक्त किया, घर वालों को बेघर कर दिया ये साल, देखते देखते अपनों को दूर कर दिया, कितनों के जीवन को वीरान बना दिया, दुखियारों के पेट का निवाला छिन गया, नेपाल को यूं हिला गई ये साल, कितनी बार झकझोरा इसे, टूटने लगी लोगों की हिम्मत, खुद से समझौता दो बातों पर, हमें सकेगा पहला जीवन दूसरा मौत, क्या होगा आने वाला पल, डर तो इतना लगा मानो क्या होगा सोने के बाद, नेपाल को यूं झटके दे दे हिला गया ये साल। दूसरी कविता का शीर्षक है एक औरत। वो अक्सर चुप चुप सी रहती थी, कुछ कहने से रुकती थी, लोगों का कहना था वो शांत रहती है, शांत चित्त के अंदर जो द्वंद्व थे शायद किसी ने नहीं जाना, सिर्फ इतना जाना वो चुप चुप सी रहती है, अंदर की लहरें शांत चित्त को प्राप्त होती है, कितनी लपटें उठती है उसके अंतर मन में, समापन के साथ शांत हो गई बाह्य चित्त, उफाने कितनी लहरें लेंगी उठने के साथ, झुकना भी है लहरों के पास, अंतर द्वंद में हलचल काफी कौतूहल के साथ है, उसके मन में कुछ दर्द था कहना आसान नहीं था, घुटन भरी जिंदगी शांत हो चितवन पर आ गई, कांटा चुभने का एहसास किन परिवेशों में था किसी को पता नहीं था, दर्द की गहराई सिर्फ उसी को पता था, सही गलत का अंतर खुद से करना आसान नहीं, मुख बिरी खबरों के आगे अपनी अच्छाई बुराई का कोई पहचान नहीं, हर दर्द सह औरत बनी हुई है क्योंकि वह औरत है। तीसरी कविता का शीर्षक है वो बच्ची। देखा उसे विलाप करते, समझा नहीं पाया कोई, मातृ ममता सब सह गई, नोच खसोट कर दिया लुहान, मातृ दुग्ध का किया अपमान, उतर गई गोद से नीचे, जमीन पर हो गई धूर धूसरित, अगल बगल पर भी गुस्साई, सब पर उसने थूक दिया, मातृ ममता सब देखकर स्तब्ध थी, रो रो कर हुई बेहाल, माँ को भी कर दिया बेहाल, माँ की ममता अंदर ही उफनती रही, हाथ नहीं उठा रही, बस एक संदेशा दिया उसने, बाद में हो गई शांत, बाद की उम्मीदों से ढाढ़स बंधा रही, अपने आप को समझा रही, थोड़ी देर में वो चुप हो जाएगी, बड़ी बड़ी बातें करते सब कुछ बताएगी, माँ की ममता टूट कर भी जुड़ रही थी, वो अब चुप हो जाएगी, वो अब चुप हो जाएगी, देखा उसे विलाप करते, समझा नहीं पाया कोई, मातृ ममता सब सह गई, सब सह गई। इस कविता का शीर्षक है बड़ा होकर। उसके अनेकों नाम थे, बुराई किसी और के नाम थी, बड़ा होकर भी छोटा होना मजबूरी हुई, सिर का ताज उसी के नाम थी, सब कुछ करने के बाद बेनाम हुई मैं, सारा धन दौलत पाकर बेजान हुई वो, कुछ नहीं पाकर मैंने संतोषम सुखम का ध्यान की, मैं अथक परिश्रम कर दुख दर्द से उबरी थी, कुछ सुख

पाई, कुछ सामान सजाई, लेकिन ये भी देखकर अपनों को जलन होता, मानो उनके ही मेहनत से सब कुछ पाई मैं। माता पिता को भी देख थोड़ी तसल्ली होती, कुछ देर के लिए लगता मेरा भी कोई है। अपना सपना तो अपनों के साथ रहकर लगे, परिवार का सुख सिर्फ उसके लिए था, कष्टों का ढेर मेरे नाम था। अगर किस्मत से भी कुछ मिला तो वो देख दुखी हुई अपने लोग, क्योंकि मेरा जन्म गरीबी का नाम था। अपनों को लगता कब उठाकर इसे कांटा पर डाल दूं ताकि वो आगे निकल जाएं, आगे पढ़ने और पीछे जाने का रास्ता ऊपर वालों के हाथ है। उसके अनेकों नाम थे, बुराई किसी और के नाम थी। बड़ा होकर भी छोटा होना मजबूरी हुई, सिर का ताज उसी के नाम थी। सब कुछ करने के बाद बेनाम हुई मैं, सारा धन दौलत पाकर बेजान हुई वो। कुछ नहीं पाकर मैंने संतोषम सुखम का ध्यान की। इस कविता का शीर्षक है रेलगाड़ी। आते जाते गाड़ियों की आँख मिचौली, देखते देखते यूं सरकती आँखों से ओझल हो जाती है। किसी के इंतजार के बाद उसे ले जाना और यूं थोड़ी लेट के बाद किसी को छोड़ देना, ये कुछ नहीं देखती। टिकट बेटिकट यात्रियों को सबको एक साथ ढोकर गंतव्य तक ले जाती है। पतली पतली तारों के साथ सरकती जाती है, लोहों के तारों पर सबको खींचते चली जाती है। आते आते गाड़ियों की आँख मिचौनी, देखते देखते यूं सरकती आँखों से ओझल हो जाती है। कल की तारीख में नए बिरंगे लोग तेरा रास्ता ताकते नजर आते हैं। फिर से सबको अपने जगहों तक छोड़ने का काम है। रेलगाड़ियाँ नियत समय से सरकती हैं, बेखौफ तरंगों से आगे निकलती जाती हैं। ये गाड़ियाँ छुक छुक कर नई उमंगों से बढ़ती हैं, उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते हम रोज जाने को। इसे देख अपनी शक्ति छिन पड़ जाती है, जज्बा नहीं होता इनसे बराबरी करने का। आते जाते गाड़ियों की आँख मिचौनी, देखते देखते यूं सरकती आँखों से ओझल हो जाती है। किसी के इंतजार के बाद उसे ले जाना और यूं थोड़ी लेट के बाद किसी को छोड़ देना, ये कुछ नहीं देखती। टिकट बेटिकट यात्रियों को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खुला आकाश। इसके तहत आपने सुना पुष्पलता कुमारी से उनकी स्वरचित कविताएं। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। पेश खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।

मेरी जंग फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और इसकी धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अगला गीत आइए सुनते हैं हीरो फिल्म से। आवाज़ रेशमा की है, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

हीरो फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ रेशमा की थी। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अगला गीत आइए सुनते हैं, कर्ज फिल्म से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और साथियों की, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और इसकी तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कर्ज फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और साथियों की, आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम की अगली पेशकश है राम लखन फिल्म से। आवाज़ लता मंगेशकर की है, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।

0: निशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम देशगान। देशगान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए क्रांति फिल्म से ये देशभक्ति गीत। आवाजें हैं महेंद्र कपूर और साथियों की।

क्रांति फिल्म से अभी आपने ये देशभक्ति गीत सुना। आवाज़ें थी महेंद्र कपूर और साथियों की, शब्द रचना संतोष आनंद की थी और इसकी तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अगला देशभक्ति गीत आइए सुनते हैं कर्मा फिल्म से। आवाज़ें हैं कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज़ और साथियों की, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

इसी देशभक्ति गीत के साथ ही देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम देशगान अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 MHz पर। समाचारों के लिए अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया बने रहें हमारे साथ।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेकिया के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज, वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन, गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
4: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
4: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
4: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ उनरवा के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
5: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amrit Raj, actors Mammootty and R. Madhavan and singer Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that in a changing global landscape, BRICS has a vital role in deepening security cooperation and addressing shared challenges from terrorism and cyber security to emerging technologies. Prime Minister Modi met national security advisors and senior security officials of BRICS countries, that is Brazil, Russia, India, China and South Africa, in New Delhi this evening. In a social media post, he also highlighted that India's BRICS chairmanship will seek to advance practical cooperation, support the priorities of the Global South and contribute to a safer, more secure and inclusive world. Prime Minister Narendra Modi has stressed on Nagrik Devo Bhava and urged officers to keep citizens at the center of governance. Interacting with 183 officer trainees of IAS 2024 batch who have been attached as assistant secretaries in various ministries and departments in New Delhi today, Mr. Modi called upon young civil servants to lead India's journey towards Viksit Bharat at 2047. The Prime Minister urged the young civil servants to dedicate themselves to nation building with a strong sense of purpose, innovation and citizen-centric governance. The Prime Minister also highlighted the growing role of women in nation building, noting that more than 40% of the current batch comprises women officers. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said that the government is making advanced preparations for Kharif season to help farmers deal with the possible impact of a weak monsoon caused by El Nino. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Chauhan said that the country had so far seen around 43% less rainfall and that the monsoon was expected to remain weak in July too.
7: Overall rainfall has been 43% below normal so far, and according to the weather forecast, conditions are likely to remain weak until the week ending 2nd July. This means that our kharif crops could be affected. We have been preparing for such situations for quite some time. An assessment has also been carried out to determine how many districts may be affected. Based on the current projections, around 315 districts are likely to experience deficient rainfall.
6: Mr. Chauhan said that states have been advised to promote crops like pulses, coarse grains and oilseeds, which require less water and can still perform well under difficult conditions.

0: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amritraj, actors Mammootty and R. Madhavan and Singh Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी जैसे चैलेंजों से निपटने में ब्रिक्स का अहम रोल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शहरी एजाज से मुतालिक दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अदा किए। सहाफी पी नारायणन, टेनिस के सरकर्दा खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार Mammootty और आर माधवन और गुलूकारा अलका याग्निक पद्म अवार्ड हासिल करने वालों में शामिल हैं। हुकूमत ने कहा है कि वो एल नीनो की वजह से कमजोर मॉनसून के असरात के इम्कान से निपटने के लिए किसानों की मदद की खातिर पेशगी तैयारियां कर रही है। इम्तिहानात के इनेकास से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान के नतायज का ऐलान कर दिया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मगरबी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लंदन में FIH प्रो लीग हॉकी के इफ्तिताही मुकाबले में भारत की मर्दों की हॉकी टीम ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 3-4 से हरा दिया है। और फीफा आलमी कप में हाउस्टन में पुर्तगाल का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होने वाला है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि बदलते हुए आलमी मंजरनामे में सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी से लेकर उभरती हुई टेक्नोलॉजी से लाहक मुश्तरका चैलेंजों के इजाले की खातिर ब्रिक्स का इंतहाई अहम रोल है। वजीर आजम मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों और सिक्योरिटी के सीनियर अहदेदारान से मुलाकात की। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने इस बात को भी उजागर किया कि भारत की ब्रिक्स की सदारत में हकीकी इश्तराक में पेशरफ्त, आलमी खित्ते जनूब की तरजीहात की हिमायत और एक महफूज और ज्यादा शमूलियत वाली दुनिया के सिलसिले में इश्तराक को अहमियत दी जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव पर जोर दिया है और अफसरान से जोर देकर कहा है कि वो शहरियों को हुक्मरानी में मरकजी अहमियत दें। आज नई दिल्ली में 2024 बैच के IAS के उन 183 तरबियती अफसरान से बातचीत करते हुए जिन्हें मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में बतौर असिस्टेंट सेक्रेटरी मुंसलिक किया गया है, जनाब मोदी ने नौजवान सिविल सर्वेंट से जोर देकर कहा कि वो विकसित भारत @2047 की जानब भारत के सफर की क्यादत करें। वजीर आजम ने मुल्क की तामीर में खवातीन के बढ़ते हुए रोल को ये कहते हुए उजागर किया कि मौजूदा बैच में 40% से ज्यादा खवातीन अफसर हैं। जनाब मोदी ने नौजवान अफसरों से कहा कि वो मुसलसल मुल्क की तामीर में अपने ताउन का जायजा लेते रहें और अपने ओहदों के बजाय अपनी कारकर्दगी से हासिल होने वाले नतायज से इत्मीनान महसूस करें। उन्होंने इस बात पर एतमाद का इजहार किया कि उनकी तवानाई, सलाहियत और खुद को वक्फ करने का जज्बा भारत को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाने में एक अहम रोल अदा करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में शहरी एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता किए। मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में से एक पद्म अवार्ड्स 3 जुमरों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के तहत दिए जाते हैं। सहाफी पी नारायणन को अदब तालीम के जुमरे में पद्म विभूषण से नवाजा गया है, जबकि साबिक जज KT थॉमस को सामाजिक काम के लिए पद्म विभूषण से सरफराज किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स शामिल हैं। साबिक टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूथी और प्लेबैक गुलुकारा अलका याग्निक समेत 7 लोगों को पद्म भूषण से नवाजा गया है। सियासतदान शिबू सोरेन को बादजमर्ग पद्म भूषण दिया गया है। 57 अफराद को पद्मश्री अवार्ड से सरफराज किया गया है, जिनमें क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा, अदाकार आर माधवन और प्रसार भारती के साबिक सीईओ शशि शेखर वेम्पति शामिल हैं। अदाकार सतीश शाह को बादजमर्ग पद्मश्री से सरफराज किया गया है। इस मौके पर नायब सदर सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के अलावा दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि हुकूमत एनिनो की वजह से कमजोर मॉनसून के इम्कान असरात से निपटने की खातिर किसानों की मदद के लिए पेशगी तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि मुल्क में अब तक 43% कम बारिश हुई है और जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने का इम्कान है।
3: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है 2 जुलाई तक के सप्ताह में कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। हम जो प्रभावित जिले कितने हो सकते हैं उसका आकलन भी किया गया है और अब तक जो संभावना है 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: जनाब चौहान ने कहा कि रियासतों को दालों और मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को फरोग देने का मशवरा है, जिनमें कम पानी की जरूरत होती है और सख्त मौसम में भी उनकी अच्छी पैदावार हो सकती है। उन्होंने कहा कि रियासतों के साथ तालमेल में साइंसी तरीक़ेकार फसलों की बरवक्त मनसूबाबंदी और जिला सतह की तैयारी को मुस्तहकम किया जा रहा है। नीति आयोग के नायब चेयरपर्सन डॉक्टर अशोक लाहिरी ने आज कहा कि पिछली सिमाही के दौरान भारत की मजमूई तजारत में 5.4% का इजाफा हुआ। डॉक्टर लाहिरी ने यह बात नई दिल्ली में तजारत पर नजर रखने वाली सिमाही रिपोर्ट का ताजा एडिशन जारी करते हुए कही। नायब चेयरपर्सन ने मजीद कहा कि पिछली सिमाही के दौरान भारत की बरामदात 1.84 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि दरामदात में 6.5% का इजाफा दर्ज किया गया। मगरबी एशिया की सूरत हाल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह बहरान आर्जी था। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दुनिया में जल्द ही अमन कायम होगा। आज जारी करदा रिपोर्ट में बुनियादी तौर पर अद्वियात की तजारत पर जोर देते हुए आलमी तजारत में भारत के रोल का तजिया पेश किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इम्तिहानात मुनक़िद करने वाली कौमी एजेंसी NTA ने आज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान CUET 2026 के नतायज का ऐलान कर दिया है। इम्तिहान में शामिल हुए उम्मीदवार अब सरकारी CUET पोर्टल के जरिए अपने स्कोर कार्ड्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं। NTA के मुताबिक इस साल इस इम्तिहान में 11 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट ने आज 1993 के कोलकाता बाव बाजार बम धमाका केस में उम्र कैद के एक मुजरिम की कबल अज वक्त रिहाई के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस संजीव सचदेवा पर मुश्तमिल बेंच ने मगरबी बंगाल हुकूमत की उस दरखास्त पर उबूरी राहत दी जिसमें हाई कोर्ट के 5 जून के उस हुक्म को चैलेंज किया गया था, जिसके तहत 77 साल मुजरिम मोहम्मद राशिद खान की फौरी रिहाई का हुक्म दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद राशिद खान को भी नोटिस जारी किया। रियासत की जानिब से पेश होते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने इस मामले में इस्लाही नजरिए का गलत इतलाक किया, क्योंकि इस धमाके में 70 से ज्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए थे। मोहम्मद राशिद खान के वकील MR शमशाद ने कहा कि उनके मुवक्किल 33 साल से ज्यादा अरसा जेल में गुजार चुके हैं और एक शरीक मुलजिम को 2014 में इस सिलसिले में रियायत दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुशाहदा किया कि खान का रोल मुख्तलिफ था और उन्हें धमाकों का मास्टरमाइंड करार दिया। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज मंगोलिया के वजीर खारजा बैतमुख और सनत और कानकनी के वजीर के साथ मंगोल रिफाइनरी प्रोजेक्ट के जेर तामीर मकाम का दौरा किया। सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया

दोस्ती के तहत जारी प्रोजेक्ट में नुमाया पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने इन मंसूबों में शामिल मुख्तलिफ टीमों के साथ जारी काम की ताजा सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर खारजा ने प्रोजेक्ट के मकाम पर भारत और मंगोलिया के वर्करों के साथ बातचीत की। उन्होंने इन मुश्किल हालात में इस तरह के अहम प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाने में उनकी मेहनत, लगन और अज़्म को सराहा। वजारत खारजा ने आज कतर में होने वाले एक धमाके में 12 भारतीय शहरियों के हलाक होने की तस्दीक की। नई दिल्ली में नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस हादसे में 66 अफराद जख्मी भी हुए जिनका इलाज अभी चल रहा है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत नामे पर दस्तखत होने के बाद अब तक भारत से वाबस्ता 11 बहरी जहाज आबनाए हुरमुस से गुजर चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बाकी भारतीय परचमबरदार जहाज भी जल्द ही इस रास्ते से गुजरेंगे। पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर से मुतल बयान पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए तर्जुमान ने कहा कि ऐसे बयान पाकिस्तान की अपनी नाकामियों और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की एक लायानी कोशिश है। उन्होंने कहा कि भारत इन मनगढ़ंत दावों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है और इन दावों को बिल्कुल ही अहमियत नहीं देता है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने आने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप में एक जामे मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। इस मशक के दौरान नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने मुश्तरक तौर पर बेस कैंप के पूरे अहाते में तलाशी और इलाके को महफूज बनाने की कार्रवाई अंजाम दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान ने अपने न्यूक्लियाई बुनियादी ढांचे की तवील मुद्दती और जामे निगरानी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इसके साथ ही अमरीका अब नाए हुरमुज में पहरी जहाजों की आमदोरफ्त पर आयद पाबंदियों में नरमी करेगा और माली रियायतें फराहम करेगा, ताहम यह सब सख्त अमरीकी निगरानी के तहत होगा। सोशल मीडिया पर जारी एक तफसीली बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की क्यादत ने जारी सिफारती मुजाकरात में अहम रियायतें दी हैं जिनका मकसद मगरबी एशिया में तवील कशीदगी के बाद एक जामे अमन फ्रेमवर्क कायम करना है। ताहम व्हाइट हाउस के इस बयान पर ईरान की हुकूमत ने फौरी एतराज किया और न्यूक्लियर निगरानी के दायरेकार के बारे में इख्तलाफ जाहिर किया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वाजे किया कि ईरान ने मखसूस न्यूक्लियाई तनसीबात पर बैन अल-अक़वामी एटमी तवाना एजेंसी की निगरानी कबूल नहीं की। भारतीय महकमे मौसमियात ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मगरबी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंचने का इम्कान है। दिल्ली एनसीआर में मौसम में अचानक शदीद तब्दीली देखी गई क्योंकि खित्ते में तेज बारिश, धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चल रही थीं। आईएमडी के मुताबिक कौमी राजधानी में कम से कम दर्जे हरारत 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38.4 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब आईएमडी ने कहा कि 2 से 3 दिनों के दौरान बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ खित्ते में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। लंदन में एफआईएच प्रो लीग हॉकी के इफ्तिताही मैच में मर्दों की भारतीय हॉकी टीम ने रिवायती हरी पाकिस्तान को 3-4 गोल से हरा दिया। भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला यह मुकाबला इस टूर्नामेंट के सबसे अहम मुकाबलों में से एक था। लंदन मरहले के दौरान भारत जुमेरात को इंग्लैंड का सामना करेगा और 26 जून को एक बार फिर पाकिस्तान से खेलेगा। इसके बाद 28 जून को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले के साथ अपना दौरा मुकम्मल करेगा। आज फीफा आलमी कप में ग्रुप मरहले के तहत मुख्तलिफ अहम मुकाबले खेले जाएंगे। ग्रुप के में हाउस्टन में रात 10:30 पुर्तगाल का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। वहीं ग्रुप एल के तहत देर रात 1:30 बोस्टन में इंग्लैंड और घाना आमने सामने होंगे। बाद में सुबह सवेरे 4:30 टोरेंटो में क्रोएशिया का मुकाबला पनामा से होगा। जर्मनी के शहर सूल में जारी आईएसएसएफ जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारत के लिए आज का दिन भी शानदार रहा और उसने मजीद 3 तमगे हासिल किए जिनमें चांदी के 2 और कांसे का 1 तमगा शामिल है। शिवा नरवार ने मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चांदी का तमगा जीता जबकि युग प्रताप सिंह राठौड़ ने भी इसी मुकाबले में कांसे का तमगा जीता।
आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की यशोदा आ गई सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: वाह।
4: कभी इस पग में

अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अभिनेता की जिनका जन्म संयुक्त प्रांत टुंडला आगरा में पंजाबी परिवार में 23 जून 1952 को हुआ। अपनी आरंभिक शिक्षा आपने आगरा से की, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के आप पूर्व छात्र हैं। इतनी जानकारियों के बाद निश्चय ही एक कलाकार का चेहरा आपके जेहन में कौंध गया होगा, और ऐसा ना भी हुआ हो तो ये गीत इस अभिनेता की पहचान करा ही देगा।

आज के फनकार में आज का सफर हम तय करेंगे एक सशक्त अभिनेता राजनीतिज्ञ राज बब्बर की बातों के साथ, उनकी फिल्मों के गीतों के साथ।

अभिनय की बारीकियां और उसके विस्तार को आपने एनएसडी से जाना। अपने प्रशिक्षण के बाद आप मुंबई चले आए। यहां आने के बाद समय के कुछ अंतराल पर आपको मिली फिल्म आप तो ऐसे न थे। ये 1980 की फिल्म थी जिसमें राज बब्बर ने विजय नाम के किरदार को निभाया था। इनके साथ रंजीता, दीपक पराशर, मदनपुरी और ओम शिवपुरी थे। मोहन कुमार द्वारा निर्मित, अम्बरीश संगल द्वारा निर्देशित ये फिल्म अपने एक गाने की वजह से आज तक याद की जाती है, जिसे 3 सिंगर्स ने आवाज दी थी और संगीत था उषा खन्ना का। ये गाना पर्दे पर रंजीता और राज बब्बर पर फिल्माया गया है।

सकते हैं कि राज बब्बर की विशेष पहचान फिल्म इंसाफ का तराजू से हुई। इस फिल्म में जीनत अमान और पद्मिनी कोल्हापुरे ने भी अभिनय किया। इस फिल्म में आपके अभिनय से प्रभावित होके बी.आर. चोपड़ा बैनर की फिल्मों के आप सक्रिय सदस्य बन गए। निकाह में दीपक पाराशर और सलमा आगा के साथ आप थे, साथ ही आज की आवाज में स्मिता पाटिल के साथ आपने अभिनय किया।

सामाजिक घरेलू ड्रामा फिल्म थी 100 दिन सास की, जिसमें मुख्य कलाकार थे रीना रॉय, अशोक कुमार, राज बब्बर, बेला बोस और ललिता पवार। वैसे तो ये फिल्म पूरी तरह किरदार दुर्गा पर आधारित थी, जो समाज में बहुओं के लिए बनाए गए नियमों पर प्रश्न उठाती है। इस किरदार को रीना रॉय ने निभाया था। ये एक सफल फिल्म थी और इस फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे राज बब्बर।

फिल्मों में रोल पाना इस थिएटर आर्टिस्ट का ध्येय था। वहीं फिल्मों के लिए किया जाने वाला स्ट्रगल एक सत्य, इंसाफ का तराजू। इसकी सफलता राजबब्बर के तमाम संघर्षों का एक सुखद परिणाम लेकर आई थी। इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा है। एक इंटरव्यू में आपने शेयर करते हुए बताया था कि

वो अपनी मां के साथ जब फिल्म देखकर निकले तो मां रो रही थी। राजबब्बर ने सोचा, शायद मेरे इतने सालों के संघर्ष के बाद मिली सफलता पर इनके खुशी के आंसू है। पर जब असली बात पता चली तो आपको सुखद आश्चर्य हुआ। मां ने कहा, बेटा हम दो रोटी कम खा लेंगे, ऐसा काम मत किया कर। इंसाफ का तराजू में राजबब्बर ने एक नेगेटिव किरदार निभाया था।

राज बब्बर ने सुप्रसिद्ध थिएटर पर्सनालिटी सज्जाद जहीर की बेटी और मशहूर थिएटर आर्टिस्ट नादिरा जहीर बब्बर से विवाह किया। आपसे राज बब्बर की दो संतानें हैं, आर्य बब्बर और जूही बब्बर। ये दोनों ही कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वहीं इनकी पत्नी मशहूर अदाकारा स्मिता पाटिल से प्रतीक बब्बर हैं, जो स्वयं एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं।

राज बब्बर ने स्मिता पाटिल के साथ कई फिल्में की, जिनमें प्रमुख हैं आज की आवाज, वारिस, इंसानियत के दुश्मन, अवाम, जवाब, हम दो हमारे दो, शपथ, मेरा घर मेरे बच्चे, दहलीज, किनारा और भीगी पलकें। जन्म

किसी भी कला के क्षेत्र से जुड़े शख्स का हिंदी फिल्मों से जुड़ने के पीछे की कहानी कई बार बहुत रोचक और प्रेरणादायी होती है। ऐसा ही राज बब्बर जी के साथ भी हुआ। आगरा से पढ़ाई के बाद आप पटियाला यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट का एक हिस्सा बने। यहाँ थिएटर का आपने विधिवत प्रशिक्षण लेना आरंभ किया, जहाँ इनकी मुलाकात हुई हरपाल टिमाणा जी से, जो खुद एनएसडी से थे। आप स्वयं पंजाबी कलामंच नाम की एक सांस्कृतिक संस्था चलाया करते थे। आपने राज बब्बर से एक दिन कहा कि देखो राज बब्बर, नाटक तुम कर रहे हो और बड़े अच्छे अभिनेता हो, मैं खुद भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हूँ, मैं तो यही नसीहत दूंगा तुम्हें कि जाओ और एनएसडी से एक्टिंग का कोर्स करो। ये बात राज बब्बर को जच गई। सन 1972 में राज बब्बर ने एनएसडी में दाखिला लिया, जहां इनके सीनियर्स थे नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी। महान थिएटर गुरु इब्राहिम अलकाजी से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। शुरुआती दौर में इन्हें दारा सिंह की फिल्में काफी पसंद थी, फिर दिलीप कुमार साहब के अभिनय ने इन्हें मुतासिर किया। एनएसडी करने के बाद इन्हें प्रस्ताव मिला कि आप एनएसडी की रेपेट्री का हिस्सा बने, लेकिन राज बब्बर चूंकि दूरदर्शन से भी जुड़े थे, सुदर्शन काया थी इनकी, पर्दे पर इनकी उपस्थिति दर्शकों को पसंद भी आती थी, ये इन्हें मालूम भी था, और इसी वजह से इन्होंने शायद ये निर्णय लिया कि वो रेपेट्री का हिस्सा नहीं बनेंगे। जहां तक दूरदर्शन की बात है तो ये काम इन्हें कहा जाता है कि इलारुन जी ने दिलवाया था। यही वो दौर था जब नादिरा बब्बर से आपका मिलना हुआ और विवाह संपन्न हुआ।

फिल्मों का इन्हें मिलना अभी भी तय नहीं था। थिएटर करते रहे जब इनके अच्छे मित्र शंकर सुहेल के द्वारा इनकी मुलाकात मशहूर प्रकाश मेहरा से हुई। सलीम जावेद की जोड़ी और रमेश सिप्पी उस वक्त एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसके लिए राज बब्बर का चयन हुआ। स्क्रीन टेस्ट में भी आप सफल रहे। दिलीप साहब ने जब स्क्रीन टेस्ट देखा तो खुश हुए। रमेश सिप्पी भी आश्वस्त हुए कि अब फिल्म को एक महत्वपूर्ण किरदार राज बब्बर मिल गया है। पर बाद में किन्हीं कारणों से यह किरदार निभाया अमिताभ बच्चन ने और फिल्म थी शक्ति। प्रकाश मेहरा से इनकी भेंट एक वक्त पर नाउम्मीदी को चीरती हुई उम्मीद की किरण लेकर आई। नमक हलाल में काम करने की बात चली पर इस फिल्म में भी इनका रोल शशि कपूर ने किया। यहां भी उम्मीद दगा दे गई पर आशा इनकी न छूटी। शारदा फिल्म में आप एक छोटे किरदार में नजर आए जिसमें जितेंद्र, रामेश्वरी और सारिका थी। फिर सुपरहिट फिल्म इंसाफ का तराजू ने इनकी किस्मत बदल दी। राज बब्बर अपनी फिल्मी हैसियत के साथ साथ समाज सेवा के कार्य से भी जुड़े रहे हैं और एक राजनेता के रूप में भी सक्रिय हैं। इन्होंने अपने होम प्रोडक्शन में अपने भाई के साथ मिलकर बब्बर फिल्म्स के बैनर तले 1992 में कर्म योद्धा, 2003 में काश आप हमारे होते और 2010 में टीवी सीरियल महाराजा रणजीत सिंह का निर्माण किया।

सन 1981 में इंसाफ का तराजू बेस्ट एक्टर के लिए, 84 में अगर तुम ना होते सपोर्टिंग एक्टर के लिए, 85 में आज की आवाज़ बेस्ट एक्टर के लिए, 94 में दलाल विलन के लिए और 1996 में याराना फिल्म के विलन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए आपको नामांकित किया गया था। राज बब्बर की कई फिल्मों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है, जिनमें हम पांच, कलयुग, राज और पूना

ये रिश्ता ना टूटे, उमराव जान और अरमान फिल्म भी राज बब्बर को एक अच्छे अभिनेता के रूप में दिखलाती है। आपस की बात, दूल्हा बिकता है, दौलत जैसी फिल्म भी इनके अभिनय से सजी थी। लिबास, दहलीज, घायल, रुदाली, माया मेम साहब, बरसात और याराना में भी राज बब्बर ने अपनी अभिनय क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया और दर्शकों ने भी इसे सराहा, प्यार किया। फिल्म बंटी बबली, कॉरपोरेट, फैशन, बॉडीगार्ड, फोर्स और तेवर जैसी नए दौर की फिल्मों में भी इनके अभिनय ने भूमिकाओं को सशक्त किया। टेलीविजन पर भी 1986 में बहादुर शाह जफर में अकबर का किरदार आपने निभाया, 1988 में महाभारत में भरत राजा का किरदार आपने निभाया, वहीं 2010 की महाराजा रणजीत सिंह में आपने नरेशन किया। 2014-15 का धारावाहिक पुकार, कॉल फॉर द हीरो जैसी सीरीज से जुड़कर आपने अपने अभिनय कौशल का जौहर दिखलाया। राज बब्बर आज भी सक्रियता के साथ सामाजिक सरोकार रखने वाली गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। राज बब्बर ने अपने अभिनय से कई किरदारों को जीवंत किया है। आप अपनी कला से सेल्यूलाइट पर हमेशा

0: आपने सुना आज का आज के फनकार, जो कि राज बब्बर पर केंद्रित था। आलेख और स्वर जी श्याम का, संपादन आकांक्षा सिंह का और प्रस्तुति थी रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

0: फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। पेश खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।

नाम फिल्म से भी आपने ये गीत सुना। आवाज़ें थी मोहम्मद अजीज़ और साथियों की, गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की अगली पेशकश है कर्मा फिल्म से, आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल, मनोहर उदास और सुखविंदर सिंह की। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

अलग अलग फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ किशोर कुमार की थी, आनंद बख्शी के बोल थे और आरडी बर्मन का संगीत था। अगला गीत आइए सुनते हैं आखिर क्यों फिल्म से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, अमित कुमार और साथियों की। शब्द रचना इंदिवर की है और इसकी धुन बनाई है राजेश रोशन।

अकेले हम अकेले तुम फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ें थी कुमार सानू की और साथियों की। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और अनु मलिक का संगीत था। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की अगली पेशकश है एतबार फिल्म से। आवाज़ें हैं आशा भोसले और भूपेंद्र सिंह की। हसन कमाल ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सवारा है बप्पी लाहिरी।

बॉर्डर फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ रूप कुमार राठौड़ की थी। जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा था और संगीत से संवारा था अनु मलिक ने। और ये है रजनीगंधा कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म दयावान से। आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल, पंकज उदास और साथियों की। गीतकार हैं अजीज़ कैसी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

इसी नगमे के साथ ही अब आज का रजनीगंधा कार्यक्रम समाप्त करने की मोहम्मद फखरुल हसन को दीजिए इजाजत। नमस्कार, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगा हर्ट्स पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: सर के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ

बजकर 55 मिनट पर हम पुनः उपस्थित होंगे अपने कार्यक्रमों के प्रसारण के साथ आपकी सेवा में। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय हिंद।

दस मिनट हुए हैं, संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातःकालीन सभा में 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे अपने कार्यक्रमों के प्रसारण के साथ आपकी सेवा में। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय हिंद।